0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Yes, good morning. सुबह के 5:05 हुए हैं. Make a wish. कहते हैं जब भी repeated numbers दिखे ना तो झट से विश मांग लेनी चाहिए. आज है नया दिन, थर्सडे 16 जुलाई. एक नई उम्मीद के साथ हम लेकर आए हैं राइज एंड शाइन एंड इट्स नेमनी. 7 बजे तक आपके लिए पुराने सुनहरे गीत, पॉजिटिव वाइब्स और ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ. तो आप यही पर कनेक्टेड रहना, आरएम जो वीडियो मस्ती पर आपकी मॉर्निंग को बनाएंगे. वेरी वेरी गुड.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Well, गानों से हमें कभी कभार प्रेरणा मिलती है. इस गाने ने कहा हंसते गाते चलिए. वैसे अगर देखा जाए तो ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, क्योंकि हर सुबह एक नया मौका होता है. तो कल की परेशानियों को आज की मुस्कुराहट से रिप्लेस कर दीजिए. एंड याद रखिए कि सूरज रोज इसलिए निकलता है क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत का वादा लेकर आता है. तो स्माइल अपने चेहरे पर ही रहने दीजिए और वाइब करते हैं आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ.

0: रेडियो मस्ती।
1: सुबह की शुरुआत सिर्फ एक गर्म चाय से ही नहीं बल्कि अच्छी सोच और आपके मैसेजेस से भी शुरू होती है, तो इसलिए इट्स टाइम मच वीडियो मैसेजेस। सुबह सुबह किसने हमें मैसेज किया है चलिए देखते हैं। आप है शतु बिना गैस से ज्योति जी और गाना मांग रहे हैं आशनी रेखा सुरेखा मैडम फैमिली के लिए। एनमोदाई ब्लॉन्श से मीला रामदिकल जी कनेक्टेड है और अपनी बहन और भाइयों के लिए फैमिली के लिए गाना मांग रहे हैं। भैया जोपा से वी हैव नीरा खुबलाल जी और अपने परिवार के लिए गाना मांग रहे हैं। एंड आप है जयशन जी और आप अभी ड्राइव कर रहे हैं। एंड सभी दोस्तों के लिए जयशन तिम्बा जिबन ओबिरान ओंगोटिया आकाश शरवन रामदेवर मेविन के लिए आप गाना मांग रहे हैं और वंडरफुल डे विश कर रहे हैं सभी को। एंड वी हैव अब्दुल जी सारा बानो जी विश कर रहे हैं आप सभी को नाइस डे। एंड वी हैव ललिता जी जो सुबह सुबह मोटिवेटेड हो चुकी है, वो जॉगिंग कर रही है और आराम जो वेडियो मस्ती के साथ जुड़ी हुई है। एंड वी हैव प्रशील जो कनेक्टेड है सैन जूनियर दुतमो से और वो गाना मांग रहे हैं अपने नाना नानी के लिए। एंड विश कर रहे हैं आप सभी को वेरी गुड डे। तो चलिए गाना हो जाए आप सभी के नाम चौदह से जो भी कनेक्टेड है आर एम जू रेडियो मस्ती के साथ।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
3: टक टक बॉलीवुड
2: रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: Yes, सुबह सुबह it's time to hear your horoscope. तो शुरुआत करते हैं with the
2: Aries मेष राशि.
1: आज आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कोई भी कमी नहीं रहेगी. किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन बहुत ही शुभ है. अपने शब्दों पर आपको संयम रखना है. इससे संबंध और भी मधुर होंगे. और लकी कलर आज आपका है लाल और नंबर है 9.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज धैर्य और समझदारी से लिया गया हर निर्णय आपके पक्ष में रहेगा. परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर भी मिलेगा. लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपकी वाणी और सोच लोगों को प्रभावित करेगी. पुराने मित्र से मुलाकात या अच्छी खबर भी मिल सकती है. लकी कलर आज आपका है पीला और नंबर है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज घर का वातावरण सुखद रहने वाला है. अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक चिंता से आप दूर रहें. लकी कलर आपका है सफेद और नंबर है 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है. विनम्रता बनाए रखें. लकी कलर आपका है सुनहरा और नंबर है 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज हर काम को योजना के साथ पूरा करें. जल्दबाजी से बचें. मेहनत का फल अवश्य मिलने वाला है आपको. लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 7.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज संतुलन और शांति बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. लकी कलर आपका है गुलाबी और नंबर है 6.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज आपका साहस और कड़ी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगा. गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है. लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 8.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: आज सीखने और नई बातें जानने का अच्छा अवसर मिलेगा. यात्रा के योग भी बन सकते हैं. लकी कलर आपका है नारंगी और नंबर है 3.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज अनुशासन और लगन के साथ किया गया काम सफलता दिलाएगा. बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. लकी कलर आपका है नीला और नंबर है 4.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज आपके रचनात्मकता विचार आपको नए अवसर दिला सकते हैं. मित्रों का पूरा सहयोग मिलने वाला है. लकी कलर आपका है आसमानी और नंबर है 11.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: और आपके सारे जो वरीज हैं वो दूर होने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए अच्छी खबर ऑन द वे है. अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास रखें. लकी कलर आपका है बैगनी और नंबर है 7.
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world.
1: Radio Musti. Feel the Musti.
2: देखते ही देखते टाइम इज फ्लाइंग. वैसे जल्दी ही आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. अभी के लिए इस आखिरी गाने को एंजॉय करते हैं.

0: Loving it.
1: And Aloe Kick, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning. सुबह के 6 बजे हैं. चलिए सुनते हैं पहला फ्लैश न्यूज आपसे याचना. नमस्कार.
6: नमस्कार निर्माणी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए अपनी जगह बना गया. स्कोर रहा इंग्लैंड 1 अर्जेंटीना 2. अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी. फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच. लायनल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा. पहला खिलाड़ी है कफू जो ब्राज़ील के साथ खेला था. और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार 11 बजे आप देख पाएंगे. मॉरिशस टेलीकॉम देश की तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में है. देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाई के स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित अपने प्रमुख प्रौद्योगिकी सम्मेलन ऑल माइटी समिट 2026 के लिए डिजिटल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एक मंच पर ला रही है. राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में नहीं बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है. वित्तीय अपराधों की रोकथाम संबंधी अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गंभीर खामियों और कमजोरियों का खुलासा किया है. विदेश की खबरों में जो आज सुर्खियों में है उनमें ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए. इस दौरान अमेरिकी बलों ने होर्मुज जलमार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान को बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है. अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल. स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं. हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवाओं का असर है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. आज सुबह सेंट्रल प्लाटो पर कुछ बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है. दोपहर बाद भी बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है. रात को आसमान साफ रहेगा. हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24. तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. आज सुबह सूर्योदय 7:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 5:47 मिनट पर होगा.
2: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जी बिल्कुल 9 मिनट से हुए हैं और आप जुड़ चुके हैं राइज एंड शाइन के साथ RM2 रेडियो मस्ती पर विद नर्मनी। एंड रिमाइंडर है आपके लिए कि सुबह उठते ही एक ग्लास पानी पीना ना भूलें, क्योंकि ये एक्चुअली आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है और

0: और एक को फ्रेश फील करवाता है। छोटी सी आदत लेकिन फायदे बहुत बड़े हैं। स्टे सेफ ऑन द रोड अगर आप निकल चुके हो काम के लिए, एंड ऐसे ही कीप वाइबिंग विद योर RM2 रेडियो।
1: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
2: टक टक बॉलीवुड।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Yes, RM2 Radio Musti par right here, right now. Beautiful vibes ongoing hai, kyunki morning ka time hai, special banana padta hai, taaki aap muskurahat ke saath ghar se kaam par jaye. And messages ki ora check marte hain, to Kumar Adavijan ji कनेक्टेड है अपने सारे सेकेंडरी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, गाना डेडिकेट कर रहे हैं लाल माची से. वी हैव साधना जी और मुकेश जी भी, तो आप लोगों को बड़ा सा हेलो. कुणाल जी अपनी वाइफ अनुषा के लिए फिर सा गाना मांग रहे हैं, और स्पेशल मैसेज भी है टू टेल हर दैट वो मेरी जिंदगी है एंड आई विल लव हर फॉरएवर. तो आपके लिए एक प्यार सा रोमांटिक गाना ढूंढ कर चलाएंगे. ज़रूर आप यहीं पर रहना है कनेक्टेड. और कोंगोमा से वी हैव सुया बिहारी जी जो गाना मांग रहे हैं रिद्धि सोनाक्षी अपनी एंड क्यूट वंश के लिए. तो हो जाए आप लोगों के लिए गाना. गुड मॉर्निंग, अगर अभी अभी आप कनेक्टेड हुए हो आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: हाय, थोड़ा नहीं बल्कि दिल खोल कर मुस्कुराओ यार. नया दिन है, नई शुरुआत हो सकती है अगर दिल ने चाहा. डोंट लेट एनीथिंग होल्ड यू, बस फ्लो के साथ बढ़िए. एंड फ्लो से याद आया कि आपके मैसेजेस भी फ्लो कर रहे हैं और आज बहुत सारी बर्थडेज हैं. एंड आप हैं मम्मी शीतल, आपके बेटे तानव, अनव, डॉटर तन्वी, हस्बैंड राकेश एंड कुदन फैमिली की तरफ से आपको बड़ा सा हैप्पी बर्थडे. एंड वी हैव अवनीश जी का बर्थडे, मामा पूजा, पापा ऋषि, बहन अवनी और नानी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. एंड आप है, आपने नाम नहीं लिखा लेकिन आज आपका भी बिग डे है और आपकी नेफ्यू का भी 25th बर्थडे है. एंड आप अच्छा सा बर्थडे सॉन्ग चलाना चाहते हैं अपने लिए और अपने नेफ्यू के लिए. और आप है अवनीश, सानवी, अवनी, चाची पूजा, चाचू एंड अबिसेस ऑफ फैमिली कैहोलिन से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोज जो आज अपना स्पेशल डे मना रहे हैं RM2 टीम की तरफ से.

ये गाना था स्पेशली वंदना और वेदिता के लिए जिन्होंने डेडिकेट किया अपने लिए स्पेशल सॉन्ग एंड ऑल्सो आपके लिए कुछ ही देर में पूरा समाचार पेश करने वाली है याचना अपडेटेड रहने के लिए यू नो व्हाट टू डू स्टे ट्यून्ड टू आरएम2 रेडियो मस्ती

0: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के 6:30 बजे हैं। सभी को नमस्कार और आदाब। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 अर्जेंटीना 2। अब फाइनल मैच खेला जाएगा रविवार रात 11 बजे। मॉरिशस टेलीकॉम देश के तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में। देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाई के SBICC केंद्र में आयोजित अपने प्रमुख समिट ऑलमाइटी समिट 2026 के लिए डिजिटल और रणनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एकत्र कर रहा है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उसकी रिपोर्ट आम हुई है। विदेश की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के 5वें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए अपनी जगह बना गया। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 अर्जेंटीना 2। अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी। फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। आपको बता दें लायोनेल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया है जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा। पहला खिलाड़ी है काफू जो ब्राज़ील के साथ खेला था। और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल MBC स्पोर्ट्स 11 और MBC प्ले पर रविवार रात 11 बजे आप देख पाएंगे। मॉरिशस टेलीकॉम देश के तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में है। देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाई के SBICC में आयोजित अपने प्रमुख प्रौद्योगिकी सम्मेलन ऑलमाइटी समिट 2026 के लिए डिजिटल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एक ही मंच पर ला रही हैं। राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में नहीं बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में सामने आ रही है। जॉन फ्रांसवा लेकिन का की रिपोर्ट है और विवरण विधिमा सिबुरन का है।
1: मॉरिशस टेलीकॉम के लिए ये ऑल माइटी समिट 2026 उनका प्रमुख तकनीकी शिखर सम्मेलन केवल एक संचार कार्यक्रम से कहीं बढ़कर है। ये एक रणनीतिक शक्ति का प्रदर्शन है। सरकार वित्तीय संस्थानों और वैश्विक दिग्गजों को एक मंच पर लाकर ये टेलीकॉम ऑपरेटर ये साबित करना चाहता है कि वो मॉरिशस में डिजिटल बदलाव की रीढ़ है। इस नए आयाम का पहला प्रतीक मॉरिशस सरकार और अमरीकी दिग्गज कंपनी अमेज़न वेब सर्विसेज के बीच हस्ताक्षरित ऐतिहासिक साझेदारी समझौता है जिसे मॉरिशस टेलीकॉम ने सुगम बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी बजट की घोषणा को ऐतिहासिक गति देना जिसके तहत 50,000 मॉरिशस वासियों को AI और क्लाउड तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये न केवल भविष्य के कैरियर के द्वार खोलेगा बल्कि वैश्विक निवेशकों के बीच मॉरिशस की डिजिटल परिपक्वता का एक मजबूत संदेश भी भेजेगा। लेकिन मॉरिशस टेलीकॉम की दृष्टि हमारी सीमाओं से परे एक इलाकाई हब के रूप में स्थापित होने की है जो अफ्रीका एशिया कॉरिडोर के लिए एक डिजिटल सेतु के रूप में मॉरिशस की भूमिका को और मजबूत करती है। अपनी सहायक कंपनी माइटी मनी के माध्यम से कंपनी अब फिनटेक के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई है। सेशल्स की ई वॉलेट ई बुक के साथ साझेदारी करके ये एक अभूतपूर्व वित्तीय गलियारा बना रही है। इस प्रकार सेशल्स की यात्रा पर गया कोई भी मॉरिशस वासी जल्द ही वहां अपने माइटी मनी एप्लीकेशन के जरिए खरीदारी का भुगतान

0: भुगतान कर सकेगा। ये शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक मोड़ भी है। अपने 20 वर्षों के उपलक्ष्य में प्रमुख ब्रांड माइटी भविष्योन्मुखी नए लोगों के साथ एक नया रूप लेने जा रहा है, लेकिन ये स्पष्ट रहे कि मॉरिशस टेलीकॉम केवल अपनी छवि को नया नहीं कर रहा है, कंपनी अपनी नई महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शा रही है। नेटवर्क वितरक की अपनी पारंपरिक भूमिका से ऊपर उठकर इलाके के अपरिहार्य तकनीकी दिग्गज के रूप में खुद को स्थापित करना।
1: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वित्तीय अपराधों की रोकथाम संबंधी अपने रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गंभीर खामियों और कमजोरियों का खुलासा किया है। जरा विस्तार लुविना सफी के साथ विधि मासीबुरन का विवरण।
0: भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतों के बाद शुरू की गई इस जांच में मुख्य रूप से प्रेगाबालीन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो एक ऐसी दवा है जिसे खतरनाक ड्रग की श्रेणी में रखा गया है। FCC ने पाया कि इसके नियंत्रण के उपाय अपर्याप्त हैं, प्रक्रियाओं में हाथ से किए जाने वाले कार्यों पर अत्यधिक निर्भरता है, कोटा देने और उनकी निगरानी करने में कमियां हैं, साथ ही रिकॉर्ड रखने और दवा की ट्रैकिंग के प्रबंधन में भी भारी खामियां हैं। आयोग के अनुसार ये खामियां भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेरफेर, खतरनाक दवाओं के दुरुपयोग और यहाँ तक कि ड्रग तस्करी को वित्त पोषित करने का कारण बन सकती हैं। ये विसंगतियां मंत्रालय को परिचालन, वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों के प्रति भी संवेदनशील बनाती हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए FCC ने शासन और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने, कोटा की बेहतर निगरानी, प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन और देश के प्रवेश बिंदुओं पर जांच को और सख्त करने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा करना और नियंत्रित दवा उत्पादों की विनियामक प्रणाली में विश्वास को बहाल करना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देख ली है और वे इसका अध्ययन कर रहे हैं।
1: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक कर्मचारी को लेकर गिरफ्तार किया गया। CEB में लाइन्स टेक्नीशियन 33 साल के मोहम्मद जलालुद्दीन मुहाबीर की गिरफ्तारी से पहले उनके साथ अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने वालिदपेट के एक निवासी को एक फर्जी दस्तावेज दिखाकर ये दावा किया कि उन्हें CEB की ओर से उसके बिजली मीटर का निरीक्षण करने भेजा गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार इसके बाद उन्होंने मीटर में कथित अनियमितता की शिकायत CEB को न करने का आश्वासन देकर उस व्यक्ति से बड़ी रकम की मांग की, जो उन्हें मिला भी। SEC एक्ट के तहत इन आरोपों को भ्रष्टाचार के अपराध की श्रेणी में माना जा रहा है। इस मामले की जांच के सिलसिले में CEB के अन्य कर्मचारियों से भी जल्द पूछताछ किए जाने की संभावना बनी है। मिसले मौदारे मामले में एक नया मोड़। बुधवार को लंदन में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र की अपील अदालत मार्च में दिए गए फैसले के खिलाफ बरतानी अधिकारियों की अपील पर सुनवाई कर रही है। मार्च में दिए गए फैसले में मिसले मौदारे और 3 अन्य सागरवासियों के खिलाफ जारी निष्कासन आदेशों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि अपील का फैसला आने तक उस आदेश पर फिलहाल रोक लगी हुई है। इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई तक चलेगी। इस बीच ओलिविए बॉन्कुर्ट का कहना है कि शागस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश कानूनी और आवश्यक अनुमतियों के अनुसार ही होना चाहिए। उनको सुनते हैं।
2: Nous sommes d'accord que tout pays, toute île, est dirigée par un État. Et partout dans tout pays que nous allons, nous avons une section qui s'appelle immigration.
0: हमें सहमत होना चाहिए कि सभी टापू एक राज्य द्वारा नियंत्रित हैं और सभी सेक्शन में जहां पर जाते हैं एक होता है इमिग्रेशन। आमतौर पर ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यवस्थित होता है कि जो भी लोग आ जा रहे हैं उनकी कुछ जानकारियां होनी चाहिए, उनके पासपोर्ट पर स्टैंप होना चाहिए। गैर कानूनी रूप से एक देश में नहीं घुस सकती, ये सही नहीं है। हमने 5 बार शागोस का दौरा किया जहां संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन मिस्टर मोदागे गैर कानूनी रूप से वहां पर गए और ये एक गलत उदाहरण है। अब सब जज के हाथों में है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया है जो मॉरिशस के हक

0: में है और कहा है कि मॉरिशस वो देश है जो शागोस की जिम्मेदारी ले सकता है।
1: और ओलिविए बॉकुल्ट ने ये भी आरोप लगाया कि मिस्री मुदाहिन को अवैध धन से वित्तीय सहायता मिली है। हालांकि ये आरोप केवल शागोस रेफ्यूजीज ग्रुप के नेता ओलिविए बॉकुल्ट का दावा है। उनका मानना है कि अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, आगे की कार्रवाई का निर्णय सरकार को ही लेना होगा। एक बार फिर उन्हें सुनते हैं।
2: À l'arrivée de Michelet Mandarin dans Ilkoué, c'est pas quelque chose comme ça, pas comme dans l'échelle interbée.
0: सरकार को देखना चाहिए कि वो कौन से कदम लेगी। हम सब इस बात से सहमत होंगे कि इल चुकवे में मिसले मौदागे के आगमन कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। हमने पाया कि इसके पीछे बहुत सारे पैसों का प्रभाव है। निजल फाहिश के समर्थन के बिना मिसले मौदागे वहां नहीं जा सकता था। इसलिए मैं कहता हूं कि यूके की रिफॉर्म पार्टी मिसले मौदागे का इस्तेमाल कर रहा है।
2: Pour y faire un acte comme ça, quand on dit que tu ne vas pas rentrer d'une façon vraiment honnête et légale.
1: और कल असाइज अदालत में फैसला सुनाया गया कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारी सरवन गोविंदन को मानक पदार्थों की तस्करी के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मामला जुलाई 2018 का है। एमएससी जान नामक जहाज से करीब 1 किलो हेरोइन बरामद हुआ जिसकी लागत 15 मिलियन रुपए बताई गई। सरवन गोविंदन को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने मडागास्कर से आए कंटेनर जहाज में रखे गए उस पैकेट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। ये सजा जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने सुनाई। सड़क यातायात में सुधार के उद्देश्य से 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री के एजेंडा में शामिल थीं। थियानो में अजय गणेश ने 43 मिलियन रुपये की लागत से बनी नई पिल थियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया। इसके बाद वे फ्लिकोफ्लाक गए जहां उन्होंने 160 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत वाली भविष्य की बाईपास परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। संताना पोसेनो रजनी बिकर।
3: त्रियानो इलाके से गुजरने वाले गाड़ी चालकों के लिए अब से एक नया मार्ग उपलब्ध। 43 मिलियन रुपए की लागत में पेलगे थियानो लिंक रोड का निर्माण। ये पेचिकॉम ब्रांच रोड को एबेन में M3A14 नए रॉबरावाट मार्ग से जोड़ेगी। इस संपर्क से परिवहन को लेकर बेहतर स्थिति होगी। साथ में मोटरवे M1 में वाहनों की आवाजाही में आसानी होगी और थियानो पेचिका और एबेन के बीच फासले में कम समय लगेगा। इसके बाद रुख फिकोफ्लाक जहां पर मंत्री ने भावी बाईपास के निर्माण स्थल का दौरा किया। अनुमान है कि 160 मिलियन रुपए की जरूरत होगी। इस नए मूल ढांचे का मकसद है मुख्य सड़क के लिए एक वैकल्पिक रास्ता, क्योंकि अक्सर वहां परिवहन समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे फ्लिकोफ्लाक की ओर और इलाके के स्थलों में आवाजाही में सुविधा होगी।
4: Et possiblement, nous avons un troisième chemin de Volmort à Tamarin. Alors, il y a un grand plus pour nous. On a 14 hôtels de Ficonflac. Un hôtelier extra content et un habitant aussi très content avec ce nouveau développement-là.
5: Il n'y a pas que nous, un sous additionnel, c'est un savings qui nous fait le projet qui est initié depuis la visite. Jusqu'à Cascavel. Donc, nous réussissons à faire un savings. Ça, savings, ça nous peut faire, nous permet de sortir de l'hôtel Manisha. Nous prévoyons que d'ici octobre, chemin-là, pour avoir une finie parée.
3: Ce qui est important, c'est que ces deux projets, राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने और देश भर में सड़क का इस्तेमाल करने में सुधार लाने के मकसद से सरकारी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के 5वें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान अमेरिकी बलों ने हॉर्मुज जलमार्ग में ईरानी के बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे

एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान सेंट्रल प्लेटू और अन्य जगहों पर हल्के बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। रात को आसमान साफ रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 7:45 हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर कादर का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC
0: शोक समाचार सुनिए। सवान रोड नोवेल फ्रांस में लोकल शॉप के पास तिरपन साल के 53 इयर्स ओल्डर के श्री जमन सिंह बासुदेल सिंह जो धर्म के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांजी लेन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। मोसल मोहम फुलबुआ मोंग प्लेंडी पपाई में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री राजकुमार तेंगो जो विद्यानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी सुनीता तेंगाव के मकान मोसल मोहम फुल बामोंग प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। पारिजोलेन मेनिल फिनिक्स में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री धनराज जातुना जो प्रीतम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और SMF में पूर्व लॉन्ड्रीमैन थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2:30 बजे उनकी पत्नी ललिता जातुना के मकान पारिजोलेन में नील फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। रुईबाज़ विलनुआ मेबर्ग में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के जनाब ईसा गनसन जो साइड के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा दोपहर 2 बजे उनके मकान रुईबाज़ विलनुआ मेबर्ग से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट फोकस रिविया दे क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2 PM। F4 Macadam Street, Béjutombo में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती माला साधु पैदाशीनाम गोबर्धन और जो ललिता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर दो बजे उनके मकान F4 Macadam Street, Béjutombo से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 2 PM। फैब्रिक लेन मोडालबेया में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती विश्राम पैराशिनाव शिवनंदन और जो सांता के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके पति सुभाष विश्राम के मकान फैब्रिक लेन मोडालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11:30 AM।

0: Selico on Thelm Street, Akaju Lane. Forestside में Selico on Thelm Street, Akaju Lane. Forestside में 75 साल की 75 years old की श्रीमती शांतिलाल बिकन. श्रीमती शांतिलाल बिकन पैदाश नाम ओबिलक और जो शांतिलाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी सुबह 10 बजे उनके बेटे संजीव सिंह बिकन के मकान Selico on Thelm Street, Akaju Lane फ्रेश साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 10 एम. रेलवे रोड नथोदाम शुमेला ग में उनहत्तर साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुसमी काली जो मैनी के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी दिन के 11:30 बजे उनके मकान रेलवे रोड नथोदाम शुमेला गांव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टू डेट 11:30 AM. क्रिस्टचर्च रोड यूके इंग्लैंड में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वरदत्त बुस्टन जो दत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले बुस्टन लेन लाफ्लोगा रहा करते थे उनकी मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 10:15 बजे उनके मकान इंग्लैंड में उठाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM इन इंग्लैंड. एस एस ऑल इन मोताबा में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती फुलबसिया रोचियानाई को पैदाशी नाम जगप्या और जो राधिक के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी दिन के 12 बजे उनके मकान एस एस ऑल इन मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टू डेट नून. नंबर 15 लाखवाजे वाले दे फैट पोलवी में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय प्रीतम जगलाल जो लेले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी सुबह 10 बजे उनकी माँ किस्मतिया नीनुत के मकान नंबर 15 लाखवाजे वाले दे फैट पोलवी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 10 AM. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: चुपचाप कुछ पर 6 मिनट हुए हैं, लेकिन जाने से पहले ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ एक टिप। आज ना किसी एक इंसान को बिना वजह स्माइल दीजिएगा। शायद वो आपकी वो एक मुस्कुराहट किसी का एक पूरा दिन बना दे। और इसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ आपको चले जा रही हूँ। आप रहना कनेक्टेड आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ ही। एंड हैव अ ग्रेट डे व्हाइल लिसनिंग टू योर नंबर वन फेवरेट रेडियो स्टेशन।
3: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
4: टक टक बॉलीवुड।

कैसे हो? सुबह उठने में थोड़ी तकलीफ तो हो रही है आज, ठंड कुछ है ज्यादा, आई डोंट नो, मुझे फील हुआ तो मॉर्निंग में सर्दी के मौसम में अगर अभी अभी आप जागे हो तो चलो कोई नहीं, आप हमारे साथ हैं। रेडियो बस्ती मॉर्निंग बीट विदिता के साथ सुबह के 9 बजे तक।

0: RM2, Radio Musty, in the mix.
1: सुबह के 7:15 हुए हैं, वेरी गुड।

मॉर्निंग, वैसे कल बहुत सारे लोगों ने शाम को पकौड़े खाए थे, झूठ मत बोलो। चलो जी, आप गरम गरम अभी चाय कॉफी ले रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती, यह है आपका मॉर्निंग बीट। थोड़ी देर में गेम के साथ आ रहे हैं हम।

यस, जैसा मैंने कहा था आपसे कि हम आपके लिए गेम लेकर आ रहे हैं, तो आपके लिए हम अभिजीत दा की आवाज़ में गाना सुना रहे हैं। आपको मुझे बताना है कि ये गाना किस फिल्म से लिया गया है। जीतने वाले को मिल सकता है 1 ticket to the Golden 90s Era 2 featuring अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट, जो होने वाला है 25 जुलाई 2026 को 7:30 PM एट SBICC Pai। जी हाँ, इनकी जादू भरी आवाज़ में एक ऐसी शाम हम बिताएंगे जो हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा, वैसे ही जैसे हमारे 90s के गाने जो अभी भी उतने ही प्यारे उतने ही लविंग है। तो चलिए, अगर आपको जवाब पता है तो मुझे ज़रूर बताएगा 1549 1294। याद रखिए, अगर आप इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, टिकट्स अवेलेबल है mirchiki.mu/aghezu-utayu पर, और इसका जो प्राइस है स्टार्ट होता है 850 रुपीज़ के साथ। तो रिजर्वेशन के लिए हॉटलाइन कॉल करें 4669999।

9 पर विनीता का साथ है चलिए जल्दी से बताइए कि ये गाना किस मूवी से लिया गया है और जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेक श्योर कि आप अपना फोन नंबर हम तक जरूर पहुंचाएं प्यार से सुनिए ध्यान से सुनिए सुबह के 7:20 विनीता का साथ इन योर मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती

0: सस्पेंस, किसको मिला इनाम?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: वही जिसके नाम पे हैं उनको तो मिलेगा ही, और लक ट्राई करने में क्या हर्ट जाता है ना। चलिए जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं विनीता एक बार फिर मॉर्निंग बीट रेडियो मस्ती पर। और यहाँ हमने आपसे एक सवाल किया था, हमने पूछा था आपसे कि आप मुझे बताइए कि ये जो गाना हमने चलाया किस मूवी से लिया गया है, और द राइट आंसर इज यश। जी हाँ, यश मूवी के लिए अभिजीत दा ने इस गाने को अपनी वॉइस दी है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लवली सॉन्ग। सोचो ऐसे ऐसे गाने आपको सुनने को मिलेंगे उनके इस कॉन्सर्ट में। ये है गोल्डन 90s ईरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य, लाइव इन कॉन्सर्ट 25 जुलाई 2026 रात 7:30 बजे SBICC Pi में। अब ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर यहां पर विनर कौन है, कौन है जिसको मिल रहा है ये एक टिकट। तो यहाँ पर लकी ड्रॉ के बाद नाम आया है विश्ती का, जो रहती है पाल्मा कैटरबोन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है एक टिकट इस कॉन्सर्ट के लिए। तो 25 जुलाई 2026 रात 7:30 बजे SBICC Pi में हो रहा है अभिजीत का ये कॉन्सर्ट गोल्डन 90s ईरा 2, जो आपको मौका मिलेगा इसका हिस्सा बनने का, क्योंकि आपको मिल रहा है टिकट जो आपको MBC आके कलेक्ट करना पड़ेगा अपने ID कार्ड के साथ। याद रखिए, सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच में आपको आना पड़ेगा ID कार्ड के साथ, और ये इनाम आपके नाम। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू, एंड याद रखिए जो लोग इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, टिकट्स आर अवेलेबल एट tabletchicken.mu एंड rezotayo। टिकट जो है 850 rupees से स्टार्ट होता है, और रिजर्वेशन के लिए कॉल कर सकते हैं आप 4669999 पर।
3: RM2 Radio Masti.
4: En esta noche la vida es completa.
0: और जिन लोगों का बर्थडे है उनको सरप्राइज करना चाहते हैं, भूलिएगा नहीं आप उनका फोन नंबर हम तक पहुंचाते सकते हैं उनके नाम के साथ 5491294।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो नर्मदा देवी जी. हेलो, एक मिनट, शायद वो यहीं है. हेलो हेलो हेलो हेलो
1: नर्मदा देवी जी. वी आप
0: हाँ रेडियो सुन रही हो? रेडियो को वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दो, मेरी आवाज आ रही है वहां तक. गुड मॉर्निंग.
1: गुड

0: मॉर्निंग
1: कैसी? हाँ जी, कैसी हो आप नर्मदा जी? अच्छी है। अब आपको पता चल ही गया है तो अभी हम सोचते थे हमेशा कि हम फोन करते हैं लोगों को सरप्राइज करेंगे, लेकिन जब वो हमें पहचान लेते हैं तो हमें हमें हमें हमें भी खुद सरप्राइज हो ही जाता है। चलो अगर यहाँ तक अभी फोन कर दिया तो आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप ऐसा क्या करती हैं, घर पे रहती है, काम पर जाती
0: है? घर पे रहती हूँ, अच्छा, बच्चों को देखती हूँ।
1: बच्चे कितने?
0: खाना बनाती हूँ।
1: कितने बच्चे?
0: कपड़ा धोती हूँ।
1: ओह माय गॉड, इन्होंने अपना दुखड़ा सुना दिया मुझको, इनको पता चल रहा अभी। हाँ अच्छा, ये बताइए कि अभी आज आपका बर्थडे है ना?
0: हाँ हाँ,
1: तो आज का दिन स्पेशल होना चाहिए, तो विश तो करना पड़ेगा ना?

0: चलो जी, आपको हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से, रेडियो मस्ती टीम की तरफ से. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हैं. और जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैसेज आया है आपके लिए, आई डोंट नो किसने भेजा है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही कहूंगी कि आज का दिन स्पेशल होना चाहिए. आज के दिन किचन में मत बिताना प्लीज. लेडीज, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके हस्बैंड अगर सुन रहे हैं तो प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है, आज आपकी बीवी किचन में नहीं रहेगी. आज उनको आप शॉपिंग के लिए ले जाओ, उनको बाहर खाना खिलाओ, उनका स्पेशल डे होना चाहिए. और आपको लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है, जो आपको आज नहीं तो कल आकर कलेक्ट करना पड़ेगा एट MBC अपने ID कार्ड के साथ. सो आपको निर्वदा जी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा प्यार आपके.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
2: Morning beat. Oh God. One more remix. A good beat for your morning show.
3: RM2. Radio Musti in the mix.
0: कोशिश तो हमारी यही रहती है, बार बार पकड़ी जाती हूँ. वॉइस भी नहीं बदल सकती. वॉइस तो बदलवा था ना, बदल गया था, उसी वॉइस के साथ पहचान लिया. चलो कोई नहीं, वेरी हैप्पी जितने लोग हमें सुन रहे हैं. आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच. कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन बस मैजिक हो ही जाता है.

0: रेडियो मस्ती को अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस. It really means a lot for us. Thank you, thank you, thank you. चलिए इसी के साथ समय हो गया है. हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे दोस्त अरविंद एकदम रेडी हो गए हैं और कल के मैच के बारे में बहुत कुछ बताना है ना? चलिए मिलते हैं उनसे.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
0: वैसे मैं और भी कल ही बात कर रहे थे और पूछ रहे थे एक दूसरे से कि कौन जीतेगा, कौन मैच जीतेगा. फिर हमने कहा था हे सब कुछ तो है लेकिन हम दोनों को पता है, हम दोनों हमेशा कहते हैं कि डोंट मेस विद मेसी. चलो अरविंद का वेलकम करते हैं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हाईलाइट.
4: Messi isn't. Messi gets into the penalty area. Oh! This one's on target. This one's an absolute beauty. He had the sighter and now he's smashed in the equaliser. Enzo Fernandez! This is McAllister! Hits the post! And for the second time, he's hit both posts. Oh. Messi. Oh, and England are in trouble. Maybe through Lautaro Martinez, they're going out to the semi-final stage. It's been header after header after header. We're into the 12th added minute, and Argentina, the world champions, are going to the 2026 final.
5: Or final, New York mein hoga Argentina or... स्पेन के बीच. एक है डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और दूसरी टीम है यूरोप की चैंपियन टीम स्पेन. फिर से लेट शो अर्जेंटीना की ओर से. इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे थी सेकंड हाफ में. एंटोनी गोर्डन का गोल, बचे थे 30 मिनट. कोच टोमास टुखेल को लगा डिफेंस को मजबूत करना होगा, 1-0 की बढ़त बचानी होगी. गलत फैसला साबित हुआ क्योंकि मेसी नाम का जादूगर के यहां हर प्रकार का इलाज होता है. पैसिव एंड क्रम्बल्ड टोमास टुखेल का डिफेंसिव टैक्टिक दगा दे गया. 88th minute पर इक्वलाइज किया एंजो फर्नांडिस ने एक जबरदस्त शॉट पर. फिर 7 मिनट बाद लुटारो मार्टिनेज का विनिंग गोल, दोनों गोल मेसी के पास पर. जब इंग्लैंड ने स्कोर किया 30 मिनट बचे थे, टोमास टुखेल ने एज़री कोंसा, डैन बर्न और निको ओरेली को भेजा एक गोल को बचाए रखने के लिए. इंग्लैंड सिट बैक से सेट बैक. इंग्लैंड और फ्रांस के बीच छोटा फाइनल थर्ड प्लेस इस सैटरडे को एंड द बिग फाइनल न्यूयॉर्क में इट्स स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना इस संडे को लाइव 11 बजे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले अप पर. ट्रांसफर न्यूज, आर्सेनल का खिलाड़ी लियांड्रो ट्रोसा टर्की के बेसिक्टास टीम में जा रहा है. आर्सेनल ने उसे 15 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर बेचा. द गनर्स अब क्लब ब्रुज से स्ट्राइकर क्रिस्टोस जोलिस को साइन करना चाहते हैं. नोवे से एंटोनियो नूसा भी लिस्ट में है. मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर वेस्ट हैम यूनाइटेड के स्ट्राइकर क्रिसेंसियो समरविल पर है, दाम 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग. इधर साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के स्टेज 11 में सोरेन वारेंसियोल्ड की जीत. ओवरऑल लीड में येलो जर्सी तादेज पोगाचार के पास है 3 मिनट 36 सेकंड आगे. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. बिग न्यूज आज.

0: अर्जेंटीना फाइनल में वेटिंग एट न्यूयॉर्क स्पेन। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं जा पाई और इंतजार करना होगा, पर इस बीच कंसोलेशन के रूप में तीसरे स्थान के लिए मैच होगा इस सैटरडे को फ्रांस के खिलाफ। बिग थिंग्स एट स्टेक, कौन चैंपियन बनेगा, स्पेन या अर्जेंटीना, और कौन बनेगा गोल्डन बूट विजेता। एक एक मैच है, मेसी के उधर किलियान एम्बापे भी है, सस्पेंस अंत तक। पर ब्रावो अर्जेंटीना, स्पेन वेटिंग फॉर यू।
1: थैंक यू सो मच अरविंद, और आपसे मुलाकात थोड़ी देर में।
2: मेगा प्रोमो कोड क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपे सेल्स लो ग्रानिट एक क्वार्ट्ज, रिकासे लो लावो, ला लिनिया मॉडर्न प्रिसोक।

0: देखूं।
1: मॉर्निंग बीट।
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musti, in the mix.
1: RM2,
3: Radio Musti.
4: Tchou, qui peut manger les audits? Mais pose vite seulement là. Marie longue, ça moi là.
5: Max Savers Mill, c'est gars. Bon goût, petit prix. Le plan parfait. Venez découvrir les Max Savers Mills car il y en a pour tous les goûts à partir de 190 roupies. La qualité à prix mini.
6: It's Max Savers time. Bon content, ma pose content.
5: McDonald's.
7: Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
8: Tech Mag, powered by
9: 365. Bien plus encore.
10: Smart homes are becoming the norm. From smart TVs and voice assistants to security cameras and robot vacuum cleaners, more of our everyday devices are connected to the internet than ever before. But did you know these devices could also be the weakest link in your home's cybersecurity? Experts say connected devices are increasingly being targeted by hackers because many people never change the default passwords or install important software updates. Once a single device is compromised, it can potentially provide access to your entire home network. Some of the most vulnerable devices include smart TVs, streaming boxes, security cameras, printers, and even baby monitors. Many continue running in the background without users ever checking whether they're up to date. The good news is that protecting yourself is relatively simple. Change default passwords, keep your devices updated, enable two-factor authentication where available, and regularly review which devices are connected to your Wi-Fi network. After all, a smart home should make life easier, not make it easier for cyber criminals.
8: Tech Mag was powered by
9: 365. Bien plus encore.
1: RM2.
3: Radio Musti.
11: कभी सोचा है
12: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
11: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
12: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
11: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
12: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
11: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
12: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
11: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
12: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
11: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
12: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
11: और आपका चांस।
12: डोंट मिस इट।

सबको एक नमस्ते संक्षिप्त समाचार समझा। कार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलल गल इंग्लैंड आ रही अर्जेंटीना के बीच आ रही के संगे 60 बरिस बाद वर्ल्ड चैंपियन बने के इंग्लैंड के सपना अधूरा हुए रह गल आर अर्जेंटीना फाइनेंस खाते नपल जगह बना रेले बाटे स्कोर रहल इंग्लैंड 1 आ रही अर्जेंटीना 2। अब सब के नजर जुनबाऊ फाइनल मैच पर रही। फाइनल खेलल जाए रविवार के दिमास के स्पेन आ रही अर्जेंटीना के बीच। आपके बता देला कि वर्ल्ड कप के फाइनल MBC 11 आ रही MBC प्ले परी दिमास रात 11 बजे।

0: ये देखे सक बजा। मौसल कम देश के तकनीकी स्वरूप के नवादी सादे खातिर तैयार बाटे। देश के प्रमुख मुख्य टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज आरिकाल पाए के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र में आयोजित अपन ऑल माइटी समिट 2026 खातिर डिजिटल और राजनीति के क्षेत्र से जुड़ल सब साझेदार लोग के एकत्र करत बटे। राष्ट्रीय स्तर के ई जरूरी आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब खाली एगो इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं बखेर ई वित्तीय परिवर्तन के गति देवे होला संस्था के रूप में आगे आवत बटे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवा के निगरानी यानी नियंत्रण प्रणाली के लेके गंभीर चिंता जतावत बाटे। वित्तीय अपराध के रोकथाम के अपन रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गो गंभीर कमी आरी कमजोरी के खुलासा कर ले बाटे। आरे पूछल जाए परी स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू बोलन बाटे कि उनकरा ई रिपोर्ट मिलल बाटे आरी अध्ययन के जानकारी वो उनकरा मिलल बाटे। मिजेम और आहे मामला में एगो नवा मोड़। बुधवार के लंदन में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT के अपील अदालत मार्च में देवल गल फैसला के खिलाफ बरतानी अधिकारी के अपील पर सुनवाई करत बाटे। मार्च में देवल गल फैसला में मिसले मौदाहें और तीन गो दूसर शागुसवासी लोग के खिलाफ निष्कासन आदेश के रद्द कर देवल गल रहल। बखेर अपील के फैसला आयलिक वो आदेश पर फिलहाल रोक लगावल गल है। वही अदालत बगल से देवल गल अंतरिम कानूनी सुरक्षा के कारण वो अभिलेख निष्कासित वो नहीं करल जा सकेलन। अब अदालत के ई तय करे के बाकी मार्च में लेवल गल फैसला बरकरार रखल जाए कि ओकरा रद्द करल जाए। विदेश के खबर में अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवा दिन वो ईरानी ठिकाना पर ही हमला करल बाटे। ई दौरान अमरीकी बल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाह पर लगावल गल ब्लॉकेज के तुरे के कोशिश करे होला एगो खाली एयर टैंकर के निष्क्रिय कर दे बाटे। तय रहल संक्षिप्त समाचार। तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई बाजार में बिस्टोप में कहीं भी ठेला ठेली हो चलेगा, लेकिन हाँ रोड पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना वहाँ पे आप ठेला ठेली मत करना, वरना लेने के लिए नहीं पड़ जाएंगे। सुबह के 8:09 गुड मॉर्निंग थर्सडे 16th of July। आप में से कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या गाना गाया बेटा, वाह क्या खा के आई। वही तो प्रॉब्लम है, मॉर्निंग में हम यही कहते हैं कि आपको मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, है ना। तो घर से निकलते ही कुछ दूर जाते ही पता चलता है, मम्मी चिल्लाती है, ओहो दूध तो पिया नहीं तुमने, अरे टिफिन तो लिया नहीं तुमने। ये सारा दिमाग का काम है। मैं कहती हूँ ये दिमाग तभी ठीक रहेगा जब आप मॉर्निंग में उठ के 2 मिनट बैठ के ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे और अपने दिमाग को सेट करोगे। ये जो आप हड़बड़ी में उठते हैं ना, जल्दी जल्दी उठते हैं ना, इससे सब कुछ हिल जाता है भाई, इंसान हिल जाता है। तो चलो यहाँ पर हम आपको डांस के जरिए हिलाएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए। अगर आप ट्रैफिक में हैं तो चिल्लाने से, चीखने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं है। हमने भी कोशिश की है भाई, कितने सालों से कोशिश की, कुछ नहीं होता। पर बाद में पता चलता है कि एक्चुअली कुछ नहीं होता, हम खामखा स्ट्रेस लेते हैं। आराम से मस्त होके बैठो। आज कहीं घूमने जाना है, आपको जाना है, आपको जाना है, किसको घूमने जाना है, आपको कहाँ जाना है, शादी में जाना है, ओके आज दिन भर क्या करना है, प्लान है दोस्तों के साथ, मौसम कैसा रहेगा, जाना चाहेंगे।

0: चलिए मिलते हैं याचना के साथ।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू स्विनर्स।
3: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह सेंट्रल प्लेटो पर कुछ बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। दोपहर बाद भी बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। रात को आसमान साफ रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 7:45, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musty.
5: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Une thermos de 500 ml à 449,95 € et le kilo de chips Winners, allumettes ou french fries à 109,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet

0: Et au défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, हम में से कितने सारे लोग होते हैं जो अक्सर मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि दुनिया का सारा बोझ हमारे कंधे में ही है। हमें ये लगता है कि हम बड़े अनलकी हैं। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी सोच की इतनी नेगेटिव बना के रखी है। कुछ भी नेगेटिव नहीं होता जब तक कि आपकी सोच नेगेटिव नहीं होती। अब मान लो आप बस का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कभी आपकी बस छूट जाती है, तो आप ये सोचते हैं कि हाँ, मैं इतनी पनौती हूँ, मेरी बस छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। तो हो सकता है कि अगर आप उस बस में चढ़ती तो कुछ हो सकता था। हो सकता है आपने एक एक्सीडेंट अवॉइड कर दिया। कभी कभी ये भी होता है, कुछ हमारे पास आते आते हम तक नहीं पहुंचते, किसी और के पास चला जाता है। फिर आप कहते हैं वो कितने लकी हैं यार, मैं कितनी अनलकी हूं, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, ये किसी और को मिल गया। लेकिन हो सकता है कि आपके हिस्से में उससे कुछ ज्यादा बेटर होगा। तो हमेशा अपने आप को ये तसल्ली देते रहना कि हमारे लाइफ में अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती है या हमारे साथ कुछ हो जाता है, तो हमेशा उसका जो है पॉजिटिव साइड देखना। कभी भी निगेटिव मत होना, क्योंकि एक बार आपने निगेटिव सोच दिमाग में रख लिया ना, तो जितनी भी चीजें आपके लाइफ में होती हैं, हमें हमेशा लगता है कि भाई हमारे साथ तो गलत होगा, भाई हम तो गलत ही हैं। ऐसा सोच के साथ होता है। तो अपनी सोच को आप पॉजिटिव बनाओ, फिर देखो आपकी लाइफ में आपको रिग्रेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा।
0: Avant de défi de long shift. Commence par une bonne décision.

0: सबको बर्बाद होना है, सबको ही प्यार करना है.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: लेकिन यहाँ हम टूटे हुए दिलों को आबाद कर देते हैं. हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, मेरे सवालों का. पीछे से
3: जवाब दो.
0: हाँ, तो आपको जवाब देना, नहीं ऐसे नहीं देना पड़ेगा जिस तरह से उन्होंने कहा जवाब दो, आपको प्यार से जवाब देना पड़ेगा. 1549912 94. एंड यस, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट जो होने वाला है 25th of July 7:30 PM एट SBICC पाई. ओ माय गॉड, 90s का वो रोमांटिक एरा. हाय हाय, कितने सारे आर्टिस्ट उभर के आए थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी आवाज़ है जिन्होंने हम सबका दिल जीता, अभिजीत भट्टाचार्य. उनका कॉन्सर्ट होने वाला है और हम 90s का जो गोल्डन ईरा है उसको फिर से जीने वाले हैं. एंड अगर आपको टिकट चाहिए तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. लेट मी टेल यू कि टिकट स्टार्ट्स एट 850 rupees एंड इट्स अवेलेबल एट mojike.mu एंड ऑल्सो एट रेजो उतायु. और अगर आप लोग रिजर्वेशन करना चाहते हैं, हॉटलाइन का नंबर क्या है, इट्स 4669999. अब सवाल क्या है, देखो भाई, बॉलीवुड में किसी ना किसी को तो लॉन्च कोई ना कोई तो करता है, चाहे एक्टर हो सिंगर हो. आपको मुझे बताना है बॉलीवुड का वो कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने इनको लॉन्च किया था. जी हाँ, अभिजीत भट्टाचार्य को एक मौका मिला था गाना गाने के लिए और ये जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इनकी पत्नी जो है उन्होंने इनके साथ गाना गाया है. तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन म्यूजिक डायरेक्टर हैं. गूगल चाचा से पूछ लो, बता देंगे. आई मैंने बता दिया. ओके, तो आप पूछ सकते हैं अपने आसपास में जिनको अभिजीत दा के गाने इतने पसंद हैं, तो मुझे बताइएगा कि वो कौन है म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने लॉन्च किया था अभिजीत दा को. आपके जवाब 5491294 पर.
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 Radio Musti in the mix.
4: मेरे गीतों को सुनने वालों, संगीत की दुनिया के दोस्तों, मैं अभिजीत तब तक जीत नहीं सकता जब तक आपके दिलों में ना बस जाऊं. बस इतना सा ख्वाब है. आप लोगों को शत शत प्रणाम और शुक्रिया. मैं शत शत प्रणाम करता हूं उन महान गायक और गायिकाओं को जिनकी आवाज की बदौलत हिंदुस्तान पूरे विश्व के संगीत में हमेशा शहंशाह बना रहेगा. मुझे गर्व है कि मैं भी उसी देश की एक आवाज हूं. हमारी दीदी लता जी, मैं उन चंद किस्मत वालों में से हूं जिन्हें सरस्वती के साक्षात दर्शन हुए हैं. आपके सुरों को सुन सुनकर, सीख सीख कर इस काबिल बन सका कि चंद लगमों में आपके साथ सुर मिला सका.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: Yes, हमने आपसे सवाल किया था दोस्तों, हमने आपसे पूछा था कि अभिजीत दा को किस म्यूजिक डायरेक्टर ने लॉन्च किया था और उन्होंने उनकी वाइफ के साथ गाने भी गाए, तो यहां पर आपको मुझे बताना था कि वो कौन है। द राइट आंसर इज आर डी बर्मन और उन्होंने आशा जी के साथ गाने गाए हैं। तो यहां पर हमें बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है और सवाल है भाई एक टिकट का और वो भी एक ऐसे कॉन्सर्ट का जहां पे होगा नॉस्टैल्जिया। यस ऑफ कोर्स, चलिए जानते हैं हमारे आज के विनर कौन है। तो सही जवाब देकर विनर बने हैं, एक्चुअली लकी ड्रॉ के बाद नाम आया है, अश्रेय देविका। कंग्रेचुलेशंस आप रहते हैं सभी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है एंड आपको मिल रहा है वन टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है सैटरडे 25th of July 7:30 PM SBICC पाई में। सो यू गोना स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड आप उन लम्हों को जीने वाले हैं जिन्हें हम अभी भी जब गाने चलते हैं 90s के तो दीवाने हो जाते हैं। सो आप अपना ये जो इवनिंग एंजॉय करेंगे विद द टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक। तो 850 रुपीज से शुरू होता है टिकट और ये टिकट आपको मिल सकता है एट mujhke.mu एंड रिजो तायो पर। और इस एक्सपीरियंस को जीने के लिए लाइव अभिजीत दा के साथ अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉल ऑन द हॉटलाइन नंबर 4669999। तो चलिए इसी के साथ हम आपको कहेंगे थैंक यू सो मच साथ देने के लिए विदिता का साथ। और यहाँ पर थोड़ी देर में हम अरविंद के साथ भी मिलने वाले हैं, जानेंगे कि अभी वर्ल्ड कप में और कौन सी बातें हो रही है। गर्मा गर्म बातें आपके लिए थोड़ी देर में।
0: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन।

0: कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वाले आरजी। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musti.
0: टीना ने सबको नाच नचाया।
4: नहीं, वो अर्जेंटीना थी।
0: तो टीना तो है ना।
4: जय, ये मेरी टीम भारत से, इंग्लैंड से और जाने कहां कहां से सपोर्टर्स की लंबी लिस्ट को लेकर निकल पड़ी वापस इंग्लैंड की तरफ। बहुत सारे लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड को, ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ ये सच है कि मेसी ने जो मैजिक चलाया उसके सामने इंग्लैंड संभल नहीं पाया।
0: नहीं बच रहा।
4: लेकिन ये भी सच है कि अब स्पेन है उसके सामने और जो उसकी एनर्जी है, जो यंगस्टर्स हैं, अरे इट्स गोना बी अमेजिंग। हाँ, लेकिन ये सच बात है कि इंग्लैंड ने जहाँ पर सोचा कि एक डिफेंस टैक्टिक्स को लेकर वो सोच पाए कि एक गोल मार दिया अब रुक जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं और अर्जेंटीना की टीम ने कमाल कर ही दिया। मेसी ने सारा जादू बिखेरा। चलिए हम तो जाएंगे कि आ जाए अरविंद और बताएं सारी अपडेट्स, लेकिन साथ साथ में हम आपको जहाँ पर बता रहे थे इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बारे में, तो ये जो लास्ट मिनट गोल हुआ ना, ये काफ़ी कमाल हो गया। टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि इंग्लैंड बहुत डिफेंसिव बन गया। अब प्रेसिंग करते कि अगर सेकेंड गोल के लिए वो पीछे आ गए और अर्जेंटीना को अलाउ किया कि डोमिनेट कर पाए पोजेशन और टेरिटरी। हाँ, लेकिन कोच जो अर्जेंटीना का था उसने अपना एक्सपीरियंस दिखाई दिया, उसने फ्रेश एनर्जी इंजेक्ट की और उसके बाद मेसी ने अपना काम कर दिया। चलिए साहब, इंग्लैंड के मार्कर्स को हटाकर अपनी मूवमेंट क्रिएट करना, ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना, और ये डिसाइसिव मोमेंट था 86 मिनट और उसके बाद स्टॉपेज टाइम में मार्टिनेज का ये हेडेड होम द विनर्स फ्रॉम अ मेसी डिलीवरी। चलिए साहब, बहुत कमाल, और अब चलते हैं सीधा स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ।
0: थोड़ी देर में अरविंद आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे, बातें होंगी। अभी के लिए
2: मॉर्निंग बीट। ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स। A good beat for your morning show.
3: RM2 Radio Musti in the mix.

0: has smashed in the equaliser. Enzo Fernandez. This is McAllister. Hits the post. And for the second time, he's hit both posts. Oh. Messi. Oh, and England are in trouble. Maybe through Lautaro Martinez. They're going out to the semi-final stage. It's been header after header after header. We're into the 12th added minute. And Argentina, the world champions, are going to the 2026 final.
1: अपना टाइटल डिफेंड करने चले हैं अर्जेंटीना वाले और मेसी का तीसरा फाइनल अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को बाहर निकाल फेंका। जो भी हो, दो सेमीफाइनल पूरे हुए स्पेन और अर्जेंटीना फाइनल में, पर दोनों सेमीफाइनल में मेसी ने स्कोर किया न एम्बापे ने। मेसी एम्बापे नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन गोल्डन बूट रेस में मेसी आगे है। 8 गोल और 4 असिस्ट मेसी के लिए, एम्बापे के खाते में 8 गोल 3 असिस्ट। मेसी महाफाइनल में खेलेगा, एम्बापे छोटे फाइनल में, मतलब गोल्डन बूट सस्पेंस जारी है। गोल्डन ग्लोव्स यानी बेस्ट गोलकीपर स्पेन के उनाई साइमन को जाएगा, अभी तक केवल 1 गोल कंसीड किया है। टोमास टुरेल बलि का बकरा बन रहा है, इंग्लैंड की हार की टोपी उसके सर पर। इंग्लैंड के गोल के बाद उसका डिफेंसिव टैक्टिक बैकफायर्ड, सब्स्टिट्यूशन को लेकर उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर भी इंग्लैंड के एफए की बैकिंग है, यूरो 2028 में टुरेल ही इंग्लैंड का कोच रहेगा। अर्जेंटीना की टीम का लेट शो मैजिक और अनबिलीवेबल रेजिलियंस। अर्जेंटीना द्वारा स्कोर किए गए 19 गोल में से 11 मैच के आखिरी 15 मिनटों में, और इंजुरी टाइम गोल भी काफी रहे। और इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड स्टेडियम में 6.5 मिलियन फैंस आए। सो फाइनल में एक हिस्टोरिक इनॉग्रल हाफ टाइम शो होगा। शकीरा, जस्टिन बीबर, मादोना और बीटीएस होंगे। सो लेट्स वेट फॉर द ग्रैंड फाइनल जो इस संडे को होगा न्यूयॉर्क में, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। इससे पहले सैटरडे को थर्ड प्लेस ब्रॉन्ज मेडल मैच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आज आराम का दिन, कल भी फिर वर्ल्ड कप फिनाले वेटिंग। इट्स सैड समाप्त हो रहा है वर्ल्ड कप, बट इट इज ग्रेट, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फाइनल। लेट्स वेट।
2: इट वॉज द वर्ल्ड कप मैगजीन ऑन RM2 विद माइटी।
3: मॉर्निंग बीट।
4: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
3: A good beat for your morning show.
5: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: एंड यस चलिए यहाँ पर एनकलाइव के साथ हम खेल रहे हैं. आपको मौका मिलेगा इनाम जीतने का. क्या मिलेगा? एक गुडी बैग वर्थ 500 रुपीज. यस सभी मेरे पास आपके लिए सवाल है. अगर आप मुझे जवाब देते हैं सही तो आपको मिल सकता है ये गुडी बैग. ओके, यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव. हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव. आपको मुझे सही जवाब देना है ऑन 5491294 पूरे नाम और पते के साथ.
3: Problème léguer, li baguette lé li. Li capave moi, li capave toi, li capave nous tout. Protège tu léguer zodi. Pour qui dîme, tu pas à risque un ban problème léguer. Allô, enjoy to life avec Enke Life. Parce qu'il sa bondi li Enke Life là, et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te ban activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondi li Enke Life, mais là, te pébron soin tu léguer. Enke Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
0: Morning Beat. Oh God, one more remix. A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: चलो भी अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, सभी लोग जो हैं फुटबॉल प्रेमी जो हैं बड़े सैड होने वाले हैं क्योंकि फाइनल करीब है। चलिए इसी के साथ अभी हमने सवाल किया था, आपका दिल भी धक धक कर रहा होगा जानने के लिए कि आखिर इनाम जीता किसने।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए तो हमने आपसे सवाल किया था, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव, एंड द राइट आंसर इज 4। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हम बात करें जब एंड का लाइफ की तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्ट नाउ एंड यू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। बस आपको आज से ही शुरू करना है, अभी से ही शुरू करना है, अपने दिल का ख्याल रखिए। जबकि हमारा जो दिल है, हमारे दिल ने अगर धड़कना बंद कर दिया ना, तो बस हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा।

स्टे एक्टिव, बैलेंस मील जो है उसको आप खाना शुरू कीजिए, एंड अनकलाइप को अपना डेली पार्टनर बनाइएगा फॉर केयरिंग योर हार्ट. और हाँ, इफ यू हैव एनी हेल्थ इश्यूज तो आपको ज़रूर यहाँ पर किसी प्रोफेशनल के साथ एडवाइस लेना होगा. एंड अभी किसने जीता इनाम ये बता दें यहाँ पर.

of Anchor Life 300 grams एंकर लाइव कप. जी हाँ, तो अब मैं घड़ी भी देख रही हूँ ना, मैं जाने का समय हो रहा है एंड विकास के आने का भी. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. आपका जो गुडी बैग है आपको आकर एमबीसी कलेक्ट करना पड़ेगा अपने आईडी कार्ड के साथ, भूलिएगा नहीं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. और मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे, 9:30 बजे और दोपहर के 3 बजे के बीच में, ठीक है. तो इसी के साथ टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू यू. मेरे बाद विकास आ रहे हैं साथ देने के लिए एंड आपसे मुलाकात करूंगी बहुत जल्द, भूलिएगा नहीं, कल शाम को, रात को 9 बजे. ख्याल रखिएगा अपना. हाय हाय.

तो मैं सोच रही थी ऊ लाला ये तो पूनम है हमारी पू तो पूनम का साथ रहेगा 9 बजे ख्याल रखिएगा अपना मिलते रहूंगी मैं।

0: आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को यह सूचित करना चाहता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सह निरुद्ध जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे के बीच एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के दौरान बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न कोई भी असुविधा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपके सहयोग की आशा करती है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti
1: North, South
2: 103.5
1: East, West
2: 96.4
1: Center
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check सुबह के 9 बज रहे हैं।

0: याशना मिश्रा से समाचार सुनते हैं। नमस्कार याशना।
1: नमस्कार आपको अनुराधा और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा ही रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए अपनी जगह बना गया। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 और अर्जेंटीना 2। अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी। फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। लियोनेल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा। पहला खिलाड़ी है काफू जो ब्राज़ील के साथ खेला था। और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार रात 11 बजे आप देख पाएंगे। मॉरिशस टेलीकॉम देश के तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में है और देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और

0: कल पाई के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित अपने प्रमुख औद्योगिकी सम्मेलन ऑल माइटी समिट 2026 के लिए डिजिटल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एक मंच पर ला रही है। राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में नहीं बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में सामने आ रही है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वित्तीय अपराधों की रोकथाम संबंधी अपने रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गंभीर खामियों और कमजोरियों का खुलासा किया। पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेच ने कहा कि उन्हें इस रिपोर्ट और अध्ययन की जानकारी मिली है। FCC की जांच के तहत CEB के एक कर्मचारी को कल गिरफ्तार किया गया। CEB में लाइन्स टेक्नीशियन 33 साल के मोहम्मद जलालुद्दीन मुहबीर को गिरफ्तार करने से पहले उनके साथ अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने वालिद खत में एक निवासी को एक फर्जी दस्तावेज दिखाकर ये दावा किया कि उन्हें CEB की ओर से उसके बिजली मीटर का निरीक्षण करने भेजा गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार इसके बाद उन्होंने मीटर में कथित अनियमितता की शिकायत CEB को न करके उस व्यक्ति से बड़ी रकम की मांग की जो उन्हें मिली भी। FCC एक्ट के तहत इन आरोपों को भ्रष्टाचार के अपराध की श्रेणी में माना जा रहा है। विदेश की खबरों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान अमेरिकी बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाह पर लगाए गए ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे दीजिए। नमस्कार और शुभ।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: कभी सोचा है
3: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस,
3: डोंट मिस इट।
4: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:09 हो चुके हैं. गुडी गुडी मॉर्निंग भाई. आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्यारी सी मेडिसिन लेकर आई हूँ जो बिल्कुल फ्री मिलती है, कहीं से भी मिल जाती है. इसका नाम है मुस्कुराहट. बस एक स्माइल और आधी टेंशन अपने आप हल्की लगने लगती है. मैं हूँ आपके साथ पूनम. चलिए शुरू करते हैं मस्ती मॉर्निंग सुपर हिट बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ. और मेरे से पहले थी आपके साथ वेदिता जो कि चली गई और मेरे को छोड़ गई अकेले. और उससे पहले थी आपका साथ दे रही थी सुबह सुबह से वही नीलमणि. तो ये गाने तो हम आपके चलाते रहते हैं, आपके मूड को रिफ्रेश करते रहते हैं, आपको एनर्जी देते रहते हैं और आपको बूस्ट करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपने सारे काम कर सकें. तो एंजॉय कीजिए अपने गानों को. और अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो आप भेज सकते हैं 5499-1294 पर.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:19 हो चुके हैं और भाई आप जुड़ गए हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ, इंजॉय कर रहे हैं मुझे पता है। और जो ऑफिस वाले हैं अपने ऑफिस पहुंच गए, शॉप्स खोलने वाले शॉप्स खोल चुके होंगे, अपना सेटअप कर चुके होंगे, बस इंतज़ार कर रहे होंगे अब कब कस्टमर्स आएँ। तो भाई हम आपको यही बोलेंगे, कस्टमर्स आएँ, हमारी तो पूरी यही दुआ रहती है। और अगर जो शेफ्स हैं जो कि मॉर्निंग से शुरू होते हैं कि भाई लंच आवर के टाइम पर बहुत कुछ अच्छे अच्छे डिशेज़ बना सकें, तो हम कहते हैं कि भाई आप भी इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि जो जादू है ना आपने अपनी उंगलियों का वो उसमें डाल दिया है। बस इंतजार कीजिए अब अपने उन दोस्तों का जिनको खाना बहुत पसंद है। भैया एक प्यारा सा गाना मेरा बड़ा दिल कर रहा है अभिजीत की आवाज़ में, क्योंकि अभिजीत जी आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि उनका जो गाना है आपको सुनाया जाए। तो चलिए भाई ये उनका गाना है अभिजीत जी और अलका जी की आवाज़ में, चोरी चोरी सपनों में। तो इंजॉय कीजिए, ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, आपको अच्छा लगेगा। सुबह सुबह आपका दिन शुभ हो।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty. Radio.

आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को यह सूचित करना चाहता है कि गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सह निरुद्ध जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे

एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के दौरान बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी, तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न कोई भी असुविधा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपके सहयोग की आशा।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नौ बजकर 31 मिनट हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम भाई। क्या बात है, दिल दिल दिल दिल दिल, हम तो दिल बांटते रहते हैं। हमें पता होता है कि भाई ये दिल किसी के साथ जाएगा तो और उसको कहते हैं ना कि और खुशी मिलेगी, तो हमारी ये जो खुशियाँ हैं एक दूसरे की ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषि बाल गोविंद जी, जो कह रहे हैं आज उनका बर्थडे है और साथ ही उनके नेफ्यू का भी बर्थडे है और हम नहीं बताएंगे कि आप कितने साल के हो गए। आपने हमें ज़रूर बताया पर हम तो कहेंगे आप अभी 18 साल के हैं। एंजॉय कीजिए आपका ये स्पेशल डे और हम तो इतना ही कहेंगे कि आपके स्पेशल डे पे हम कुछ चला सकें आपके लिए क्यों नहीं चलाएंगे जी। साथ में ही राजश्री जी साथ दे रही हैं और आज उनके फैमिली में कृषि ईश्वरी जी का भी बर्थडे है और पापा सतीश, ब्रो आयान एंड होल ईश्वरी फैमिली एंड नंदू फैमिली उनको विश कर रहे हैं। क्या बात है भाई, जिनका भी आज बर्थडे है हम कहते हैं हमेशा खुश रहो, एंजॉय करो अपने गाने, अपनी जिंदगी और अपना जो काम है जो आप करते हैं एंजॉय कीजिएगा। साथ में यलेश जी भी जुड़े हुए हैं और साथ में एंजॉय कर रहे हैं। अब्दुल सायरा बानो जी जुड़ी हुई हैं, साथ में हरीश प्रिया एंड सुनीता जी भी साथ दे रही हैं, तो एंजॉय कीजिए। पर हम कैसे भूल सकते हैं हमारा वो गाना जो हम जिनका भी बर्थडे होता है उनके लिए चलाते हैं। ये पूरी MBC की टीम की तरफ से आप सबको जिनका भी बर्थडे है एंजॉय कीजिएगा और अच्छे से खुशी से अपना बर्थडे मनाइए।

0: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty. Your daily horoscope. RM2. Radio Musty.
1: 9:43 हो चुके हैं और उम्मीद है सुबह की शुरुआत मुस्कान के साथ शुरू हुई होगी। चलिए देखते हैं आज सितारे आपकी झोली में क्या क्या खुशियां डालने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज मेष राशि। आज अपनी एनर्जी को पूरा इस्तेमाल कीजिए, जो सोचेंगे उसे करने का भी मन बनेगा। मुस्कुराइए, अच्छी शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज छोटी छोटी खुशियां आपका दिल जीत लेंगी। घर हो या काम, हर जगह अच्छी वाइब्स रहेगी। दिन का पूरा मजा लीजिए। लकी कलर बनेगा ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज हंसी मजाक और अच्छी बातें आपका मूड बनाए रखेंगी। कोई नया आइडिया भी काम आ सकता है। दिल खोलकर दिन का स्वागत कीजिए और सबके दिलों का ख्याल रखिए। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज अपनों का प्यार आपकी ताकत बनेगा। दिल खुश रहेगा, हर काम आसान लगेगा। खुशियां बांटे, खुशियां बढ़ेंगी। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपकी पर्सनालिटी सबका ध्यान खींचेगी। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। अच्छी तारीफ सुनने को मिल सकती है, चाहे बॉस हो चाहे आप किसी जगह पे काम कर रहे हो। बस यही बात है कि अगर आपकी किसी ने तारीफ कर दी तो आपका नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। तो लकी कलर बनेगा आपका गोल्डन, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज खुद पर ज्यादा सख्ती मत कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, सब अच्छा होगा। दिन आपका मुस्कुराते हुए गुजरेगा और सबकी वजह भी आपकी सारी सिर्फ मुस्कुराहट ही होगी। लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज किसी अपने का साथ बिताया समय जो खास होगा। मीठी बातें दिल खुश कर देंगी। रिश्तों की गर्माहट महसूस कीजिए। लकी कलर बनेगा गुलाबी यानी कि पिंक, लकी नंबर है 4।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज आपकी मेहनत चमक सकती है, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। दिन आपके फेवर में रहने वाला है। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज कुछ नया करने का मन करेगा। अपनी पॉजिटिव एनर्जी सबके साथ शेयर कीजिए। मजेदार दिन आपका इंतजार कर रहा है। लकी कलर है बैंगनी, लकी नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज अपने गोल्स की तरफ एक और कदम बढ़ाइए। मेहनत का अच्छा एहसास मिलेगा। शाम तक चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। लकी कलर है बेज, लकी नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपकी क्रिएटिविटी रंग दिखाएगी। अपनी अलग पहचान बनाए रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज दिल की सुनिए और खुश रहिए। अच्छे लोगों का साथ आपका दिन बना देगा। हर पल को खुल कर जिए। लकी कलर बनेगा सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो दोस्तों आज हंसिए, मुस्कुराइए और जहां जाइए अपनी एनर्जी साथ लेकर जाइए, क्योंकि खुश रहने वाले लोग दूसरों को भी बहुत ही प्यारी जिंदगी

0: देते हैं। मैं हूँ आपके साथ पूनम, आपके मस्ती मॉर्निंग शो में, ये है रेडियो मस्ती।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. You can find me in the club, bottle full of bub. My mind got. You're listening to Musti Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musti.

0: You're listening to Masti Mornings.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
0: Stay tuned, stay musty. Radio

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check subah ke 10 baj rahe hain. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से. याचना, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए अपनी जगह बना गया. स्कोर रहा इंग्लैंड 1 और अर्जेंटीना 2. अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी. फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच. लायोनल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया है जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा. पहला खिलाड़ी है काफू जो ब्राज़ील के साथ खेला था. और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार रात 11 बजे आप देख पाएंगे. मॉरिशस टेलीकॉम द्वारा पाए के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में ऑल माइटी समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है जो कल और आज लग रहा है. डिजिटल और राजनीति क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एक मंच पर वो साथ ला रहा है. राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में नहीं बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में सामने आ रही है. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक कर्मचारी को कल गिरफ्तार किया गया. सीबी में लाइन्स टेक्नीशियन 33 साल के मोहम्मद जलालुद्दीन मोहबीर की गिरफ्तारी से पहले उनके साथ अंडर वार्निंग पूछताछ की गई. उन पर आरोप है कि उन्होंने वाले दिपखत तक एक निवासी को एक फर्जी दस्तावेज दिखाकर ये दावा किया कि उन्हें सीबी की ओर से उसके बिजली मीटर का निरीक्षण करने भेजा गया था. जांच

0: कर्ताओं के अनुसार इसके बाद उन्होंने मीटर में कथित अनियमितता की शिकायत सीबी को न करने का आश्वासन देकर उस व्यक्ति से बड़ी रकम की मांग की जो उसे मिली भी। एससीसी एक्ट के तहत इन आरोपों को भ्रष्टाचार के अपराध की श्रेणी में माना जा रहा है। विदेश में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान अमेरिकी बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खालिक एयर टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। ऋषि डैनन रो थ्वाबुचिक यूनियन वेल में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री निशान सिंह चुबा जो निशान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके बेटे गिरीश्वर सिंह चुबा के मकान ऋषि डैनन रो थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। यूनिवर्सल स्ट्रीट फोर बाक ब्रांच रोड पुधोदो आमलेत में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के जनाब जुनूब अहमद जो जुनूब के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दोपहर 2 बजे उनकी बेटी शहनाज पुचाहू के मकान यूनिवर्सल स्ट्रीट फोर बाक ब्रांच रोड पुधोदो आमलेट से उठाकर दफनाने के लिए पीतों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। कुजियालेन ओलिये में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के जनाब शेख हबीद नीमत जो बायामिन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दोपहर ढाई बजे उनके बेटों के यहाँ से कुजियालेन ओलिये से उठाकर दफनाने के लिए सहमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402-8000.
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
1: टक टक बॉलीवुड।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
3: 10:19 हो चुके हैं और आपने मुझे बताया है इन्जॉय किया होगा। ये जो गाने हैं ना, ये अपने आप को तो हमें तो थोड़ा चेंज करते हैं और अपने आप में से ऐसी एनर्जी निकालते हैं, हमारे दिल खुश हो जाता है। चलिए भाई, एक फैशन टिप हो जाए। अगर आपने नए शूज़ खरीदे हैं, जैसे वो लेदर के होते हैं या कभी पंजाबी जूती कोई लोग खरीदते हैं उसमें भी लेदर होता है, कई बार ऐसे जैसे कुर्ते के साथ में कुछ ऐसे लेदर वाले सैंडल्स खरीदते हैं तो वो कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से टाइट हो जाते हैं और थोड़े से हार्ड होते हैं बिगनिंग में पहनने के लिए। उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या चाहिए होता है कि भाई वेडिंग पे जाना है तो नई नई चप्पल डालनी है या सैंडल डालने हैं, तो जब हम एकदम से जाते हैं बाहर उनको पहन के तो हमारे पैरों में थोड़े से छाले पड़ जाते हैं और थोड़े से बड़े ऑकवर्ड से लगता है क्योंकि उसमें चलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पर थोड़ा सा रात को इनसाइड उनके और आउटसाइड नहीं सिर्फ इनसाइड आपको उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है, चाहे मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिए। उससे थोड़े से क्या होता है, और उसको 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप 15-20 मिनट छोड़ देंगे तो उसके बाद उसको फिर से पहनिए, वो आपके पैरों में एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा उनको थोड़ा सा इनसाइड से रब कीजिए फिंगर से, जिससे कि वो आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और जब वो फुटवेयर आप पहनेंगे नेक्स्ट डे अपनी मैचिंग ड्रेस के साथ, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, आपके पैरों में कहीं दर्द नहीं होगा, आपको कोई भी छाले नहीं पड़ेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ लेदर शूज़ के लिए या लेदर पंजाबी जूती के लिए या आपके वो लेदर चीज़ें जो आप पैरों में डालते हैं और आपको बहुत दिल करता है पहनने का, पर सिर्फ डर यही होता है कि छाले ना पड़ जाए। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने, और ये था एक प्यारा सा फैशन टिप आप सबके लिए।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:33 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। और भाई मॉर्निंग अगर अच्छी बन जाए तो दोपहर शाम रात बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए भाई, हमारे लिए तो यही अच्छी बात है कि आप हमें मैसेजेस करते हैं और अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है हेमा, यशोदा, विदिशा एंड लीना, रेशमा एंड याश्रा की तरफ से। उनके घर में आई है एक प्यारी सी प्रिंसेस, यस शायद उनका बर्थ हुआ है, रवोथिया जिनको कह रहे हैं कि वो आई हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून और बहार आ गई। क्या बात है भाई, इन्जॉय कीजिए उस प्यारे से बचपन को जो हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और ये बच्चे छोटे से होते हैं और फटाफट से बड़े हो जाते हैं, तो इन्जॉय कीजिएगा। और थोड़ी सी ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी, कोई बात नहीं, आप साथ देते रहिए और हम साथ में आपको आपके गानों के साथ आपको एंटरटेन करते रहेंगे। साथ में वीना जी नवलफों से जुड़ी हैं और अपने हस्बैंड के लिए यानी कि देव जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। उन्होंने जो गाना की फरमाइश की है हम बिल्कुल चलाने वाले हैं। साथ में ही श्याम देवी चरण जी जुड़े हुए हैं, सुखदेव, राजू, रवीन, सुनील, आश्ले एंड रामू जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। और कहते हैं भैया तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, तो मैं तो यही कहती हूँ दिल लगाना क्यों है, सबको घर पर बुलाओ, चाय पूछो, पानी दो और उनको बोलो बैठो हमारे साथ, चलो थोड़ा सा खेलते हैं। और वैसे फीफा चल रहा है वो भी इंजॉयमेंट का कुछ आप प्लान कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। शालिनी बिसंभर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं और कह रही हैं बहुत मज़ा आ रहा है। राजन रघुपत जी जो कि लंदन से हैं वो भी साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच आपका सर। ललिता जीतन जी भी दे रही हैं साथ और अपनी पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ में गाने सुन रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। विश्वानी धूमन जी साथ दे रही हैं जो कि किचन में है और कह रही हैं भाई लंच बना रही हूँ, आ जाओ जिसने आना है।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.
2: प्यारी सी बिटिया रानी जो घर पे आई है उसके लिए

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti

0: रेडियो मस्ती
1: 10:53 हो चुके हैं और हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे लोग। हम तो भाई एक दो नहीं रह गए, अब हम बहुत सारे हो गए हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो हैं आज हमारे एमबीसी स्टूडियो पहुँचे हैं और कह रहे हैं उनको बहुत सारी बातें करनी है। तो भाई हम भी पूछ लेते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं हमारे इतने सारे दोस्त। हेलो जी, कहाँ से आए हैं आप?
2: हम लोग घोप से आए हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो कहाँ से, मतलब आज आपने कैसे सोचा कि आज आप यहाँ पर आने वाले हैं? क्या
2: आइडिया नहीं था हम लोग यहाँ आने वाले हैं एमबीसी में आज।
1: अच्छा, आपको आइडिया नहीं था या बाकी किसी को भी आइडिया नहीं था?
2: तो फिर सरप्राइज था।
1: क्या बात है भाई, सरप्राइज हो तो ऐसा हो भाई, हम तो यही कहते हैं आपका ऐसा सरप्राइज हमेशा बनता रहे। तो आज क्या, अब इसके बाद क्या प्लानिंग है आपकी? कुछ आज कहीं और भी जाना है या आज हमारे साथ
2: समुंदर जाना है?
1: सीसाइड जाना है। बाहर मौसम कैसा है?
2: ठीक है, बहुत बढ़िया है, मौसम बढ़िया है।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई, ऐसे हमारे दोस्त आने लग जाएं और इतने सारे हमारे प्यारे ये यंगस्टर्स हैं, इनको आप ये मत समझिएगा कि ये यहाँ पर अब एज हो गई और इन्होंने बोला चलो हम निकले। यही लोग होते हैं जो आके आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच आप सभी का। आप कुछ और कहना चाहते हैं, कोई कुछ कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स के, या हमें कुछ कहना चाहते हैं?
3: आपको बोलना चाहिए,
1: हमें बोलना चाहिए, हम तो कह ही रहे हैं।
4: आप क्वेश्चन
1: करना, क्या बात है भाई, हम तो यही बोलेंगे हमेशा खुश रहिए, ऐसे जैसे आप आए हैं मुस्कुराते हुए, हमेशा ऐसे ही रहिए, ऐसे प्यार बांटते रहिए। आप सबने प्यार दिया, आप आए, आप सबका वेलकम है। और यह भी हम थोड़ी बातें करेंगे। चलिए भाई 10:55 हो गए, प्यारा सा गाना सुनते हैं अभिजीत की आवाज में। ये है आप सबके लिए हमारी तरफ से
5: RM2 रेडियो मस्ती।

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपी सेल्स लो ग्रानाइट एंड क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लिनियर मॉडर्न प्री शॉक लो डोज अबान प्री की पुफे ओ मेम गाय पाको डेकोरेशन पुला काज ऑर्डर ऑडियो सा

0: गया।
1: कभी सोचा है
0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: वेलकम टू RM2
3: रेडियो मस्ती।
0: नॉर्थ, साउथ,
1: 103.5,
0: ईस्ट, वेस्ट,
1: 96.4,
0: सेंटर,
1: 99.4.
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती,
2: द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। फील द मस्ती, द मस्ती, द मस्ती।
4: टाइम चेक, सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
5: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ। स्कोर रहा इंग्लैंड 1 और अर्जेंटीना 2। अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी। फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार रात 11 बजे, देखना न भूलें। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई। वित्तीय अपराध की रोकथाम संबंधी अपनी रिपोर्ट में FCC ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गंभीर खामियों और कमजोरियों का खुलासा किया। पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें इस रिपोर्ट और अध्ययन की जानकारी मिली है। मिसले मौदाग मामले में एक नया मोड़। बुधवार से लंदन में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT की अपील अदालत मार्च में दिए गए फैसले के खिलाफ बरतानी अधिकारियों की अपील पर सुनवाई कर रही है। मार्च में दिए गए फैसले में मिसले मौदाग और 3 अन्य शागसवासियों के खिलाफ जारी निष्कासन आदेशों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि अपील का फैसला आने तक उस आदेश पर फिलहाल रोक लगी हुई है। वहीं अदालत द्वारा दी गई अंतरिम कानूनी सुरक्षा के कारण उन्हें अभी निष्कासित भी नहीं किया जा सकता। अब अदालत को तय करना है कि मार्च में लिया गया फैसला बरकरार रखा जाए या उसे रद्द किया जाए। विदेश में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के 5वें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान अमेरिकी बलों ने होमूस जलमार्ग में ईरान के बंदरगाह पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय किया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। जंबो रोड शामुनी में 73 साल के 73 years old के कुमारी आना जनका जागानायक्लू, कुमारी आना जागानायक्लू जो आना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान जंबो रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। ऋषि दयानंद रो थ्वाबुचिक यूनियन वेल में 75 साल के 75 years old के श्री निशान सिंह चुबा, जो निशान के नाम से ज़्यादा जाने जाते

0: थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुपहर 3:30 बजे उनके बेटे गिरेश्वर सिंह चुबा के मकान ऋषि दयानंद रोड थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेथ 3:30 PM फोर बाग ब्रांच रोड पुथोदो आमलेट में यूनिवर्सल स्ट्रीट फोर बाग ब्रांच रोड पुथोदो आमलेट में 68 साल के 68 years old के श्री जुनूब अहमद जो जुनूब के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दोपहर 2 बजे उनकी बेटी शेनाज पुतारो के मकान यूनिवर्सल स्ट्रीट फोर बाग ब्रांच रोड पुथोदो आमलेट से उठाकर दफनाने के लिए पीतों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2 PM कुजियालिन ओलिये में 87 साल के 87 years old के जनाब शेख हबीद निमत जो बाय अमीन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2:15 बजे उनके बेटों के मकान कुजियालिन ओलिये से उठाकर दफना सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए बेलगोज की मस्जिद ऑफ दफनाने के लिए सैमौतें का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2:15 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:09 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। थर्सडे का प्यारा सा दिन, 16 तारीख आ गई भाई और हमारे ये थर्ड आवर चल रहा है और ऐसे मस्ती के गाने चल रहे हैं जहाँ पे हमारे सारे मूड के हिसाब से गाने चल रहे हैं। और अभी देखो इतने सारे लोग आए थे, उन्होंने हमारा तो दिल खुश कर दिया और हमारा दिन भी बना दिया। तो चलिए भाई, अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में इश्क करो दिल से। सच में बात है, इश्क करो तो दिल से करो। और इश्क एक और चीज़ से भी होता है, वो है भैया अपने लिए 15 मिनट निकाल ना। अगर आपके पास सबके लिए टाइम और खुद के लिए ही टाइम नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो 15 मिनट आपने सुबह या दोपहर या शाम, जो आपको कंफर्टेबल टाइम निकले वो ज़रूर निकालिए। वैसे अगर जो लेडीज़ घर में हैं वो तो 15 मिनट सिर्फ बस आपको छोटी सी नैप लेनी है, उसके बाद कोई मेडिटेशन करनी है या आपको थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना है, थोड़ा सा घर में या गार्डन में थोड़ा सा वॉक करना है, धूप लेनी है, जो आपको दिल करता है वो कीजिए, बट म्यूज़िक के साथ रहिए। एक थोड़ा सा अपना दही खाइए, थोड़े से जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं उसको अपने लंच से पहले खा लीजिए। मतलब ये ना हो कि आपने पूरा लंच कर लिया और उसके बाद आपका पेट भर गया और आपने बोला अरे अब तो फ्रूट खाने का टाइम नहीं है। और आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो भी ज़्यादा फ्रूट्स और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो हम यही कहेंगे अगर आप उनको फ्रूट दोपहर में खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके लंच बॉक्स में डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल दो, थोड़ा सा नींबू डाल दो, उससे भी उनको टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा संतरे वंतरे से स्टाइल ट्राई कीजिए, जो उनका स्टाइल रेगुलर बन जाएगा कि भाई खाना ही खाना है। तो जिंदगी मुस्कुराती तभी है जब आपका है, आपके पास हेल्थ होती है, और हेल्थ तभी है जब आपके पास अपने ये चीज़ें हैं। तो बस इंजॉय कीजिए अपने गानों को, पर हम आपको यही कहेंगे दोपहर का टाइम शुरू होने वाला है, जो किचन में चली गई हैं उनको फिर से हम यही कहेंगे थोड़ा सा साथ साथ पानी पीते रहो, थोड़ा सा कुछ ऐसा हल्का फुल्का साथ साथ लेते रहो, और जो ऑफिस में है वो अपने साथ घर में से लंच जरूर लेकर आए। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:24 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं हमारे साथ यानी कि रेडियो मस्ती के साथ. और मस्ती में चल रहा है भैया सारा काम और यहाँ पर हम लोग बहुत कूल हैं. यहाँ पर पूरी जो टीम है ना गानों के साथ डांस कर रही होती है, मज़े कर रही होती है. पर हमने सोचा है भैया आपको तो मज़े कराने हैं पर आपको एक टिप देना है. भैया हम उनके लिए अभी बात करने जा रहे हैं जिनके थोड़े से बाल झड़ रहे हैं. मोस्टली लड़कों के साथ होता है, मेल्स के साथ होता है. अब वो क्यों होता है वो तो सबको पता ही है क्योंकि थोड़ा सा बार बार हाथ लगाते रहते हैं, स्टाइल डालते रहते हैं यंग एज में और फिर एक टाइम आता है कि उनके आगे से बाल थोड़े से झड़ जाते हैं. और बात और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं बट हम छोटा सा एक हर्बल टिप देने वाले हैं. तो आपके बालों की केयर के लिए अगर आपके बाल काफ़ी झड़ते हैं तो आपको बहुत ही छोटी सी चीज़ करनी है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है. पेन पेपर साथ रख लीजिए और आपको देखिए बहुत ही रिलैक्स मिलेगा. और जिनके भी बाल झड़ रहे हैं उनके बाल मतलब एक तो गिरना बंद हो जाएंगे और जिनके झड़ चुके हैं मतलब वहाँ पर बाल ही नहीं है उनके वापस बाल आना शुरू हो जाएंगे. बट आप ये नहीं कह सकते कि एक या दो दिन में, चार दिन में, दस दिन में, आपको थोड़े टाइम ही करते रहना है. तो आपको क्या करना है, 2 टेबलस्पून काली सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड्स लेने हैं. उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है. मतलब आपको एकदम से फटाफट से नहीं करना है, आपको ड्राई रोस्ट करना है. उसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं क्रश करना, उसको थोड़ा सा पाउडर बनाना है बट ऐसे ही थोड़ी सी हैवी किसी चीज़ से. उसके बाद थोड़ा सा क्रश करके उसके अंदर थोड़ा सा गर्म तेल जो होता है ना, नॉर्मल एक तो गर्म सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा सा अच्छे से जला दो गरम तेल को. फिर उसे ठंडा कर दो. उसके 2 चम्मच उसी जो आपने मस्टर्ड सीड्स को रोस्ट किया है उसके अंदर डाल दीजिए और उससे थोड़ा सा स्क्रब कीजिए. अपने जहाँ पे भी आपके बाल नहीं है वहाँ पर स्क्रब कीजिए 10 मिनट तक करते रहिए, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से. बहुत फास्ट नहीं करना, धीरे धीरे करना है. और आपको देखिएगा कि वहाँ पर आपको एक बार मतलब ऐसा फील होने लग जाएगा कि हाँ ये जो बाल उगरे हैं वो दोबारा से वहाँ पर उगने शुरू हो जाएंगे. और 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, एक हल्के से फिर से थोड़ा सा तेल लेना है और जो बाकी बाल हैं उसके ऊपर भी लगा लेना है. जब वो 10 मिनट का तेल लग जाएगा उसको 2 घंटे तक आपको ऐसे ही रहने देना है. जब 2 घंटे आपका सर रहेगा तेल में और जो आपने स्क्रब किया है उसे ऐसे ही रहने दो. जो झड़ जाएगा उसका सीड उसको फेंक दीजिएगा, टॉवल नीचे रख लीजिएगा, न्यूज़पेपर रख लीजिएगा, वो आपको देखना है. और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 घंटे के बाद मतलब बहुत ही हार्श कोई केमिकल वाला नहीं शैम्पू होना चाहिए, बिल्कुल जो भी हर्बल आपका शैम्पू होता है उसको यूज़ कीजिए, उसको लगाइए आराम से. उसको नेचुरल, कोई ड्रायर हेयर ड्रायर नहीं यूज़ करना, आपको नेचुरल धूप हो या आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ दीजिए. आपको देखिएगा 5-6 महीने में आपके बाल आने लग जाएंगे. आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको फ़ायदा हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर और सच में आपको फ़र्क दिखेगा. तो चलिए जी इन्जॉय कीजिए अपने गाने और ये हमारे साथ जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती के साथ. You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Les 5 kilos de riz basmati Mahal 11,21 à 289,95 roupies et à l'achat d'un kilo de Kenko Fish Balls à 270 roupies.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio. Musty.
2: 11:43 हो चुके हैं दोस्तों, क्या बात है। मतलब इतने सारे मैसेजेस, वैसे हम बोलते रहते हैं कि आपको कोई मैसेज भेजना है तो बताइए, पर आप सबको अपने बालों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, प्यार है, मुझे आज पता चल गया, क्योंकि सब लोगों ने बोला अरे हम सुन रहे थे, हमारा रह गया, प्लीज़ बता दो बाल झड़ने का कुछ फिर से। तो हम फिर से आपको बता देते हैं, जो आपने मस्टर्ड सीड्स लेने हैं वो काले वाले लेने हैं, और वो मस्टर्ड सीड्स को आप थोड़ा सा रोस्ट कीजिए

कीजिएगा, जिससे वो जब हल्की धीमी धीमी आँच पे, एकदम से जलाना नहीं है, उसे उड़ाना नहीं है, धीमे धीमे करना है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा क्रश कर देना। उसके अंदर सरसों का ही तेल मिलाना है, मतलब उसके अंदर कोई और तेल नहीं मिलाना। उसको डालिएगा और जो तेल होगा पहले उसको अच्छे से गर्म सेपरेटली कर लीजिएगा, जब वो ठंडा हो जाए तो उसके 2 चम्मच अपने सरसों के सीड्स के अंदर डालिएगा, उनको मिक्स कीजिएगा, अपनी उस जगह पे लगाइएगा जहाँ पे आपके बाल नहीं है, और फिर थोड़ा सा जो और ऑयल लीजिएगा, जो बाकी बाल हैं, जो भी आपका स्कैल्प है, उस पे अच्छे से लगाइए, मसाज कीजिए, और देखिए फिर उसके बाद अपना शैम्पू कर लीजिए जैसे नॉर्मल शैम्पू करते हैं, तो देखिए आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे, और बाल जहाँ पर नहीं है वहाँ आने लग जाएंगे। चलिए भाई, इस वक्त हम बहुत सारी बातें तो आपसे साथ करते रहते हैं, पर आपको इतना ज़रूर बता दें, जो लोग लेडीज़ चाहे जेंट्स कंप्यूटर के आगे बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सा वॉक कर लिया कीजिए, 2 मिनट थोड़ी सी आँखों की एक्सरसाइज करना बिल्कुल मत भूलिए, मतलब आप उसे अप देखिए, फिर नीचे देखिए, लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, डाउन देखिए, फिर ऐसे करते 1 या 2 मिनट करते रहें, आपको फिर अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, 1 मिनट जितना आपको दिल करता है, और उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे ना, रिलैक्स फील करेंगे, आपकी जो एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते रहेंगे, एक तो आपका चश्मा उतर जाएगा, अगर नहीं भी उतना हो रहा, मतलब आपका ज़्यादा नंबर है तो, पर आपको रिलैक्सेशन बहुत मिलेगा। तो इन्जॉय कीजिए अपने गाने, ये तो छोटे छोटे टिप्स हैं, हम आपके लिए देते ही रहते हैं। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ग्यारह बजकर 55 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब मेरा तो टाइम जाने का हो गया। मस्ती मॉर्निंग ने मुझे पता है कि आपका मूड फ्रेश किया होगा और आपका साथ जो मिला उस सब के लिए थैंक यू, आपके मैसेजेस के लिए, आपके कॉल्स के लिए भी। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे सुपर हिट बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा रेट्रो रिदम में नीतू शाह का। तो इन्जॉय कीजिएगा अपना नून का आवर और ये कहते हैं कि बस अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं याचना से संक्षिप्त समाचार. याचना आपको नमस्कार.
6: सभी को नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना रह गया अधूरा. कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच. स्कोर रहा इंग्लैंड 1 अर्जेंटीना 2. अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी. फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच. लियोनेल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा. पहला खिलाड़ी है काफू जो ब्राज़ील के साथ खेला था. और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार रात 11 बजे आप देख पाएंगे. मॉरिशस टेलीकॉम देश के तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में है. देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाई के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में ऑल माइटी समिट 2026 का आयोजन कर रहा है, जिसके लिए डिजिटल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को वो एक ही मंच पर ला रही है. राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में सामने आ रही है. कल असाइज़स अदालत में फैसला सुनाया गया. कोगलू हैंडलिंग कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारी सरवन गोविंदन को मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई. मामला जुलाई 2018 का है. एमएससी शान नामक जहाज से करीब 1 किलो हेरोइन बरामद हुआ, जिसकी लागत 15 मिलियन रुपए बताई गई. सरवन गोविंदन को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने मडागास्कर से आए एक कंटेनर जहाज पर रखे गए उस पैकेट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी. ये सजा जज लक्ष्मी प्रसाद जैप ने सुनाई. विदेशी समाचारों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए. इस दौरान अमेरिकी बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाहों पर लगाए गए ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय किया है. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. कुजियालिन उलिये में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के जनाब शेख हबीब नीमत जो बयामीन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं. जनाजा आज दोपहर 2:15 उनके बेटे के यहाँ कुजियालिन उलिये से उठाकर दफन सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए बेलहोस की मस्जिद और दफनाने के लिए सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 2:15 PM. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: Yo, hello. Testing one, two.
8: कभी सोचा है
9: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
8: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
9: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
8: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका.
9: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
8: ओपन टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
9: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
8: वीडियो हो सकता है हिंदी,

0: हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: रेट्रो रिदम
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: वेल, इत्तेफाक हो या फिर संजोग की बात हो, ये तो हमको पता नहीं, लेकिन आपका साथ डेफिनेटली मिल रहा है। ये हुई ना बात, और क्या चाहिए, बस सुनते रहे रेडियो मस्ती। दिन के 12:10 हुए हैं। विशिंग यू ऑल अ लवली गुड आफ्टरनून माय डियर लिसनर्स। नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। कैसे हैं आप, ठीक ठाक? बस लंच टाइम के साथ ये प्यारे प्यारे एवरग्रीन सॉन्ग्स, सदाबहार नगमे, बस आपको ले चले हैं डाउन मेमोरी लेन एंड नॉस्टैल्जिया लेन में। आपका साथ मिलता है, आप हमारी म्यूजिकल हम सफर बन जाते हैं। थैंक यू सो मच दिल से। सो व्हाटएवर यू माइट बी 5499-1294-99999 पर आपके मैसेजेस का इंतजार, एंड काफी मैसेजेस के साथ साथ आपके रिक्वेस्ट भी आती हैं, ढेर सारी डेडिकेशंस। सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून, एंड प्यार से ऐसे ही साथ निभाते रहिएगा।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: आप ही हमारे मीत, हमारे दोस्त, हमारे हम सफर। थैंक यू सो मच। 12:14 हैविंग योर लंच, बोन अपेटी। चलिए सीधे स्टूडियो से निकलकर कैंटीन में पहुंच गए हमारी सी प्यारी बहनाज है गेनिशा, देवशिका, पूनम, बानू, नाजिया, सबको बोन अपेटी विश करेंगे। ऑफकोर्स हमेशा कहती हूँ खाने के साथ गाने क्या मस्त कॉम्बिनेशन है। सो विश यू ऑल अ शुभ आहार, बोन अपेटी एंड आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294। एंजॉय योर फूड, एंजॉय योर लंच, एंजॉय दिस वन। Of course, back to the 90s, Kumar Sanu and Alka Yagnik, ki hai Fareb. Fareb ne liye bas dil se dil joda ja raha hai.

सिर्फ मेरा लेकिन हम सब का दिल मचल ही जाता है इस एल्बम यानी कि 1966 की मूवी सूरज के सभी गाने स्पेशली बहारो फूल बरसाओ जिसके लिए तीन तीन फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले एंड इसी फिल्म में द ग्रेट सिंगर शारदा जिसका गाना भी आपने सुना लेकिन दूसरे गाने जो होते हैं ना तितली उरी उरी चली उसके साथ उन्होंने अपने

0: की शुरुआत की थी, दैट वाज अ बिग स्टार, मेजर स्टार बन गई थी 60s एंड 70s के लिए. एंड इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था जिसमें लता जी का गाया हुआ. कोई बात नहीं, गाने मशहूर हुए, आप ही मशहूर हुए जा रहे हैं इन गानों के जरिए. 5499 2945
1: रेट्रो रिदम.
0: ऑलराइट, लेट मी विश अ वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को वंस अगेन. अब्दुल अंसारा बानू कैसे एज यूजुअल. गीता कैसी हैं आप. श्याम देवी चंद कहते हैं प्लीज नीतू मेरे दोस्तों के नाम सुखदेव, राजू, रवीन, सुनील, आशले, रामू एंड फैमिली है पेगेबे से. एंड शातु बिनागस की प्यारी सी ज्योति हमारे साथ एज यूजुअल निभा रही है. आंशी रेखा सुरेखा माधव परिवार के लिए, तो चलिए आप भी अपनों का नाम जोड़ना चाहती हैं, वाई नॉट. नीतू आपके साथ टिल 2 PM.

0: गुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे।
0: MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: चलिए हर दीवार को तोड़ देते हैं, बस दिल ही दिल जोड़ देते हैं. 12:35. Thank you so much, Mr. Dev from Bombay and Rekha ke naam. Equally goes out to you, my dear friend Yalesh. Sham family है from Suriname, हमेशा साथ निभाते हैं. तो बस ये सफर, ये सिलसिला, ये कारवां आप सबके नाम on 5499-1294. Yanish and Shifa Lebon Rodrigue getting married right now. Okay. Suzayan, Sahana, Shahana, Ravish, Prisha, Love Shah, सभी dear ones की तरफ से आप दोनों को बहुत सारी बधाइयां.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: सच्ची बात है ना, प्यार के बिना क्या जिंदगी भाई। तो चलिए जितना हो सके प्यार करो, प्यार बांटते रहो, दैट्स लाइफ। जिंदगी और खूबसूरत बनती चली जाएगी। वापस आपको ले चलते हैं इन द ईयर 1958। ये है सम्राट चंद्रगुप्त। चाहे दूर हो चाहे पास हो, हम तो हमेशा आपके दिल के करीब रहेंगे। रफी साहब, लता जी की आवाज स्पेशली आपके लिए, कविता, पूजा, रिया एंड आयुष।

0: रेट्रो रिदम।
1: लड़की लड़का है तभी तो आगे मूवी बनती है, कहानी बनती है। 12:50, लेकिन हमारी और आपकी कहानी भी एकदम अनोखी है। हाँ, दिल से दिल यहाँ पर टकराव हो रहा है आपके मैसेजेस के जरिए, प्यारे प्यारे एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ। 12:51 ऑलरेडी, ओ माय गॉड। चले, ये जो मूवी रही थी, दैट वाज द 1995 एग्जैक्टली की मूवी हकीकत, नो कनेक्शन विद द 1965 वाली मूवी जो डिशुम डिशुम जो देशभक्ति वाली थी। दिस वन वाज अजय देवगन, ऑफ कोर्स एक्शन हीरो उस जमाने में, और तब्बू भी नजर आए थे। एंड म्यूजिक बाय दिलीप सेन, समीर सेन जो काफ़ी मशहूर थे, और जिद्दी जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया था। काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज में उन्होंने काम किया, अच्छे अच्छे गाने मिले थे इन द 90s। तो बस अभी के लिए गाने चलाते हैं आपके नाम, ऑफ कोर्स नीतू, टिल 2 PM 5499 1294 पर। हबी धर्मेंद्र, बेटा जेवीन, भाई बहने, स्पेशली आपके लिए ज्ञानी जी, आपको फ्रॉम मिडलैंड, एंड सुरेखा फ्रॉम कथकोको कहती हैं गीता, सीता, बोलू राम परिवार, शातु बिनागस से। एंड यही अगला गाना आपके नाम चलाते हैं। चलिए देखते हैं कौन यहाँ पर, क्योंकि काफी मैसेजेस हैं। ओके, माय हस्बैंड ईश्वर लाल, आप वो आंटी जी कहाँ से, फ्रॉम कॉफुको।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती,
2: आप साथ देंगे तो डेफिनेटली और मस्ती करेंगे और झूमेंगे 12:55 एक बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।
3: प्यार का साज भी है।
2: क्या बात है मिस्टर अनंत व बाबू, क्या तो बोन से आपके पूरे परिवार के नाम।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: एक बजा है। संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार आपको।
4: नमस्कार नीतू, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आपसे मिलूंगा।

0: स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम फुटबॉल से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता चल ही गया है, विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हरा कर फाइनल में जगह बना ली है, जहाँ उसका सामना स्पेन से होगा। अतिरिक्त समय में मिली इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने अपने करियर के तीसरे विश्व कप फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मॉरिशस सेलकम के ऑल माइटी समिट का आज सुबह पाई स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आधिकारिक शुभारंभ हुआ। डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये आयोजन वर्ष 2026-2027 के बजट के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें प्रौद्योगिकी को मॉरिशस के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी कार्यक्रम से जुड़ेगा। ये रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमेरिका, भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्क को और मजबूत करेगी। लगभग 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित AI समिट के दौरान की थी। आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा US अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 की तैयारियों को आगे बढ़ाना, ये मॉरिशस दौरे पर आई अमरीका की उप विदेश मंत्री सारा ट्राउटमैन की यात्रा के प्रमुख उद्देश्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान ने पड़ोसी गल्फ देशों में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर हमले किए हैं, जबकि अमरीका ने रात भर ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले जारी रखे। तेहरान का कहना है कि उसने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन सहित क्षेत्र के कई लक्ष्यों को निशाना बनाया है। युद्ध विराम के प्रारंभिक समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच छठे दिन भी तनाव बना हुआ है। उधर अमरीकी सेना ने दावा किया है कि उसने लगभग 6 घंटे तक कई स्थानों पर हमले कर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री मार्गों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वह वार्ता की मेज पर वापस नहीं लौटता तो उसे और कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और उधर अल्जीरिया की राजधानी अल्जीर में एक पशुपालक के देखभाल केंद्र में लगी भीषण आग में 11 लोगों की मौत हो गई है। देश के नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार इस हादसे में 19 अन्य लोग घायल हुए हैं। आज सुबह स्थानीय समय अनुसार दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे। अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आग लगने के दौरान विशेष आवश्यकता वाले 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और उनकी देखभाल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे शुभ समाचार। सुनिए, सवानरो नोवेल फॉन्स में 53 साल के 53 years old के श्री जमुन सिंह बासुदेल सिंह, जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर नोवेल फॉन्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजीन लेन नोवेल फॉन्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: कभी सोचा है
2: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशियस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स

0: वाली आजी
1: एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज आपका स्टाइल
0: और आपका चांस
1: डोंट मिस इट
2: रेट्रो रिदम
3: आरएम2 रेडियो मस्ती

0: अभी।
1: और अगर आप ही अभी चून किए हैं तो रेडियो मस्ती देन खड़ी मिलाते चले, सवा एक बज चुका है यहाँ पर, वेलकम बैक। एंड चलिए बस यादें उभर कर आ गई हैं वंस अगेन, और नीतू भी आपके साथ टिल 2 PM 5499 1294 पर। लेट मी विश अ वेरी गुड आफ्टरनून आपको निर्मला फ्रॉम फ्लैक, और प्लीज मेरे लिए गाना चला दो, व्हाई नॉट। हेलो लवली लेडी, प्रणाम प्रणाम बीना सबू फ्रॉम कथुबोन, बस हैं आप और वेल 72 ईयर्स की हो गई हैं और गाने आपको आपकी जवानी याद आ गई, क्या बात है। उम्र बचपन कहते हैं लेकिन दिल बचपन। नेक्स्ट गाना आपके नाम एंड बिलेटेड जो यानी कि आपके लेट हस्बैंड आपको बहुत उनको मिस कर रहे हैं और हमेशा आपके दिल में रहते हैं, दैट्स द स्पिरिट। तो वर एवर यू माइट बी 5499 1294 पर श्याम एंड देवी चंद फैमिली आप ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट गाना आपके नाम।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: लवली रोमांटिक सॉन्ग्स ऑन द एयर और बस 1:27 हुए हैं और आप पर जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट गाना आपके लिए मिष्टी हिमाक्षी आशीष रेशमा सुल्फेगिन बाकवा से. आपने गाने की फरमाइश की है कौन सा गाना है, चलिए मैं ढूंढती हूँ. शिवानी आपके लिए और गीतांजलि सब परिवार लक्ष्मी जी हैप्पी बर्थडे आपको एंड ललिता एंड जीतन फैमिली गुड आफ्टरनून.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: वादा बस वही निभाते हैं जो उनके दिल साफ होते हैं. थैंक यू सो मच जो प्यार करते हैं वो तो डेफिनेटली ही चलाते हैं. यहाँ पर गाने हमने आपके लिए चला दिया भाई. आप है कौन कौफुको से आंटी जी, आपने सुना नहीं, ये तो प्रॉब्लम है. आप लोग गाने मांगते हो लेकिन सुनते नहीं हैं. कोई बात नहीं. बेगम मोहरन फ्रॉम कोडमास्का पावे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक. एंड आपके परिवार के नाम तनवीर, आयशा, तेजल, रायना, रायन, वानिशा, कमला, गंगा, भी सुन कत्कोबोन से बस आपके पूरे परिवार के लिए टेकिंग यू टू द 70s. लता मंगेशकर और एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज़ें. यह है मुकद्दर का सिकंदर. सलाम इश्क, सलाम इश्क मोहब्बत, तो प्यार कीजिए, प्यार बांटिए.

0: तो कहेंगे भाई सोचने की क्या बात है, प्यार करना है तो प्यार कीजिए ना.
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.
0: Time for some birthday wishes. और आज जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी एनिवर्सरी, सबको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस. खास तौर से आपके लिए ब्रो इन लॉ सुनील, ये है संजय, राज, भाभी माया, मिबक से आपके पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.

0: बहारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हाँ आपका और हमारा साथ ना छूटे इसके लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं इन गानों के जरिए। थैंक यू सो मच दिल से।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: 156 टाइम हो गया नीतू जाने का, क्योंकि मेरे पीछे आ गई है परी तो नहीं, लेकिन हाँ पूनम जरूर है, जरूर मेरे को कह रही है अब खिसको नीतू। तो चलिए मैं चलती हूँ, मुलाकात होती है कल सुबह 7 से 9 के बीच। इन मॉर्निंग बेट टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ स्टे सेफ। ये गाना स्पेशली आपके लिए, विमला जी फ्रॉम कांगो, पूरे परिवार के नाम।

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है.

0: हैं। सबसे पहले हम समाचार शुरू करते हैं देश में मौजूदा पेट्रोल और डीजल के मौजूदा भंडारण की मात्रा के साथ। देश में पेट्रोल और डीजल का मौजूदा भंडार अगले 18 दिनों के लिए पर्याप्त है। इनकी नई खेप 20 जुलाई को पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जेट A1 ईंधन का भंडार 20 दिनों के लिए उपलब्ध मात्रा में है। LPG का मौजूदा स्टॉक 13 दिनों के लिए उपलब्ध है और इसकी नई खेप 17 जुलाई यानी कल पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा हैवी फ्यूल ऑयल का भंडार 45 दिनों के लिए देश में उपलब्ध मात्रा में है, जबकि इसकी अगली खेप जुलाई के अंत तक देश पहुंचने की उम्मीद है। मॉरिशस टेलीकॉम के ऑल माइटी समिट का आज सुबह पाई स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आधिकारिक शुभारंभ हुआ। डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये आयोजन वर्ष 2026-2027 के बजट के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें प्रौद्योगिकी को मॉरिशस के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमरीका इंडिया कनेक्ट सबसी कार्यक्रम से जुड़ेगा। यह रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमेरिका, भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्क को और मजबूत करेगी। लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित AI समिट के दौरान की थी। आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा US अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 की तैयारियों को आगे बढ़ाना, ये मॉरिशस दौरे पर आई अमरीका की उप विदेश मंत्री सारा ट्रॉटमैन की यात्रा के प्रमुख उद्देश्य है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्जीरिया की राजधानी अल्जीज में एक पशुपालक देखभाल केंद्र में लगी भीषण आग में 11 लोगों की मौत हो गई है। देश के नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार इस हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। आज सुबह स्थानीय समयानुसार दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे। अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आग लगने के दौरान विशेष आवश्यकता वाले 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और उनकी देखभाल की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहे सुन पाएंगे शोक समाचार। डॉक्टर मनीलाल रोड मोसलमा सेंट अंद्रे में 14 साल के 14 years old के कुमार चैतन अश्मित कुमार गंगा जिन्हें अश्मित के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 उनके पिता अजय गंगा के घर मोसलमा सेंट अंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ट्विटर 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: Bombay Talkies
4: Radio Musty
5: Radio Musty

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: 2:08 हो चुके हैं. वेलकम जी वेलकम. पर्दा उठ चुका है, रोशनी जगमगा चुकी है और बारी है बॉलीवुड के रंगों में रंग जाने की. मैं हूं आपके साथ पूनम और बॉम्बे टॉकीज में लेकर आई हूं नए सुपरहिट गाने, नई फिल्मों की बातें और सितारों की दिलचस्प दुनिया. और अब बातें होंगी बॉलीवुड फिल्मों की, कुछ मजेदार गॉसिप्स भी होंगे और साथ रहेंगे शानदार गाने. बस बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आरएम2 रेडियो मस्ती लेकर आए हैं आपके लिए बॉम्बे टॉकीज और शुरू हो चुका है ये सफर. एंजॉय कीजिएगा, राइड में बैठिए. हम आपको लेके जाएंगे उन गानों के साथ उस दुनिया में जहां पर आप सब चाहते हैं एक बार जरूर जाना.
1: More music is in the mix.
0: आज आजादी है. बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती.
1: रेडियो मस्ती.

0: 102
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
1: Radio Mustang।

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: 2:17 हो चुके हैं और दोस्तों आप जुड़ चुके हैं बॉम्बे टॉकीज के साथ। भाई बात ही है हमारे शो की ऐसी है कि बॉम्बे टॉकीज मतलब बॉम्बे की बात कर लो भाई थोड़ी बहुत। तो चलिए हम बात करते हैं धुरंधर मूवी की। तो ये फिल्म अभी भी हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 1,850 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर चुकी है और इस कमाई का जो सिलसिला अब भी जारी है और इसकी एक बड़ी वजह है उसकी शानदार स्टारकास्ट। यस, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल एंड आर महादेवन सभी ने अपना दमदार अदाकारी थी वो प्रदर्शन की और जो बहुत ही दर्शकों को पसंद आई, यही वजह है कि लोग आज भी थिएटर्स जा रहे हैं और थिएटर्स में जाके सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, अभी धुरंधर मूवी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो ये भाई बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ स्टार कास्ट ऐसा हो, ऐसी स्क्रिप्ट हो और ऐसी एक्टिंग हो तो और क्या चाहिए। ऐसे बस जुड़े रहिए अपने गानों के साथ। मैं हूँ आपके साथ पूनम, RM2 रेडियो मस्ती के साथ। इंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग उसी मूवी से।
1: More music in the mix.
0: Aaj azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Talkies, Radio Musti,
1: Radio Musti.
2: 2:30 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम बॉम्बे टॉकीज के साथ. भाई क्या बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें लग रहा है, मतलब इतनी सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, साथ साथ चल रहा है सब कुछ. बट ये इस जून और जुलाई के बीच में आई हैं 19 मूवीज़ जो कि बहुत सारी हैं. उनकी लिस्ट तो लंबी है पर फिर भी एक आध का नाम तो हम ले ही सकते हैं. तो इस भाई जो अभी भूत बंगला आई है 270 करोड़ कमा चुकी है जबकि उसका बजट था 120, तो भाई उसने फिर भी प्रॉफिट ही कमाया है. और बात करें तो कृष्णा अवतार पार्ट वन की, जिसमें 46 करोड़ उनका क्या कहते हैं उन्होंने कमा लिया है और 100 करोड़ का बजट था. कोई बात नहीं, उनके लिए अभी और टाइम है क्योंकि बहुत सारे लोग साथ जुड़े हुए हैं. इस समय अगर हम बात करें वेलकम टू द जंगल, 18 दिनों में उन्होंने कमाया है 187 करोड़, क्या बात है. और उनका था बजट 125 करोड़, फिर भी उन्होंने प्रॉफिट में ही चल रहे हैं. अभी अल्फा 90 करोड़ कमा चुकी है और 125 करोड़ का बजट था, तो अभी फिर भी वेट करना पड़ेगा. धमाल 4 यानी कि 102 करोड़ कमा चुके हैं और 130 करोड़ का बजट है. भाई कोई बात नहीं, मैं तो इतना ही कहती हूँ, ऐसे मूवीज आते रहे, हम लोग देखते रहे, एंटरटेन होते रहे. गाने बहुत बढ़िया हो रहे हैं आजकल क्योंकि गानों के साथ में हमें डांस करने का मौका मिल जाता है, इंजॉय करने का मौका मिल जाता है. पूरे दिन थकान के बाद ये जो टाइम है ना सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पर हमारे को कुछ एनर्जेटिक गाने मिलते हैं. तो चलिए भाई जुड़ते हैं अपने ही उसी प्रोग्राम के साथ बॉम्बे टॉकीज़ के साथ, उसके साथ में फिर से बातें करेंगे बहुत सारी आपके साथ.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM2 Radio Masti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: 2:48 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ यानी कि बॉम्बे टॉकीज़ और मैं हूं आपके साथ पूनम। अब बात करते हैं अल्फा और धमाल 4 की। अल्फा से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी आलिया भट्ट और सरवरी की स्पाई एक्शन फिल्म होने की वजह से, बस भी ज़बरदस्त था लेकिन बॉक्स ऑफिस में फिल्म उम्मीद के मुताबिक रफ्तार पकड़ नहीं पाई है। पहले हफ्ते 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। वहीं धमाल 4 ने शुरुआत अच्छी की लेकिन वीकडेज आते ही इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। फिर भी फिल्मी ऑडियंस के साथ में फिल्म से मिलने वाले बॉक्स ऑफिस और अपनी पकड़ बनाए रखते हुए उन्होंने यानी कि बॉलीवुड का चाहता है कि हमेशा जो लोगों को चीज़ पसंद आए उसके दिल को छू जाए वो ही चलती है। स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ में एक्टर्स भी होने चाहिए, उसके साथ में डांस और गाने। तो फिर भी गाने तो उस मूवीज़ के बहुत अच्छे चल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपको उसको साथ साथ गाने भी सुनाएंगे। बट इस समय हम 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। रानी से वो लाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है यूके से और अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर भेजी है और कह रही है कि हमारा पूरा परिवार ये प्रोग्राम सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है। थैंक यू मैम, एंजॉय कीजिए आपके गाने। और ऋषि सिंह बालगोबिंद जी ये भी यूके से साथ दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। एलेश जी भी साथ जुड़े हुए हैं, ललित जी यूएसए से जुड़े हुए हैं, कमल एंड राहुल जी कनाडा से जुड़े हुए हैं, कमल जी पुर्तगाल से जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो हम तो आपको इतना ही बोलेंगे, इन्जॉय कीजिए गानों को और साथ में हम बात करते रहेंगे क्या क्या रिलीज हो रहा है और कौन सी गॉसिप्स बॉलीवुड में चल रही हैं।
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
0: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check दोपहर के 3 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन उसे लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. मध्य पूर्व में जारी युद्ध, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और दबाव में आए पर्यटन क्षेत्र ने आर्थिक स्थिति पर असर डाला है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस सप्ताह मॉरिशस के साथ अपनी वार्षिक समीक्षा पूरी की. इस दौरान IMF ने सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर को लेकर चेतावनी दी है, जो जून 2025 के अंत तक सफल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 86% पहुंच गया था. साथ ही सरकार के वित्त पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई गई है. IMF ने पेंशन व्यवस्था से जुड़े

0: सुधारों सहित सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारों की सराहना की है। हालांकि संस्था ने टिकाऊ आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बजटीय संतुलन सुधारने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। लैंगिक समानता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जूनियर अचीवमेंट मस्कारेंस के बीच आज कुदौ में गर्ल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री तथा संबंधित मंत्री आर्यन नवामारी ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगी। देश में पेट्रोल और डीजल का मौजूदा भंडार अगले 18 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इनकी नई खेप 20 जुलाई को पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जेट A1 ईंधन का भंडार 20 दिनों के लिए उपलब्ध है। LPG का मौजूदा स्टॉक 13 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में है और इसकी नई खेप 17 जुलाई यानी कल पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा हैवी फ्यूल ऑयल का भंडार 45 दिनों के लिए उपलब्ध है, जबकि इसकी अगली खेप जुलाई के अंत तक देश पहुंचने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के कई शहरों में राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा लोकप्रिय रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को अचानक पद से हटाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। राजधानी कीव में बड़ी संख्या में विशेषकर युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने फेदोरोव को मत हटाओ और जीत के प्रयासों को कमजोर करना बंद करो जैसे नारे लिखी तख्तियां उठाई और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब तक अपने इस फैसले का कारण सार्वजनिक नहीं किया है। इस निर्णय से राजनीतिक विश्लेषकों, सैन्य अधिकारियों और नागरिक समाज के एक वर्ग में असंतोष देखा जा रहा है। 35 वर्षीय मिखाइलो फेदोरोव को इसी वर्ष जनवरी में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। उन्हें मंत्रालय में सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और युद्ध मोर्चे पर प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए डेटा आधारित रणनीतियों के इस्तेमाल का श्रेय दिया जाता है। संसद में आज गृह मंत्री आइहो क्लिमेंको को नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर मतदान होना है। वहीं फेदोरोव की बर्खास्तगी को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ इसे सेना प्रमुख अलेक्सांद्र सारेस्की के साथ मतभेदों से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि सैन्य लामबंदी में सुधार की धीमी गति इसके पीछे की वजह हो सकती है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies,
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: टॉकीज रेडियो मस्ती
1: रेडियो मस्ती
2: 8:03 हो चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई RM2 रेडियो मस्ती के साथ और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉम्बे की यानी कि बॉम्बे की बातें यानी फिल्मी जगत की बातें जहाँ पे बातें होती हैं एक्टर्स की एक्ट्रेसेस की स्क्रिप्ट की कौन हिट हुआ कौन फ्लॉप हुआ यहाँ पर सारी बातें होती हैं पर थोड़ी थोड़ी सी गॉसिप भी करना बनता है। तो इस समय पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलेस ने इन दिनों अपनी एंगेजमेंट को लेकर खूब चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया और उन्होंने मिलवाया अपनी उस हस्ती से। कहती हैं कि जो मेरे को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उसका नाम है शेखर चौधरी। जी हाँ, उनके फियांसे हैं और उन्होंने सबको दिखाया कि उन्होंने एंगेजमेंट उनके साथ कर लिया। बहुत ही ब्यूटीफुल उनकी रिंग थी और उन्होंने जितनी जिस शिद्दत से उनको गले लगाया और प्यार से मोहब्बत से कहा कि भाई ये मेरा आदमी है और ये मेरा मैन है, दिस इज़ कॉल्ड लव, और बस ऐसा प्यार होते रहना चाहिए। तो चलो बात करते हैं एक मूवी की जिसकी बहुत टाइम से वेटिंग लिस्ट में था, नाम फौजी। यस, उसकी डेट रिलीज हो गई है। प्रभास की जिस फिल्म को बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था आखिरी में फाइनली उसको रिलीज डेट मिल चुकी है। हनु राघवपुरी और प्रभास की फिल्म फौजी इसी साल रिलीज होगी। फिल्म को थिएटर्स में लाने के लिए मेकर्स ने 3 दिसंबर 2026 का दिन चुना है, जिसका मतलब है कि बॉक्स ऑफिस में होगा कुछ महायुद्ध। एक तरफ होंगे अजय देवगन, एक तरफ अक्षय कुमार और सेंटर में रहेंगे प्रभास। क्या बात है भाई, ये तो चीज़ें देखने को मिलती है क्योंकि एक तरफ है सीरियस मैन जो है अजय देवगन, दूसरी तरफ है कॉमेडी किंग जो है अक्षय कुमार, और उसके बीच में जो ये मिक्सर है ना भैया प्रभास का, मैं तो कहती हूँ दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। तो इन्जॉय करते हैं जैस्मिन सैंडलेस का एक धुरंधर मूवी का ये प्यारा सा गाना और उसके साथ में बातें करेंगे थोड़ी सी और सी।
1: More music in the mix.
0: Aaj azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: 3:22 हो गए हैं और मैं हूँ आपके साथ पूनम भाई. बात करते हैं फिल्मों की. और जो बॉलीवुड है ना भाई, हर मूड पे एक मूवी बनाता है. हर जो भी इश्यूज होते हैं ज़िंदगी के, या कोई बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव बातें, जो कहानियाँ, उनके ऊपर बॉलीवुड कुछ ना कुछ बनाता रहता है. तो भाई अब बात करते हैं हम उस मूवी की जो भी आने वाली है, रामायणा. अब इस फिल्म की जो जिसका इंतज़ार है शायद पूरे वर्ल्ड को, कहते हैं कि इसके ऊपर जो डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं, उन्होंने 10 साल काम किया है कहानी को बिल्कुल ओरिजिनल बनाने के लिए. उन्होंने शास्त्रों का, यानी कि जो किताबें होती हैं, जो पुरानी जितनी भी शास्त्र हैं, उनका अध्ययन किया. उन्होंने विद्वानों से सलाह ली और उन्होंने चेक किया कि क्या होना चाहिए, कहीं कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए जिससे किसी के दिल को हर्ट हो. और उन्होंने पूरी चीज़ें, हर चीज़, मतलब बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को चेक किया है. फिल्म की जो स्टारकास्ट है वो बहुत ही शानदार है. रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में हैं, साई पल्लवी माता सीता के रूप में होंगी, यश जी होंगे रावण की भूमिका के रूप में, और सनी देओल, क्या बात है भाई, हनुमान जी के किरदार में, और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे. बैकग्राउंड स्कोर में हंस सिमेर और एआर रहमान साथ काम करने वाले हैं. म्यूजिक बड़ा ही प्यारा होने वाला है, जिसने फैंस को एक्साइटेड तो किया ही है और उनकी एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि फैंस की नजरें सिर्फ है अभी ट्रेलर के ऊपर, क्योंकि माना जा रहा है इंडियन सिनेमा की सबसे भव्य फिल्मों में से एक होने वाली है. भाई आपको पता ही है, इंडियन सिनेमा जब कुछ काम करता है ना तो बहुत ही प्यार से और मोहब्बत से करता है. तो बस उन्हें करने दीजिए अपना काम, तब तक हम चलाते हैं अपने गाने, आप इंजॉय कीजिए. 3:24 हो चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम फिर से संक्षिप्त समाचारों की ओर, पर इंजॉय कीजिए ये गाना.
1: More music in the mix.
0: आज आजादी है. बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती.
1: रेडियो मस्ती.

0: Musties.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: 3:34 हो चुके हैं और हम जुड़े हैं आपके साथ और आप जुड़े हैं हमारे साथ भाई बहुत सारे मैसेजेस के साथ। और हमने अभी मैसेज आया है हरीश का, प्रियांशी का, पुलकित शिव इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, कुमार देवी चरण जी पेरेवेयर से और उनके स्टूडेंट्स के लिए एक प्यारा सा गाना की फरमाइश कर रहे हैं। बिल्कुल हम चलाने वाले हैं, सारे गाने आप ही सबके लिए तो हम चलाते हैं। तो विद्या जी साथ दे रही हैं सीशन से और मस्ती के साथ में इंजॉय कर रही हैं, कह रही रेडियो मस्ती है तो हमें कोई टेंशन नहीं। भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा, रेडियो मस्ती है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। हम हैं आपको हर गॉसिप और हर बात और हर फिल्म के बारे में और हर लेटेस्ट गाना आपको सुनाते हैं। और साथ में ललिता जितिन जी भी जुड़ी हुई हैं साथ में और इंजॉय कर रही हैं चाय और कह रही हैं किसी को पीनी है तो आ जाओ भाई, ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेके आना चाहिए या हमें इनवाइट कर लीजिए, हम बिल्कुल भाग के आ जाएंगे। साथ में कृष्णा भी जुड़ी हुई हैं और साथ में श्याम देवी चरण जी भी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं गरम गरम कॉफ़ी के साथ मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ ये प्यारा सा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच आप सभी का। और अब बात करते हैं, प्रियंका चोपड़ा हाल ही में कहा है कि भाई जो बॉलीवुड की गॉसिप्स होती हैं ना वो मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड यानी कि निक जोनास को ज़्यादा पता होती हैं और मैं तो कई बार उनसे पूछती हूँ कि भाई क्या चल रहा है बॉलीवुड में, क्या बात है भाई ऐसी बातें होती हैं और हस्बैंड बता रहे हैं तो अच्छी बात है। भाई शाहरुख खान की जो किंग को मूवी को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो बहुत बढ़ रही है, फैंस अब टीज़र और ट्रेलर की इंतज़ार कर रहे हैं और बॉलीवुड में फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज़ बना हुआ है, कह रहे हैं कि भाई जल्दी से आ जाए ये मूवी और फिर तो कुछ मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए भाई इंजॉय करते हैं साथ में और बहुत सारे गाने और बहुत सारी मूवीज़ की बातें। और एक और चलो बात कर लेते हैं, सीक्वल लवर्स की बात करें तो भूल भुलैया 4 को भी लेके बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन एक बार फिर से फ्रेंचाइजी के साथ आ सकते हैं और फैंस को ऑफिशियल

0: ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार रहेगा। और कह रहे हैं भाई कार्तिक आर्यन है तो स्मार्टी बॉय, और बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं कि जल्दी से इनकी मूवी का ट्रेलर आ जाए। 5 मूवी हैं भैया इस बार उनकी झोली में, तो देखते हैं कौन सी अप जाएगी कौन सी डाउन। पर हमें इतना पता है कि फ्लॉप नहीं होने वाली, उनको बहुत पसंद करते हैं लोग। चलो इन्जॉय करते हैं कोई प्यारा सा गाना।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: टॉकीज
1: रेडियो मस्ती
2: रेडियो मस्ती
3: 3:46 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉम्बे टॉकीज के साथ। तो चलो भाई बात करते हैं बड़े पर्दे पर जो चमक हमें दिखाई देती है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। एक्टर्स हो या एक्ट्रेसेस हो, रोज जिम जाते हैं, योगा करते हैं, डांस प्रैक्टिस करते हैं, एक्टिंग के जो गुण है या किसी से सीखते हैं या मिरर के सामने अपनी स्क्रिप्ट को बार बार रीड करते हैं। बहुत बार तो वो ऐसी चीज़ें चेक करते हैं कि इसमें मेरा जो रोल है अच्छा रहेगा या मेरा फ्लॉप मूवी हो जाएगी। खुद डिस्कस करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ में, लुक टेस्ट करते हैं, मेकअप को चेक करते रहते हैं कि कौन सा ट्रेंड में है, कौन सा लुक रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा, कौन सा स्टाइल कपड़ों का रहेगा। बहुत चीज़ें चलती हैं और कई बार महीनों तक फिल्म्स नहीं मिलती, कई बार सालों साल तक फिल्म्स नहीं मिलती। पर कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट भी ना मिले उनको प्रोड्यूसर उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उनके करेक्टर को देख के, और बस उसका वो जो करेक्टर होता है जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं और बताते हैं तुम इसके लिए राइट हो। और फिर वो जो तैयारी होती है आप उसे महसूस भी नहीं कर सकते कितनी शिद्दत से वो तैयारी करते हैं। और कहते हैं ना कि बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट पे नहीं मेहनत भी स्टार बनाती है। तो इन्जॉय करते रहिए गाने और साथ में आप जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए और आपको पता चलेगा कि एक दिन आप सक्सेसफुल पर्सन बन गए। तो इंजॉय कीजिए, ये गाना बहुत ही खास है।
2: More music in the mix.
0: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज
1: रेडियो मस्ती
2: रेडियो मस्ती।

0: Musties.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: 3:54 हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है बॉलीवुड की बातें, ताज़ा गॉसिप और ये शानदार गाने आपको पसंद आए होंगे। मैं थी आपके साथ पूनम, अब लेती हूँ इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे बॉम्बे टॉकीज में। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा गिनीशा का, उनका साथ देते रहिएगा, इंजॉय कीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े रहते

0: रहते हैं हर वक्त हर समय. टेक केयर, बाय बाय.
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Yo, hello, testing 1 2. Yeah.
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
2: डोंट मिस इट।
3: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 4 PM।
4: RM2 रेडियो मस्ती।
2: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
4: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: ये सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
7: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन उसे लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और दबाव में आए पर्यटन क्षेत्र ने आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस सप्ताह मॉरिशस के साथ अपनी वार्षिक समीक्षा पूरी की। इस दौरान IMF ने सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर को लेकर चेतावनी दी है, जो जून 2025 के अंत तक GDP का 86% पहुंच गया था। साथ ही सरकार के वित्त पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई गई है। IMF ने पेंशन व्यवस्था से जुड़े सुधारों सहित सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारों की सराहना की। हालांकि संस्था ने टिकाऊ आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बजटीय संतुलन सुधारने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। लैंगिक समानता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जूनियो

0: अचीवमेंट मस्कारिंस के बीच आज कुदों में गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर उपप्रधान एवं संबंधित मंत्री अगयाना वोमाखी ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आप्रवासी घाट एक महत्वपूर्ण वर्षगांठ मना रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मॉरिशस में गिरमिटिया प्रथा के इतिहास के प्रतीक इस महत्वपूर्ण स्मारक की विरासत को संरक्षित करने के महत्व को एक बार फिर याद दिलाती है। आप्रवासी घाट देश के इतिहास और उन हजारों श्रमिकों की स्मृतियों से जुड़ा एक प्रमुख स्थल है जिन्होंने अनुबंधित श्रम व्यवस्था के तहत मॉरिशस का रुख किया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ते हुए बात करें हम टीकाकरण के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने एक मिश्रित तस्वीर पेश की है जहां वैश्विक स्तर पर टीकाकरण कवरेज में लगातार सुधार जारी है, वहीं अब भी लाखों बच्चे आवश्यक सुरक्षा से वंचित हैं या अपना पूरा टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं। संघर्ष, आबादी का विस्थापन और गरीबी जैसे कई कारण बच्चों के टीकाकरण अभियान के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। वहीं मॉरिशस में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़े देश में टीकाकरण की मजबूत स्थिति को भी दर्शाती है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

कहीं भी जाओगे हमेशा हमें ही पाओगे, यानी कि ओरिएंटल रेडियो मसीह इज योर वॉइस नॉट योर साउथ. ऑफ कोर्स हम रहेंगे आपका साथ देने के लिए रात के 7 बजे तक. सो चेक योर टाइम माय डियर लवली पीपल आउट देयर. 4:09 हो चुके हैं. हेलो जी, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. माय डियर एंड लवली म्यूजिक लवर्स, आ गई हूं मैं आपका साथ देने के लिए विद दिस ब्यूटीफुल एंड पैपी सॉन्ग. सो जी हां, इट्स ऑलरेडी थर्सडे 16th of July 2026. Dedicate the entire show aapke naam, wishing you a magical one on Orange Radio Masti. To all those jo apne file band kar rahe hain, laptop band kar rahe hain, apna PC band kar rahe hain ghar jaane ke liye, jaldi mein ho, are tension mat lena meri jaan, you gonna go abhi aap jayenge ghar pe aaram se dheere dheere aur hum aapka saath zarur denge. We have some good lovely gaanon ka selections, so sit here and stay connected with me on Orange Radio Masti. And of course I've got you some latest traffic updates. Hum leke jayenge sports ki duniya mein, हम लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे और मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. तो चलिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. और फिलहाल के लिए आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल ट्रैक व्हिच ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डेडिकेट इट स्पेशली टू ऑल आवर मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का जो टीम है न्यूज डिपार्टमेंट के लिए. हे एमबीसी टीम, हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू.

थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती 4:20 हो चुके हैं. हियर वी गो गाइस, जस्ट टू लेट यू नो द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक आवर एम टू रेडियो मस्ती. यू कैन वॉच द शो लाइव.

0: सही जवाब देने के लिए यू हैव टू सेंड मी द योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ वी हैव द राइट आंसर ऑन 54991294 पर 5499924 और सवाल ये है Which actress starred in the movie Gangubai Kathiawadi? Ji haan, in the movie Gangubai Kathiawadi, who was the main lead actress? Kaun si heroine ne play kiya hai the main lead role in the movie Gangubai Kathiawadi? Tejali ji, 5499294. Send me the right answer, full name and full address ke saath. Best of luck to you.
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides.
2: RM2.

0: गया।
1: कभी सोचा है
0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

0: So thank you so much. क्या करना है? Just stay tuned and stay connected हमारे साथ on your number one radio station, यानी कि RM2 Radio Masti. So my lucky winner, Rishta, what you have to do, just stay tuned and stay connected with us always. And there will be someone who's going to call you from the NBC to let you know how, when you can and how you can collect your tickets.
1: RM2
2: Radio Masti.
3: Communiqué de la CWA. Depuis le mercredi 17 juin 2026, plusieurs régions du pays alimentées par le réservoir de Marovacois ne reçoivent que 6 heures de distribution d'eau par jour. Les régions concernées sont les suivantes. Vacois, Curpip, Quatre Bornes, Beaubassin, Rosil, Moka, Saint-Pierre et une partie du district de Rivière-Noire. Les horaires détaillés de distribution peuvent être consultés sur le site web de la CWA https://cwa.govmu.org. Le ministère de l'Énergie et des Utilités publiques, la Water Resources Commission et la Central Water Authority expriment leur profonde gratitude envers les abonnés de la CWA et du public en général pour leur compréhension et leur collaboration dès le premier jour de la mise en application des nouveaux horaires de distribution et leur réitèrent un pressant appel pour une utilisation judicieuse de l'eau. Des camions-citernes sont à la disposition des consommateurs, mais la priorité est accordée aux hôpitaux, aux homes, aux écoles et aux institutions pénitentiaires. Les numéros utiles sont le 170, le 55 00 0025 sur WhatsApp et le 601 5000.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
0: तो चलिए जी, वी आर ऑल सेट टू टेक यू इन द स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स गुरु आ गए हैं इन द स्टूडियो. वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद.
5: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. आज आराम का दिन. हाँ, आज मैच नहीं है. दो दिन मैच, दो सेमीफाइनल और अब वेटिंग फॉर द ग्रैंड फाइनल जो होगा. एंड इट्स गोइंग टू बी अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड. मैच में बहुत कुछ हुआ, बहुत बातें हो रही थी कि थॉमस टुखेल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था. लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चूक गई खेत. मेसी ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि एज इज जस्ट ए नंबर. और उसने मैदान में जो किया कल, गोल तो नहीं स्कोर किया, 8 गोल स्कोर कर चुका है, लेकिन 2 असिस्ट, इंच परफेक्ट पास, जिससे कि अर्जेंटीना ने अनलॉक किया इंग्लैंड को. और इंग्लैंड के टैक्टिक्स को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, खासतौर पर जब 3 खिलाड़ियों को भेजा गया है. यू हैव 30 मिनट्स टू प्ले. और इधर अर्जेंटीना की टीम दबाव बढ़ा रही थी. यू कांट प्ले विद 5 डिफेंडर्स. जब रोक सकते हैं खिलाड़ियों को कागरे पहासू में आने के लिए, लेकिन अर्जेंटीना ने कई बार साबित कर दिखाया है दैट दे हैव प्लेयर्स जो लोग बाहर से भी शूट कर सकते हैं. और यही हुआ. एंजो फर्नांडेज ने जो शॉट मारा, चाहे 10 डिफेंडर रख लो, उस गेंद को नहीं रोक पाएंगे. और गोलकीपर पिकफोर्ड ने भी गेंद को पिक नहीं किया. और उसके बाद जब 1-1 हो गया, इंग्लैंड वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड. और उसके बाद सभी को पता है कि लोतारो मार्टिनेज का हेडर, ही वाज लेफ्ट कंप्लीटली अनमार्क्ड, जिससे कि जीत गई अर्जेंटीना की टीम. आल्बी सेलेस्ते तीसरी बार के लिए लियोनेल मेसी फाइनल में, और वो अपना कार्य, अपना इंटरनेशनल कार्य पूरा करना चाहेगा, विनिंग द ट्रॉफी अगेन. इंग्लैंड की टीम को अब कंसोलेशन मैच है, इट्स सैटरडे फ्रांस के खिलाफ. इस मैच में भी इसका आंजे है, क्योंकि अगर किलियान एम्बापे गोल स्कोर करता है, वो आगे निकल सकता है मेसी से. दोनों के पास 8-8 गोल हैं, लेकिन असिस्ट को लेकर अभी मेसी आगे हैं, 4 असिस्ट, जबकि एम्बापे के पास है अभी केवल 3 असिस्ट. गोलकीपर को

0: लेकर आई डोंट थिंक उनाई साइमन को कोई रोक पाएगा। स्पेन का गोलकीपर केवल एक गोल उसने कंसीड किया है, लेकिन स्पेन में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, दे कैन बी देयर फॉर द गोल्डन बॉल, यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन जैसे चल रहा है अभी, इट लुक्स लाइक कि लियोनेल मेसी डबल पूरा करेगा, यानी गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, ये आने वाले मैचों में ही पता चलेगा। इंग्लैंड के खिलाड़ी काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, जूड बेलिंगहम ने एक खिलाड़ी को थप्पड़ भी मारा, स्लैप्ड अर्जेंटीना सब्स्टिट्यूट। मैच के बाद वैलेंटाइन बाको को ही हिट हिम एट द बैक ऑफ द हेड, और बाको मैच में नहीं था लेकिन सेलिब्रेट करने आया था, इसीलिए शायद जूड बेलिंगहम ने कहा कि खेलने का मौका नहीं मिला, जब जीत गए तो आकर सेलिब्रेट कर रहे हो, इसीलिए दिया पीछे से। अब ये लेकर कुछ हाँ, इंग्लैंड का जो खिलाड़ी है बेलिंगहम, ही कैन फेस एक्शन फ्रॉम फीफास डिसिप्लिनरी कमिटी फॉर वायलेंट कंडक्ट। अगर गिल्टी साबित हुआ तो सैटरडे ब्रॉन्ज मेडल मैच में शायद वो नहीं खेल पाएगा जो मायामी में खेला जाएगा फ्रांस के खिलाफ। सो इस लेवल में आकर खिलाड़ियों पर हाथ उठाना बेलिंगहम शोभा नहीं देती। एनीवे, सो लेट्स वेट फॉर सैटरडे संडे, दोनों मैच एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर लाइव दिखाए जाएंगे, इस पर आपको जानकारियां देंगे। और बाय द वे, यस्टरडे वी वर हियर टिल द एंड ऑफ द मैच, और संजय स्टूडियो में थे, हम लोग बाहर थे रिवे जुआंपा में, इट वाज ग्रेट एम्बियंस, जहां पर वो जो यूथ सेंटर है खचाखच भरा हुआ था, बच्चे लोग, महिलाएं, सो मेनी गेम्स, सो मेनी गिफ्ट्स, और ये काफ़ी जगहों में दोहराई जाएगी फॉर द फाइनल, जिसे हमने बताया थ्रियोली में जो स्पोर्ट्स अरीना है वहां पर जायंट स्क्रीन पर मैच दिखाया जाएगा, रिवे जुआंपा में भी दिखाया जाएगा, ये दो कन्फर्म है विच आई नो, और बाकी जगहों में भी। अगर आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कहीं पर, चाहे विलेज काउंसिल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे कोई फुटबॉल क्लब हो, लेट अस नो, हम जनता को बताएंगे कि आप कहां पर जॉइंट स्क्रीन रख रहे हैं। ये तो है फुटबॉल को लेकर। क्रिकेट में अभी इसी समय इंग्लैंड और इंडिया के बीच सेकंड वन डे इंटरनेशनल मैच, इंडिया की टीम 45 for 1 और 8 ओवर में, सो कोहली जॉइंट्स रोहित आज इंग्लैंड finally breaks through against India। तो दो एक विकेट चला गया, अभी एटकिंसन ने रोहित को ड्रॉप किया है 5 पर, लेकिन इट्स हैपनिंग। रोहित शर्मा 10, गिल आउट हुआ 31 रन बनाकर, जिसमें 6 चौके रहे, सो 31 रन नॉट आउट पर अभी कोहली हैं, रोहित शर्मा और कोहली बैटिंग एट नंबर 4। इंडिया की टीम जो पहला वनडे मैच जीत चुकी थी। इधर सिंसिनाटी ओपन में अल्काराज इंजुरी से वापसी कर सकता है, काफी दिनों से वो अभी नहीं खेल पाया है। द वर्ल्ड नंबर 3, द 7-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन, अप्रैल महीने में खेल पाया था जब उसको बार्सिलोना ओपन में चोट लगी थी। अल्काराज कनाडियन ओपन भी मिस कर जाएगा, द नेक्स्ट मास्टर्स टूर्नामेंट ऑन द कैलेंडर जो मोरियाल में लगेगा, लेकिन सिंसिनाटी ओपन जो 13 से 23 अगस्त तक लगेगा उसमें वो शायद खेल पाएगा। कमिंग बैक टू फुटबॉल, ये ट्रांसफर में भी काफी कुछ हो रहा है। मिडफील्डर वुल्व्स का मिडफील्डर युआओ गोमेज एस्टन विला में आ रहा है फॉर ए डील वर्थ 38 million pounds sterling। ब्राजीलियन इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ट्रेनिंग कैंप छोड़कर अभी वुल्व्स का ट्रेनिंग कैंप छोड़कर मेडिकल पूरा करने आ रहा है, काफी खिलाड़ी को साइन कर रहा है एस्टन विला, और खिलाड़ी आएंगे जाएंगे इन सब पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। सो ऑल द फुटबॉल फैंस, हैव रेस्ट, आज आराम कर लो, कल भी आराम कर सकते हैं, सैटरडे को ब्रॉन्ज मेडल मैच, एंड डोंट फॉरगेट द बिग वन एट 11 PM, इट्स अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन।
1: वैसे आपको क्या लगता है भाई, प्रोनोस्टिक तो आप भी देना, आपको भी देना पड़ता है ना, तो
0: मुश्किल है कहना।
1: नहीं नहीं नहीं, पिछली बार ना आपने ऐसे ही मेरे को ट्रिक कर लिया था। नहीं, आपको क्या लगता है, क्योंकि सी व्हेन आई सी स्पेन द वे हियर, अभी उन्होंने हियर फ्रांस को बीट किया था, आई
0: गेस फ्रांस वाज बिलो पार, फ्रांस वाज बिलो पार, फ्रांस की टीम, दे डिडंट डिजर्व टू बी देयर।
1: इस बार तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन स्पेन के जो अकॉर्डिंग टू मी है, जो मैंने जज किया है, उनके जो प्लेयर्स हैं काफी यंग है, डायनामिक है, उनके जो स्टेमिना है, उनकी जो जोश है ना खेलने की, इट्स अनदर लेवल।
0: लामिन यामाल symbolizes everything.
1: Yes.
0: अब लामिन यामाल क्या कमाल करेगा अगेंस्ट मेसी. यू हैव टू जनरेशंस ऑफ प्लेयर्स.

0: Years, exactly.
1: एक मेसी जो लगभग अपने कैरियर के अंत में है फॉर द इंटरनेशनल
0: पूरा उसके पास एक्सपीरियंस है सब कुछ है
1: हाँ, और लामिन यमाल
0: जोश के साथ आया
1: का जोश इट्स अ ग्रेट मैच वन ऑफ द बेस्ट फाइनल वी कैन सी मुझे लगता है कि ये मैच 90 मिनट्स के अबव जाएगा
0: जस्ट लाइक लास्ट नाइट व्हेन आई वाज वाचिंग तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि देख अब तो इंग्लैंड ही जीत रहे हैं सो नाउ यू नीड टू एक्सेप्ट इट आई सेड नो वेट 90 मिनट्स के बाद सब कुछ बदल सकता है
1: एकदम 60 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ
0: बदल गया सो वेल लेट्स वेट एंड वॉच थैंक यू सो मच एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन आरएनटी रेडियो मर्सी फॉर सम मोर अपडेट्स
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Prix cassé l'eau la voix. La lumière moderne, prix choc. L'eau doit

0: की देखो।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: OMG
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: OMG

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
1: RM2
2: Traffic Update.
3: तो चलिए जी टाइम बीता चला जा रहा है 4:51 हो चुके हैं. यू आर लिसनिंग एंड इवन वाचिंग मी लाइव ऑन टिकटॉक ऑन आवर एमटी रेडियो मैसेज में गिनेश अंबुमाइक. तो चलिए जी लेके जाएंगे आपको सड़कों पर फिलहाल फॉर योर लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट. तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज का ट्रैफिक अपडेट क्या है. सबसे पहले

0: बात करते हैं रिजवी से फिनिक्स की तरफ. ऑफिस आवर्स जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, इसलिए ट्रैफिक धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो गया है दोस्तों, लेकिन अभी भी व्हीकल स्लो पेस में मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखें या आराम से गाड़ी चलाइए. और चलते हैं पोर्ट्रेस की तरफ जो इस वक्त सबसे बिजी जंक्शन बना हुआ है, चाहे आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या इवन साउथ की तरफ, दोनों तरफ जो है हैवी ट्रैफिक और बम्पर टू बम्पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है. और अगर आप इस रूट पर हैं तो एक्स्ट्रा टाइम एज यूजुअल टाइम जरूर रखिए टू रीच होम. रोजिल में हमेशा की तरह ट्रैफिक स्लो है और इवन कैथोबोन में भी गाड़ियां धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. सो लेट्स मूव टू क्यूपिप नाउ. क्यूपिप में ट्रैफिक चल तो रहा है लेकिन स्पीड काफी स्लो धीरे धीरे होती चली जा रही है. एंड ऑल वेदर रोड यूजर्स और वेदर रोड पर भी यूजुअल इवनिंग स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इसलिए ड्राइव केयरफुली. तो चलते चलते एक छोटी सी एडवाइस हमेशा एज यूजुअल हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ड्राइवर्स के लिए, सीट बेल्ट हमेशा पहनिए, मोबाइल फोन यूज करने से बचिए, लेन डिसिप्लिन मेंटेन रखिए और अगर ट्रैफिक स्लो हो तो अननेसेसरी ओवरटेकिंग से जरूर बचेगा. एंड मैं बस हमेशा साथ देते रहूंगी ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती. यू जस्ट हैव टू ड्राइव सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और घर आराम से पहुंचे. यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली वेटिंग फॉर यू एंड टू ऑल आवर लिसनर्स. वी आर हैप्पी कि अभी तक कोई मेजर एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुई है, एंड वी रियली क्रॉस फिंगर्स कि हो भी ना. एंड वेल 5499124-5499-1294 दैट यू हैव टू रिमेंबर अगर यू हैव सम ट्रैफिक अपडेट्स यस पहुँचाने के लिए हमारे चाहने वालों तक. तो चलिए जी, here we go, let's move on to the next track which goes out to each and everyone who's already hitting the road.
1: सुनते रहो RM2 रेडियो मस्ती.

बिल्कुल जी, ऐसे जोरदार प्यार हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, बांटने के लिए ऑन ऑनलाइन टू रेडियो मस्तियां, यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 5:11।

बिल्कुल जी, वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो. सो विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम टू ऑल आवर रेडियो मस्ती फैमिली. वैसे दिन भर की मेहनत के बाद अब वक्त है थोड़ा सा रिलैक्स करने का. बिल्कुल जी, थोड़ा सा स्माइल करने का और बहुत सारा म्यूजिक एंजॉय करने का. और स्वागत है तो हमने

0: आप सभी लोगों का कर लिया है इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो दैट्स योर रफ्तार वाइब्स एंड वी गोना टेक यू ऑन योर फिल्मी राइड्स जहां हर बीट के साथ बढ़ेगी एनर्जी और हर गाना बना देंगे आपकी शाम को और भी खूबसूरत. रेडी हो जाइए क्योंकि मस्ती की रफ्तार अब होने वाली है फुल ऑन स्पीड. और एक नंबर है जो सभी लोगों को याद है 5499 1294 5499 1294. यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस. डू यू नो समवन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, सम लवली कपल्स celebrating out their wedding anniversaries. अरे मेरी जान कुछ भी हो, कोई भी बात हो, कोई भी खुशी की बात हो, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, celebrate करना चाहोगे, so why not send me your dedications. They are the most welcome on 5499 1294 पर. और साथ में just to let you know the show is still live on TikTok RM2 Radio Masti. अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, it's RM2 Radio Masti.
1: Es completa. RM2 Radio Masti.

0: दिया।
1: कभी सोचा है
0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो

0: ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC Radio presents
0: Why
1: the RG. MBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: Un nouveau voyage commence pour Maurice. Avec Ethiopian Airlines, la route Maurice Addis Abeba ouvre l'accès à plus de 145 destinations à travers l'Afrique et le monde. Pour les affaires, les études, la famille ou l'envie de découvrir ailleurs, une nouvelle option s'offre à vous. Contactez votre agence de voyage pour organiser votre prochain départ avec Ethiopian Airlines.
0: RM2
3: Radio Musti.

0: मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा।
1: RM2 Radio

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और M2. तो चलिए जी, टू ऑल आवर लवली सीनियर रेटर्स जो साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. अ बिग हाई फाइव गोज आउट टू यू एंड वी आर शाउटिंग आउट फॉर यू ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर जो अभी शायद काम से निकल चुके हैं, शायद घर जा रहे हैं, शायद ऑलरेडी घर पे हो, किचन में हो, खाना बना रहे हो, कुछ कर रहे हो. वेल, देखा जाए तो लेडीज जितने भी प्यारे प्यारे हमारा साथ दे रहे हैं, आई नो यू आर मल्टीटास्किंग. आप लोग बहुत सारा काम कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें को संभाल लेते हो. सो जो घर पे रहते हैं, ऐसा मत सोचना कि वो कुछ नहीं करते हैं लाइफ में. लाइक वी कॉल देम हाउस वाइफ, नहीं, they are home ministers. They do build some lovely, lovely empires at home. So big hats off to all ladies. Jo saath de rahe hain, to chaliye 5499-1294 par let's check it out. Kisne kisko yaad kiya hai? And I've got Yale Sham jo hai, wo Suriname se saath de rahe hain. So the next one goes out to you. And hey Guinea, so nice to hear to your dynamic voice today. Hey, thank you so much. Radha ji from Canada, you are enjoying dhamakedar music as usual. Aapke jitne bhi parivar कनाडा में है, मॉरिशस में है, हमारे लिए RM2 लिसनर्स के लिए हर हर महादेव, आपके लिए भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गाना. सो कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कीर्ति फ्रॉम प्लान डे पापाई, ब्यूटीफुल ट्रैक. हस्बैंड कुणाल के लिए, बेटी सिद्धि, मामा बबीता, पापा विनय और भाई कुशाल के लिए, थैंक यू सो मच माय डियर फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. बो पुराज टू ऑल दोज हु आर गोइंग टू वर्क डूइंग नाइट शिफ्ट. सो वी डू हैव ये अगला गाना स्पेशली उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं. एंड आई जस्ट वांट टू विश हैप्पी 13th birthday lovely Sanvi ke liye. Hey Sanvi, it's your birthday, so wishing you

0: from Radio Masti.
1: बिल्कुल जी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको भी सानवी हैप्पी बर्थडे. कीप शाइनिंग, कीप चेसिंग योर ड्रीम्स, लॉट्स ऑफ लव टू यू. आपके मम्मा पापा की तरफ से मम्मा श्वेता, पापा रंजीत, नाना नानी, आंटीज जेनिता, नंदिता, मौसा, कमलेश एंड कजिन्स. वी डू हैव यशवी एंड विहार्श. दे आर ऑल विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे एंड टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज. हेलो जी, एंजॉय टू द मैक्स. इट्स योर डे एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. तो चलिए जी, ये अगला गाना ब्यूटीफुल वाइफ है प्रियंका के लिए. वो वेडिंग एनिवर्सरी है आज. सो कंग्रेचुलेशन एंड हैप्पी वेडिंग anniversary to Adarsh and Priyanka. To chaliye ji, to all those jo saath de rahe hain filhal, I just want to dedicate the next one for you my dear. Straight away from my heart to yours, taking you back down memory lane. Ye gana khas kar hamari taraf se aapke liye. Do to chaliye, to all those jo bus mein baithe hain, metro mein baithe hain, taxi mein ho, apni gaari mein ho, van mein ho, oho kahin se bhi agar aap hamara saath de rahe ho. So enjoy your ride. That's your Raftar vibes. Your filmy ride with me, RM2. Radio Masti par Ganesha sa de rahi hai.

0: मतलब
1: क्या मतलब है मतलब ये है कि क्लॉक ने बोला वर्क खत्म हो गया है और रेडियो मस्ती बोल रहा है कि पार्टी शुरू हो चुकी है जी हाँ ऑलरेडी थर्सडे 16th of July 2026 वेलकम टू योर रफ्तार वाइब्स जहां हर गाना है मूड लिफ्टर और हर मोमेंट है एंटरटेनमेंट की दुनिया में लेके जाने के लिए हम है निशा जो साथ दे रहे हैं और आज की शाम को बनाएंगे सुपर एनर्जेटिक आप लोगों के लिए सो स्टे ट्यून स्माइल वाइड एंड चलिए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज
2: RM2
3: Radio Musti

बिल्कुल जी, मिक्की सिंह मिक्का सिंह की आवाज में लेकर आई है मौजा ही मौजा, ठीक है, फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, आप लोगों के लिए जो 2007 में रिलीज हुई थी। बट अभी भी जब भी हम इस गाने को सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि इट्स स्टिल वेरी फ्रेश। तो चलिए, 5:36 हो चुके हैं, यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। कहां तक पहुंचे मेरी जान, बाकी जो हमारे ड्राइवर साथ दे रही है, हेलो कंडक्टर साहब, हाउ आर यू गाइस, आई होप दैट यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑन आवर वन टू रेडियो मस्ती। वी नेवर लेट यू गो होम अलोन, क्योंकि हम रोज आफ्टरनून को आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए। 5499-1394 पर चलिए जी, साथ में चेक करते हैं किसने किसको याद किया है। Hey, I just wanna say I love you, not to you guys. किसी के पति को बोलना है I love you, शायद। अच्छा, I just want to say that I love my husband so much and please play a song, शायद for him. अरे शायद शायद लिखते लिखते वेदिता, आपने अपना नाम नहीं लिखा, अपने पति का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमने अपना नाम पर लिया है ऊपर, वेदिका जी। अगला गाना आपके हस्बैंड के नाम, सो चलिए स्पेशल hello to me, okay, next one goes out to the little princess जो आपके घर में आई है। आए हाय मेरी जान, आपके घर आई एक नन्ही सी परी राउतिया, so wish the cute one loads of blessings and happiness, and that's coming from Hema, Yashoda, Vidishalina, Reshma, Yashna, and have a nice evening everyone। जी

हाँ एंड नमस्ते सभी को, आपको भी वीना जगी सोशल फ्रॉम बेल्वी मोहल्ल। सुंदर गाना, आपको सारे गाने तो सुंदर ही हम लेकर आते हैं यहाँ पर, आपको कोई शक है क्या? आपके परिवार वालों के लिए, सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए और सभी मस्ती टीम के लिए जाना मेरी जाना फ्रॉम फ्लैग। कैसे हो आप? अगला गाना जो है फॉर रीमा जिनीता शेषतान सिनी सिल्विया और युविक ऋषि शिवसगन परिवार फ्लैग से हैं एंड यू गाइस आर जस्ट एंजॉयिंग द शो। थैंक यू सो मच। ए जी ओ जी कैसे हो जी? एकदम जकास जी। हैप्पी थर्सडे, बी हैप्पी एंड रेडियो मस्ती को सुन रहे हैं फुल ऑन वॉल्यूम लगा के हमेशा की तरह, एंड आई नो हमेशा की तरह आप यही करते हो। और अभी आप किचन में हो, खाना बना रही हो, लौंची आखिको वेर हो गई सुया, दैट्स कुणाल रक्षा प्रणव सीताराम फैमिली एंड नूतिष्ठा एंड रामानाश्विन हर्षी अन्नी वंची दिगंबर फैमिली के लिए, मामा मोहिनी एंड ब्रदर जो है गिरीश गणेश फैमिली के लिए द नेक्स्ट वन। एक महीने हो गए आपकी शादी को, आए हैं मेरी जान क्या बात है। सो कंग्रेचुलेशंस टू हलीमा जो फॉरेस्ट साइड की रहने वाली हैं और उनके प्यारे हस्बैंड अरशद के लिए भी अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे, किसी की नजर ना लगे। सो गॉड ब्लेस यू। माय सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती, गाना चला देना, जरूर चलाएंगे अजय कुमार जी जो साथ दे रहे हैं। तो चलिए जी, टू ऑल दोस हु आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक आरएमटी रेडियो मस्ती एज़ वेल, हियर वी गो, लेट्स हिट इट माय वे।

0: Star Vibes, filmy rides,
1: RM2, fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
2: सच्ची में आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन जो लेकर आई है खासकर आप लोगों के लिए ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती. हियर द वाइब्स इज ऑन. यस, अंकिशा इज हियर ऑन द माइक साथ देने के लिए. और वैसे भी हम इतने कीमती वक्त लगाकर चुन चुन कर लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने स्पेशली फॉर यू सो दैट यू कैन रियली फील द गुड वाइब्स. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए फैशन टिप्स फॉर यू माय डियर. वैसे देखा जाए तो विंटर का सीजन है, तो हाथ सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं स्टाइल के लिए भी परफेक्ट होते हैं मेरी जान लेडीज. ए क्यूट बिनी या जो बोलते हैं आपकी स्वेटर और कोट लुक को इंस्टेंटली स्टाइलिश बना सकता है. और जेंट्स ब्लैक ग्रे या नेवी निटेड बेनी जो है विंटर आउटफिट के साथ सूट करते हैं. अगर स्मार्ट लुक चाहिए तो फ्लैट कैप भी एक ग्रेट ऑप्शन है इस विंटर के लिए. और याद रखे अपने हैट को स्कार्फ या जैकेट के कलर के साथ अगर मैच करेंगे तो आपका विंटर लुक और भी क्लासी लगेगा. सो स्टे वार्म एंड ऑलवेज स्टे स्टाइलिश विद आरएनटी रेडियो मस्ती.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.

बिल्कुल जी, ये है आपका नंबर वन रेडियो स्टेशन इन मॉरिशस। बॉलीवुड के खूबसूरत गाने तराने लेकर आते हैं स्पेशली फॉर यू। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक और इंटू रेडियो मस्ती। वी हैव दीपन चौधरी जो साथ दे रहे हैं, दीपक बिहारी जी। ये अगला गाना आपके लिए, शैलेंद्र गिल। थैंक यू सो मच एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। और नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू फॉर शामिला प्रीति प्रेत सिंह। ये अगला गाना आपके लिए, यू आर फ्रॉम रिविया डे गाली एंड यू आर वॉचिंग अस लाइव। तो चलिए बक अली जी एंड वी हैव बीबी जरा एंड अंतेश। सो वी डू हैव देविंस कलेक्शन। द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड यू आर from Australia. Okay, here aapke liye ke liye Australia mein hai. And Anita ji, hi to you. We have the next one for you, Vimla, and Chile Ketsia Blackburn. The next one goes out to you as well. We have Neha Ratan. A big hi goes to you and Ziad. Hey, kaise ho aap? So Chile, here to all those who just want to watch us live on TikTok or into Radio Masti, you can do it right now, right away. Filhal ke liye, let's go down memory lane, 1997 mein.

0: जी डेडिकेटिंग द नेक्स्ट वन हस्बैंड आकाश के लिए आपका बेटा अंश लॉट्स ऑफ लव कमिंग फ्रॉम विश्ति मोहन सिंह माय ब्यूटीफुल विश्ति द नेक्स्ट वन आपके लिए भी इंडिगा ओसनी फ्रॉम पेट्सी वर्जे और सभी टीचर्स के लिए जो छुट्टी पे जा रहे हैं विडुला कविता मनीषा मालिनी जेनिता विजेता एंड वी हैव शालिनी इंद्रानी अमा एंड पेरुमाल देव नूर के लिए ये अगला गाना सो अ बिग हाय गोज टू यू माय डियर यानी कि गिनिशा ओके अपना नाम नहीं लिखा हे सिला फ्रॉम क्या बोल द नेक्स्ट वन गोज आउट you my dear to chaliye ji I just want to dedicate the next one to you my akshita jo abhi bhi apna messages likhte hi ja rahe hai so nice song gini sometimes I really forget these songs and you always play here that we are connected with my favorite songs thank you so much kabhi kabhi kya hota hai na kuch gaane aise hote hain ki bade time se humne nahi sune and bas aise hi achanak aap sun lete hain on radio dil khush ho jata hai that's so sweet to chaliye agar aapka favorite gana aaj humne play kar liya so it's good so it's bringing back so many memories behind and chaliye ji We are connected. Thank you so, so much, my dear. And this is Vijaya. Thank you, Vijaya. Ye agla gana aapke naam. So we have Anshi. Anshi, who's a bit sick. So get well soon, honey. And chali agla gana for you. And that's coming from Akshit. And love you all from Rishi Singh, Balkabin. And he is listening all the way from UK. To all Mauritians across the globe. Agar aap saath de rahi hai, to chaliye ji, ye agla gana aapke naam.
1: RM2, Radio Masti.

0: गुड म्यूजिक कंटिन्यूज बिल्कुल हमारे 6 बजे के समाचारों के बाद. तब तक के लिए फिलहाल के लिए जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर 1 रेडियो स्टेशन. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. चेक योर टाइम, इट्स शार्प 6 PM.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.

0: Potential suppliers, contractors, and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services, and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others, TV broadcasting equipment and accessories, including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website, mbc.mu, and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Office's website. Deadline for registration is
1: 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मॉरिशस की मजबूत अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए बढ़ते सार्वजनिक ऋण और वित्तीय दबावों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मॉरिशस में ईंधन आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक। देश के पास पेट्रोल डीजल का 18 दिनों और घरेलू गैस का 13 दिनों का भंडार उपलब्ध है। मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा। माइटी एआई समिट में प्रधानमंत्री ने वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी पहल की घोषणा की। मॉरिशस और अमरीका ने व्यापार, निवेश और अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए नई साझेदारियों की संभावनाओं पर की अहम चर्चा। वैश्विक स्तर पर टीकाकरण में सुधार के बावजूद लाखों बच्चे अब भी सुरक्षा से वंचित। मॉरिशस में टीकाकरण कवरेज मजबूत। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की आराधना से जुड़ी पवित्र रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है भारत में।

0: इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन उसे लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और दबाव में आए पर्यटन क्षेत्र ने आर्थिक स्थिति पर असर डाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस सप्ताह मॉरिशस के साथ अपनी वार्षिक समीक्षा पूरी की। इस दौरान IMF ने सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर को लेकर चेतावनी दी है, जो जून 2025 के अंत तक सफल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 86% पहुंच गया था। साथ ही सरकार के वित्त पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई गई है। IMF ने पेंशन व्यवस्था से जुड़े सुधारों सहित सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारों की सराहना की है। हालांकि संस्था ने टिकाऊ आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बजटीय संतुलन सुधारने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। लैंगिक समानता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जूनियर अचीवमेंट मैस्केरेंस के बीच आज कुदो में गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर उपप्रधान एवं संबंधित मंत्री आयाना वमारी ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगी।
1: कुदो में जेंडर इक्वालिटी और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गैर सरकारी संगठन जूनियर अचीवमेंट मास्कागाय के बीच इस समझौते पर हुए हस्ताक्षर से आधिकारिक तौर पर गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। मकसद है 35 साल या उससे कम उम्र की महिलाओं में रोजगार पाने की क्षमताएं बेहतर करना और उन्हें ठेकेदारी के प्रति प्रोत्साहित करना। किम्बली आमिया कहती है, मेरा अपना कारोबार है, मैं बायो पैदावारें तैयार करती हूँ। अब मैं और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रही हूँ। एस्टेल जमा कहती है, मैंने होटल में 8 सालों से पेस्ट्रीज में काम किया है। अब मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहती हूँ और अपनी तरह के नौजवानों के लिए उदाहरण बनना चाहती हूँ। जूनियर अचीवमेंट मास्कागाय की गोल कोच ओसियान फोंत कहती है, इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को कई महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, खासकर उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा। अपने भाषण में उपप्रधान और जेंडर इक्वालिटी मंत्री आयाना वमारी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जरूरी साधन उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम कमजोर वर्ग की युवा महिलाओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। वे कहती हैं, जनता में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं और इनमें ज्यादातर घर पर रहने वाली महिलाएं हैं, जिनका योगदान आर्थिक आंकड़ों में तो नहीं दिखता, लेकिन जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं जूनियर अचीवमेंट मास्कागाय के अध्यक्ष रोशन रामोली के अनुसार, ये प्रोग्राम महिलाओं को अपना जीवन बदलने में मदद देगा। वे कहते हैं, कई महीनों का प्रशिक्षण होगा, इसके तहत मेंटर्स और विशेष पेशेवरों की मदद मिलेगी, दूसरे कारोबारों के साथ सहयोग कायम कराया जाएगा और नए कारोबार शुरू करने और बिक्री के लिए भी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। याद रहे कि इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग 21 जुलाई से शुरू होगी।
0: मॉरिशस टेलीकॉम के ऑल माइटी समिट का आज सुबह पाए स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आधिकारिक शुरुआत हुआ। डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। यह आयोजन वर्ष 2026-2027 के बजट के उस दृष्टिकोण के रूप के अनुरूप है, जिसमें प्रौद्योगिकी को मॉरिशस के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी कार्यक्रम से जुड़ेगा। यह रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमेरिका, भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्क को और मजबूत करेगी। लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित AI समिट के दौरान की थी। पोर्ट लुइस की ट्रेजरी इमारत में आज दोपहर शिष्टाचार भेंट के दौरान मध्य अफ्रीकी मामलों तथा व्यापार एवं आर्थिक मामलों की डेप्यूटी अमरीकी सहायक उप विदेश मंत्री सारा स्ट्राउटमैन ने प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए अवसरों की तलाश पर

0: चर्चा हुई। इसके साथ ही मॉरिशस की आर्टेमिस समझौतों में भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया गया। आर्टेमिस समझौते अंतरिक्ष क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। राष्ट्रीय अवसंरचना मंत्री अजय गणेश ने बुधवार 15 जुलाई को यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने से जुड़ी दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा लिया। त्रियानो में उन्होंने नई पिलगन त्रियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया, जिसे 43 मिलियन रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके बाद मंत्री फ्लिकॉफ्लाक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रस्तावित बाईपास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना की अनुमानित लागत 160 मिलियन रुपए है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाना है।
1: त्रियानो इलाके से गुजरने वाले गाड़ी चालकों के लिए अब से एक नया मार्ग उपलब्ध। 43 मिलियन रुपए की लागत में त्रियानो लिंक रोड का निर्माण। ये पेचिकॉम ब्रांच रोड को एबेन में M3A40 नए रॉबरावाट मार्ग से जोड़ेगी। इस संपर्क से परिवहन को लेकर बेहतर स्थिति होगी, साथ में मोटरवे M1 में वाहनों की आवाजाही में आसानी होगी और त्रियानो पेचिका और एबेन के बीच फासले में कम समय लगेगा।
2: Ils commencent à partir du bâtiment APIM. Il y a le terminus de rond-point qui est relié avec Terre Rouge Verdun Link Road. La route est à une distance de 300 mètres et une largeur de 7,5 mètres. Les travaux incluent aussi le upgrading d'un pont existant qui crosse la rivière Plain Williams.
1: इसके बाद रुक फ्लिकॉफ्लाक, जहां पर मंत्री ने भावी बाईपास के निर्माण स्थल का दौरा किया। अनुमान है कि 160 मिलियन रुपए की जरूरत होगी। इस नए मूल ढांचे का मकसद है मुख्य सड़क के लिए एक वैकल्पिक रास्ता, क्योंकि अक्सर वहां परिवहन समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे फ्लिकॉफ्लाक की ओर और इलाके के स्थलों में आवाजाही में सुविधा होगी।
3: Et possiblement, nous avons un troisième chemin de vol mort à Tamarin. Alors, il y a un grand plus pour nous. On a 14 hôtels de Ficonflac. Un hôtelier extra content et un habitant aussi très content avec ce nouveau développement-là.
4: Il permet que nous un sou additionnel, c'est un savings qui nous fait le projet qui est initié depuis la visite jusqu'à Cascavel. Donc, nous réussissons à faire un savings. Ça, savings, ça nous peut faire, nous permet de sortir de l'hôtel Manisha. Nous prévoir. Qui d'ici octobre, chemin là, pour avoir fini pareil.
1: ये बात उल्लेखनीय है कि ये दो परियोजनाएं राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने और देश भर में सड़क का इस्तेमाल करने में सुधार लाने के मकसद से सरकारी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है।
0: जैसे कि आपको हम बता रहे थे कि मॉरिशस टेलीकॉम के ऑल माइटी समिट का आज सुबह पाई स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शुभारंभ हुआ है और इसके अंतर्गत उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमरीका इंडिया कनेक्ट सबसी कार्यक्रम से जुड़ेगा। ये रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमरीका, भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्कों को और मजबूत करेगी। इसमें लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर की घोषणा की गई है के बारे में बात की गई है। इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित एआई समिट के दौरान की थी। अदिति अवतार।
5: मॉरिशस टेलीकॉम द्वारा पाई में आयोजित ऑल माइटी समिट बजट 2026-2027 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें टेक्नोलॉजी को विकास और कम्पेटिटिवनेस का मुख्य आधार माना गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस की डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के मकसद से एक रणनीतिक परियोजना की घोषणा की।
6: I'm pleased to confirm today that Mauritius will participate in the America-India Connect subsea cable program. This is the major, major leap forward. This major international project will add a vital layer of resilience to our digital infrastructure and reinforced strategic routes towards South Africa, India and Singapore. Mauritius is becoming, in the most concrete sense, a digital bridge between Africa and Asia.
5: Google company ki taraf se $15 billion ki funding wale America India Connect subsea program mein Mauritius ki bhagidari एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
7: Déjà, Maurice nous permet augmente l'utilisation de la bande

0: sont internationales, qui veut dire qu'ils nous coûtent bien encore. Et quand nous causons internationalisation, nous causons FDI, nous aussi causons un expo de bon service de l'Internet. Mais quand nous avons cette qualité câble-là, bien sûr, elle ouvre le chemin pour investissement additionnel à Maurice et aussi pour qu'il y ait une entreprise mauricienne capable de déployer ce service en ligne à partir de Maurice.
1: मॉरिशस टेलीकॉम के चेयरमैन सगत लाला ने मॉरिशस को एक वास्तविक रीजनल हब बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए बड़े निवेश पर बल दिया.
2: टुडे मॉरिशस टेलीकॉम कंटिन्यू टू इन्वेस्ट हेविली इन इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज साइबर सिक्योरिटी एंड नाउ डीपली इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
1: इस सम्मेलन के अंतर्गत मॉरिशस टेलीकॉम और अमेजोन वेब सर्विसेज के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए. ये दोनों कंपनियों के CEO विमल गंगादीन और सब सहारन अफ्रीका के लिए AWS की मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति बाल की उपस्थिति में चला. दोनों साझेदार प्रतिभाओं के विकास, नवाचार और अनुभवों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करेंगे. इस दूसरे ऑल माइटी समिट में माइटी की नई पहचान पेश की गई, जो पूरी तरह से कनेक्टिविटी, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है. ये गतिविधि इस शुक्रवार को समाप्त होगी, जिसमें मॉरिशस सहित कई देशों के 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं.
3: देश में ईंधन भंडार की स्थिति के अनुसार मॉरिशस के पास वर्तमान में 18 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल का भंडार उपलब्ध है, जबकि घरेलू गैस का भंडार 13 दिनों के लिए पर्याप्त है. वर्तमान ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी के पास कीमतों की समीक्षा के लिए 19 अगस्त तक बैठक आयोजित करने का समय है. अन्य खबरों में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अब्रवासी घाट एक महत्वपूर्ण वर्षगांठ मना रहा है. ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मॉरिशस में गिरमिटिया प्रथा के इतिहास के प्रतीक इस महत्वपूर्ण स्मारक की विरासत को संरक्षित करने के महत्व को एक बार फिर याद दिलाती है. अब्रवासी घाट देश के इतिहास और उन हजारों श्रमिकों की स्मृतियों से जुड़ा एक प्रमुख स्थल है, जिन्होंने अनुबंधित श्रम व्यवस्था के तहत मॉरिशस का रुख किया था. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की ओर रुख करते हैं. सबसे पहले कनाडा में इस समय 800 से अधिक जंगलों में आग सक्रिय रूप से जल रही है, जिसका असर अब अमेरिका के कई राज्यों तक पहुंच गया है. धुएं के कारण वायु गुणवत्ता को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं. अमेरिका के उत्तरी राज्यों मिशिगन, मिनेसोटा और मिनियापोलिस के बड़े हिस्सों में वायु गुणवत्ता को अमरीकी वायु गुणवत्ता सूचकांक कार्यक्रम ने खतरनाक श्रेणी में रखा है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे घरों के अंदर रहें और बाहर निकलने से बचें. अमरीकी राष्ट्र मौसम सेवा के अनुसार वायु गुणवत्ता संबंधी चेतावनियां अब अपर मिडवेस्ट, ग्रेट लेक्स क्षेत्र और अमरीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक फैल गई है. कैनेडियन इंटर एजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के मुताबिक कनाडा में वर्तमान में 857 जंगलों की आग सक्रिय है, जिनमें गुरुवार को लगी यानी कि आज लगी 23 नई आग भी शामिल है. और उधर टीकाकरण के क्षेत्र में सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने एक मिश्रित तस्वीर पेश की है, जहां वैश्विक स्तर पर टीकाकरण कवरेज में लगातार सुधार जारी है, वहीं अब भी लाखों बच्चे आवश्यक सुरक्षा से वंचित हैं या अपना पूरा टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं. संघर्ष, आबादी का विस्थापन और गरीबी जैसे कई कारण बच्चों के टीकाकरण अभियान के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं. वहीं मॉरिशस में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़े देश में टीकाकरण की मजबूत स्थिति को दर्शाती है. और अंत में आपको ले चलती हैं भारत की ओर. जगन्नाथ उत्सव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है. ये पर्व भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है. जगन्नाथ उत्सव में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मुख्य आराध्य देवता मानी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार मानी जाती हैं, इस पावन उत्सव के केंद्र में होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर

0: गोकुल से मथुरा की दिव्य यात्रा करती हैं। ये रथ यात्रा भक्ति आस्था और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृति का प्रतीक मानी जाती है। देश विदेश में लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेते दिख रहे हैं। इस पर प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट।
1: जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक उत्सवों में से एक है। ये हर साल ओडिशा के पुरी शहर में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालाभद्र और बहन सुभद्रा को उनके मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक विशाल रथों पर ले जाया जाता है। इस पवित्र यात्रा को देखने और इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस यात्रा को प्रेम, भक्ति और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक भी माना जाता है। रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें तीनों देवताओं का 108 कलशों के पवित्र जल से महाअभिषेक किया जाता है। रथ यात्रा के दिन तीन अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, दूसरा बालाभद्र के लिए और तीसरा देवी सुभद्र के लिए। इन रथों को हर साल परंपरागत विधि के अनुसार बनाया जाता है। हर रथ की ऊंचाई, रंग और पहचान अलग होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का संदेश केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। ये उत्सव समानता, सेवा, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस यात्रा में किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है और उनके रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इसी कारण जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा को भारत की सबसे विशाल और लोकप्रिय धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है।
0: बात करते हैं अब हम फुटबॉल के बारे में। अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी ने विश्व कप के लगातार दूसरे फाइनल में जगह बनाने के बाद अपनी टीम की शानदार वापसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने आखिरी मिनटों में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता दिखाई। अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए स्कालोनी ने कहा कि टीम के हर खिलाड़ी को इस चयन में अपनी जगह पूरी तरह से हासिल है और सभी खिलाड़ी इस स्तर पर खेलने के योग्य। इस पर ज्यादा जानकारी अरविंद बिसेसा दे रहे हैं।
2: अर्जेंटीना ने एक बार फिर ऐसा मैच खेला जिसकी कहानी सिर्फ वही लिख सकता है। आखिरी मिनटों तक पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया और इस रविवार को वे अपने वर्ल्ड कप खिताब को बचाने उतरेंगे। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त शारीरिक मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान 19 फाउल हुए और मैच में काफी आक्रामकता थी, लेकिन कोई भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा। हाफ टाइम के बाद द थ्री लायंस ने आखिरकार अपनी दहाड़ दिखाई। 55वें मिनट में एंटोनी गोडन ने गोल करके इस वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल दागा। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से ही हार न मानने वाली टीम अर्जेंटीना फिर से हिम्मत नहीं हारी। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने मैच के आखिरी 30 मिनटों में पूरी तरह दबदबा बनाया और गेंद को अपने पास ही रखा। यह लगातार दबाव रंग लाया। 50वें मिनट में एंजो फर्नांडेज ने मेसी के पास पर एक बेहतरीन शॉट लगाकर दोनों टीमों को 1-1 की बराबरी पर लाखड़ा किया। जब ऐसा लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, तब लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। इंजुरी टाइम में उनके एक सटीक क्रॉस पर लुटारो मार्टिनेज ने शानदार हेडर के जरिए अर्जेंटीना को जीत दिला दी। इस मैच में 2 असिस्ट करने के साथ ही लियोनेल मेसी अब अपने कार्य का तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा। अब सबकी नजरें उस बड़े मुकाबले पर हैं जिसका सबको इंतजार था, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। एक तरफ लियोनेल मेसी लगातार दूसरा टाइटल और अपने देश के लिए चौथा स्टार जीतने की कोशिश करेंगे, दूसरी ओर लामिन यमाल लाहोआ को दूसरे वर्ल्ड कप खिताब दिलाने के इरादे से उतरेगा। यह फाइनल मुकाबला इस रविवार रात 11 बजे MBC Sports 11 पर लाइव दिखाया जाएगा।

पड़ रहा है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। कल सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी। बाद में देश के पश्चिम में रह रहकर बरसात हो सकती है। दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम सहली इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:47 पर, सूर्योदय कल सवेरे 6:45 बजे।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसोल पर हमारे सहयोगी आवी हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, कुछ ही देर में हम बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। आविनी जैक्सन कैटरबोन में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती द्रौपदी भगवंती, जिन्हें शारदा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल मां की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पितों में 13 साल के 13 ईयर्स ओल्ड के कुमार हर्ष गुलब, जिन्हें हरीश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पिता धीरज गुलब के घर लापे पितों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिस्पेरांस पितों के शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM आवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रगुप्त पुनित, जिन्हें मुकेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियानों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM महात्मा गांधी रोड लालमाटी में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंपावती हरी, पैदाशी नाम जीतन और जिन्हें कुसुम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके जीजा सतीश हरी के घर गांधी रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM सवान रोड नुवेल फ्रांस में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री जमुन सिंह बासुदेल सिंह, जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गामजी लेन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM नंबर 94 ग्रानम रोड वाकुआ में 69 साल के सिमोन अरी क्लेन सुताना, जिन्हें एनरी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमोरो एट 10 AM ऋषि दयानंद रोड मोटसिनियर सुरीनाम में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अस्वंती जादू, पैदाशम कतवागो, जिन्हें अस्वंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति दुलम जादू के घर ऋषि दयानंद रोड मोटसिनियर सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2.

Welcome back in the third hour of this beautiful show and that's your Raftar Vibes with me here on R&2 Radio Masti ki Nisha ka saath dene ke liye bahut bahut shukriya ji 6:33 minutes ho chuke hain and of course jaise ki bola gaya tha vaada kiya tha ki main phir aaungi ek aur ticket lekar to give away to you yes to watch the concert live in Mauritius Abhijit Bhattacharya so filhal ke liye play with MBC and win a chance to win a ticket to the golden 90s era to featuring Abhijit Bhattacharya he's going to be live in concert in Mauritius on Saturday 25th of July 2026 7:30 baje sham ko so my dear you can step in a world of nostalgia jahan pe aap dobara phir se jee sakte hain aise hi unforgettable jo awaazein hoti hain jo define karte hain Bollywood golden era ko enjoy that evening of timeless melodies legendary hits and pure musical magic tickets jo hain it's already on sale as from 850 rupees and available at moticket.mu and even Réseau Otayu So, हम तो कहेंगे don't miss this unforgettable concert का जो experience होने वाला है Mauritius में reservation के लिए आप अपने phone से dial कर सकते हैं ये number it's a hotline number to grab your tickets 466-99-99-466-99-99 फिलहाल के लिए हैव अ टिकट टू गिव अवे टू यू व्हाट यू हैव टू डू जस्ट पार्टिसिपेट इन द गेम एंड गिव मी द राइट आंसर ऑन 5499-1294 पर गिव मी द राइट आंसर विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस यू जस्ट हैव टू टेल मी ये जो कॉन्सर्ट होने वाला है अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट इन मॉरिशस ऑन 25th of July 2026 जो शाम को 7:30 शुरू हो जाएगा यू जस्ट हैव टू टेल मी ये कहाँ पे होने वाला है वेयर इज इट गोइंग टू हैपन सो सेंड मी द राइट आंसर राइट नाउ राइट अवे ऑन 5499-1294 पर सूरज की

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: आर एम टू खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन राइम टू रेडियो मस्ती फिलहाल के लिए जी हाँ इट्स टाइम टू चेक इट आउट कि आज का लकी विनर कौन है. यस आई हैव अ वाउचर टू गिव अवे टू यू यानी कि इट्स अ टिकट जहाँ पे आप देख पाएंगे लाइव इन कॉन्सर्ट अभिजीत भाट्टाचार्य को एंड विच इज गोइंग टू हैपन ऑन सैटरडे 25th of July 2026 शाम के 7:30 PM. हाँ जी और हमने सवाल पूछा था कि ये जो कॉन्सर्ट है कहाँ पे होने वाला है. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया विच इज SVICC अटपाई स्वामी विवेकानंद दिस इज द राइट आंसर. लेकिन एज पर द गेम रूल जैसे कि हम कहते हैं कि लकी ड्रॉ में एक ही लकी विनर हम ले सकते हैं और आज का लकी विनर है हमारा कौन है ऑफ कोर्स इट इज विशाल जाडू जो रहते हैं ला मारी वाक्वा में. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू. बिल्कुल जी कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर मिस्टर विशाल जादू जो रहते हैं लामारी में. सो यू आर द लकी विनर एंड यू आर विनिंग अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 25th of July 2026 शाम के 7:30 PM एट SVICC आठ पाई टू वॉच द ग्रेट सिंगर अभिजीत भाट्टाचार्य इन मॉरिशस. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड टू ऑल दोस जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया थैंक यू सो सो मच. देयर विल बी समवन कॉलिंग यू फ्रॉम द एम्बेसी टू लेट यू नो कि आप अपना टिकट कैसे पिकअप कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.

रेडियो मस्ती। तो चलिए जी, आज पिन का जन्मदिन है, पिन निको एंड पिन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू फ्रॉम द एंटायर रेडियो मस्ती की टीम की तरफ से। तो चलिए रेडी माँ की तरफ से, आपकी ब्यूटीफुल वाइफ की तरफ से भी लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, सो हैप्पी बर्थडे टू यू पिन।

0: अक्सर सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं जहां पर हम अपने आप से पूछते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ. लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि व्हाई मी इंस्टेड ऑफ दिस. आपको कहना है ट्राई मी, क्योंकि हालात मुश्किलों से भरे आ ही जाते हैं, लेकिन असली सिकंदर तो वही कहलाता है जो इस हालात को बहुत ही प्यार से हर एक सिचुएशन को मुस्कुराकर जीता है. वेल 7:07 हो चुके हैं. इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग और ऐसे में आपका साथ देने के लिए हम आ चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. बहुत ही प्यार से कुछ खूबसूरत गीतों को चुन चुन कर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, टू मेक यू फील लव्ड, स्पेशल, सीन एंड हर्ड. वैसे प्यार में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं और उनको हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता है, और ऐसे में अगर आप लोग उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं, सो ट्राई टू टेक आउट योर प्रीशियस टाइम और लेट देम नो दैट यू आर थिंकिंग अबाउट देम. एंड आपके मैसेजेस का हम इंतजार कर रहे हैं ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज 5499 1294.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musti.

किसी तरह आपको प्यार नहीं करना है, आपको प्यार अपने तरीके से करना है। कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने प्यार को किसी के साथ कंपेयर करने में लग जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके से लाइफ में हर किसी की पर्सनालिटी होती है, उसी तरीके से हर किसी के पास वो दिल नहीं होता है। क्या पता अगर आप किसी के प्यार को अपने प्यार से कंपेयर कर रहे हैं, क्या पता शायद आपका प्यार थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए देयर शुड बी नो कंपैरिजन व्हेन टॉकिंग अबाउट लव। तो

0: प्यार अपने तरफ तरफ से और अपनी तरीके से कीजिए. एंड प्यार तो प्यार ही होता है, इसका फीलिंग्स भले ही लोगों को अलग अलग तरीके से महसूस कराता हो, लेकिन प्यार को हमेशा प्यार से ही महसूस किया जाता है. चलिए 7:19 हो चुके हैं. टू ऑल दोज हैविंग द मील राइट नाउ, आपको विश करेंगे बन अपेची शुभ आहार, चाहे आप घर पर हैं, काम पर हैं, या फिर सात समुंदर पार हमारा साथ दे रहे हैं, और मे बी यू आर ड्राइविंग बैक होम. शायद थोड़ा देर से आपका काम ख़त्म हुआ है, तो आपसे हम यही कहेंगे प्लीज़ ड्राइव सेफली एंड केयरफुली. एंड चलिए ये अगला गाना ख़ास तौर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ. प्यार से आप लोग इतने प्यार से साथ देते हैं ना कि वी फील रियली वेरी स्पेशल. दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं. एंड डोंट फॉरगेट इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM. चलिए यहाँ पर आपका मैसेज यहाँ पर आया है. हेलो दीपिका, आप है गुडलैंड से. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शंस. एंड कहती हैं थैंक यू फॉर द लवली एंड सूदिंग सॉन्ग्स. डेडिकेशन टू हबी मनीष, जस्ट वांट टू टेल हिम दैट आई लव हिम सो मच. ये हुई ना बात. बस ऐसा ही होता है प्यार, जहाँ पर आप एक मिनट के लिए एक गाना सुनो तो पल भर की यादें सामने आ जाती हैं, और एक मिनट में, एक सेकंड में, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको वो शख्स अपने सामने दिखाई देने लग जाता है. भाई देखिए, अगर आप को प्यार है किसी से, शायद हमारी गीतों को सुनने के बाद उनकी याद आ रही हो, तो डू नॉट हेजिटेट, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहिए ऑन 5499-1294, क्योंकि हम लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं यहाँ पर. एंड डोंट फॉरगेट, यहाँ पर रेडियो मस्ती में आपका साथ हम देते रहेंगे टिल 9 PM. तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: भाई सिर्फ दो दिलों की कहानी ही नहीं होती है बल्कि अल्फाजों की कहानी भी होती है और जिस तरीके से आप प्यार को बयां करते हैं उसकी कहानी भी होती है। कहानी तो बहुत ही हटके होनी चाहिए एंड कहते हैं ना कि यू डू नॉट नीड टू लर्न योर पेन वाइल राइटिंग योर ओन स्टोरी और मे बी वाइल राइटिंग योर ओन लव स्टोरी। और अपनी कहानी आप अपनी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ही अच्छा होगा और जिस तरीके से आप अपनी कहानी को लिखते हैं शायद ही कोई लिख पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि यू आर यू एंड नो वन कैन बी यू एंड दैट इज़ योर सुपर पावर। तो चलिए It's already 7:31 दिव्या का साथ है। It's a wonderful Thursday evening and I just hope कि हमारे गीतों को सुनने के बाद आप अच्छा महसूस कर रहे हैं and drop in your messages on 5499-1294 जरूर जाना चाहते हैं कि what's happening on your side on this Thursday evening। कुछ लोगों ने already weekend की तैयारी already कर दिया है तो चलिए साथ में यहाँ पर आप कहते हैं Hi, good evening Radio Masti team, want to dedicate the next gana for my Rani Shweta Hukum from Habi Roshan। सो अपनी वाइफ के लिए हमेशा आप इतने प्यार से गाना मांगते रहते हैं। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू एंड गुज आउट फॉर आवर टीम एंड जितने भी सारे लोग आपको जानते हैं उनके लिए भी आपने गाना डेडिकेट किया है। थैंक यू सो मच एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीत की ओर जो हमने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से चुन के लेके आए हैं। एंड आई जस्ट होप कि अभी के लिए अगर आप थके हारे हैं तो बस आप बैठकर आंखें बंद करके हमारे गीतों को महसूस कीजिएगा क्योंकि प्यार ना ही दिमाग से किया जाता है और ना ही लॉजिक से। जहाँ पर मैजिक होता है वहाँ पर प्यार होता है और जहाँ पर मैजिक होता है ना वहाँ पर ऑटोमेटिकली ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है और इतनी सवर जाती है कि शायद ही आपको लगता है कि ये हकीकत है। कभी ऐसा होता है ना कि आपको इतना प्यार मिलता है कि आप सोचने लग जाते हैं कि ये सपना है या हकीकत है, बट यू वेल डिज़र्व दिस लव। तो चलिए हमेशा हम यही दुआ करते रहते हैं टू ईच एंड एवरी वन कि आपका प्यार आपसे कभी ना रूठे कभी ना छूटे। सो वी हैव द नेक्स्ट वन डेडिकेटेड टू ऑल दोज जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ और जैसे हम कह रहे थे आंखें बंद करके हमारे हर एक गीत को महसूस कीजिएगा और जस्ट ट्राई टू फॉल इन लव अगेन एंड अगेन।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Masti.

वेल फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाने यहाँ पर हम चला रहे हैं ताकि आपका जो इवनिंग है वो भी अच्छी तरीके से आप इसको बिता पाएं। हमें पता है कि आप दिन भर थके हारे घर वापस आते हैं एक स्वीट स्माइल के साथ, ये बहुत सारे लोग करते हैं।

0: मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को देखते ही उनके चेहरे पर एकदम से वाइड एंड ब्रॉड स्माइल आ जाता है, और आप में से कोई लोग नहीं जान पाते हैं कि व्हाट द पर्सन हैज़ बीन थ्रू ऑल द टाइम ड्यूरिंग द डे. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे. एंड कहते हैं ना कि जब भी आप किसी से मिलो हमेशा प्यार से ही मिलो, बिकॉज वी डोंट नो द स्ट्रगल्स बिहाइंड. इसीलिए हमेशा वी शुड नॉट बी क्विक टू जज एनी वन. जो मेंटल स्टेट होता है वो भी बहुत बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे में हम आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली एंड मेंटली एज वेल. सो इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल गाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. चलिए यहाँ पर आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे. गुड इवनिंग, प्लीज़ प्ले a beautiful gana for two princes, Revanch and Rayanch from Vijay Puludu of Highlands and aapki wife hain Varshini and mom Veda ke liye. और साथ में यहाँ पर आप कहती हैं, हेलो दिस इज़ एडन फ्रॉम सुरीनाम, रिसेंटली आई टर्न्ड 8 years old. वाह क्या बात है. काइंडली प्लीज़ प्ले द सॉन्ग आओ ना फ्रॉम द मूवी क्यों हो गया ना फॉर माय मॉम डैड एंड फॉर मी एज वेल. एवरी नाइट वी प्ले उनो एट दिस टाइम व्हाइल एंजॉयिंग योर शो. कीप इट अप, दैट्स रियली नाइस टू नो. एंड चलिए, यू कुड फील द स्माइल ऑन माई फेस, क्योंकि इट्स अ प्लेजर सीइंग योर मैसेज. और इस छोटी सी उम्र में आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उनके साथ मिंगल कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी नाइस. एंड हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ रहें एंड अच्छे से रहे और प्यार से रहे. एंड यहाँ पर हम खास तौर से अगला गाना डेडिकेट करेंगे. एज यूजुअल वी हैव ऋषि विदेशी जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ फ्रॉम बॉम्बे. वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर ऑल द सेकंड टर्म स्टूडेंट्स. का लास्ट पेपर है, तो डू वेल एंड एन्जॉय फुली. एंड हमेशा की तरह अपनी मूठी गर्लफ्रेंड के लिए और अपने अच्छे दोस्त के लिए आपने गाना मांगा हुआ है. एंड चलिए अगला गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू एंड टू ऑल दोस्त जो आपको जानते हैं. इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. एंड वी हैव सम मोर ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM, जहां पर दिव्या का साथ है. सो साथ देते रहिएगा एंड कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज 5499-1294.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2,
1: रेडियो मस्ती.

0: और हम फैला ही रहे हैं एंड आई जस्ट होप ये खुशबू आप तक पहुंच ही रहा है एंड प्यार का फ्रेग्रेंस कुछ अलग कुछ हटके ही होता है. चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुंच रहे हैं एंड वेल यहाँ पर आप कहते हैं कि विशिंग माय बिलव्ड हस्बैंड लिनले Hollingsworth, a very happy birthday. Love from a wife Natasha. Bachche hain Arav and Liana. Mom-in-law Asha and father-in-law Suraj ki taraf se unko bahut bahut sara pyar. Jitne bhi sare log aaj apna special day celebrate kar rahe hain aapko many many happy returns of the day and chaliye is khas mauke ko aur bhi khas banane ke liye we have some more beautiful gaane till 9 PM.
1: Evening lounge.
2: Evening lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

वेल 8:23 हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि बस गाने को सुनने के बाद आप ज़रूर प्यार को महसूस कर रहे हैं और उतने ही प्यार से आपके मैसेजेस हम तक पहुंच भी रहे हैं। नमस्ते दिव्या, कैसी हो? लवली सॉन्ग सिलेक्शन। मे आई रिक्वेस्ट द सॉन्ग तुम बिन जाऊं कहां फ्रॉम द फिल्म दिल विल प्यार व्यार, वन एवर यू वॉन्ट। थैंक यू सो मच रोशनी जी, आप है काटोबोन से, आपको भी शुभरात्रि एंड प्यार से साथ देने के लिए दिल से आपको शुक्रिया। एंड यहाँ पर वनीशा ने हमें बहुत ही एक खूबसूरत मैसेज भेजा है, कहती है हाय दिव्या, नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, यू मेक मी फॉल इन लव विद हिम अगेन एंड अगेन, बस वही मेरे दिल में बसता है एंड आपने प्यार का इजहार किया है, आई जस्ट होप कि वो इस वक्त सुन रहे हैं। एंड आप कहते हैं लव हिम फ्रॉम वनीशा, आपने उनका नाम नहीं बताया, मे बी यू वॉन्ट टू लेट इट सीक्रेट, मे बी डिस्क्रीट। तो बिल्कुल आपका प्यार और आपके जज्बात को हम ज़रूर रिस्पेक्ट करते हैं वनीशा, एंड आई जस्ट होप

0: the one listening and the one who heard your name knows ki wo kaun hai. Chaliye yahan par kuch aur geeton ki aur hum badhenge and it's a wonderful wonderful musical karwa jahan par hame mauka mil raha hai aapko kuch khoobsurat music romantic music sunane ke liye till 9 pm. To chaliye is raat ko aur bhi suhani banane ke liye we have some more beautiful music and ye agla gana hum khaas taur se dedicate kar rahe hain un tamam logon ke liye jo is gaane ko pasand karte hain, taken up from the movie Khuda Hafiz. In the beautiful voices of Mithun, Vishal Mishra and Asis Kaur. Aur is gaane ki farmaish ki hai Yash ne all the way from Ilu. वैसे कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनको हम भुला देते हैं या फिर एक ऐसा टाइम होता है जब इस गाने को हम सुनते हैं सो वी कीप ऑन सेइंग कि लॉन्ग टाइम इस गाने को हमने नहीं सुना है. तो चलिए यश ने बहुत ही प्यार से इस गाने के का रिक्वेस्ट किया है. तो चलिए यश दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू फॉर केशनी एज वेल जो मे बी इस वक्त हमें सुन रही है एंड ऑल्सो गोज आउट फॉर योर पेरेंट्स जया एंड आपके पापा हैं सतीश आपकी बहन है जानवी. और चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे इस ब्यूटीफुल गाने की ओर.
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: वेल 8:45 हो चुके हैं और चलिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है. हाय दिव्या, एंजॉयिंग योर सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, सो टचिंग, थैंक यू, काइंड रिगार्ड्स. थैंक यू जी. एंड आपने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन ऊपर वाले मैसेजेस से पता चल रहा है आपका नाम. नहीं नहीं, आपने एक्चुअली लिखा नहीं है आपका नाम, बट आई कुड सी कि ऊपर राजन लिखा हुआ है. तो राजन जी, थैंक यू सो मच आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए. इट मीन्स अ लॉट कि आप लोग इतने ही उतने प्यार से साथ दे रहे हैं जितने कि मॉरिशस के रहने वाले लोग दे रहे हैं, और आप इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम अब्रॉड. सो वंस अगेन दिल से आपको शुक्रिया. एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. इट्स अ ब्यूटिफुल वन एंड इट्स टेकन अप फ्रॉम द मूवी जोड़ी ब्रेकर्स. लेकिन हम यहाँ पर आपके दिल को ना ही तोड़ेंगे, और वी विल डेफिनेटली डेडिकेट ईच एंड एवरी मैसेज, और जो भी आप मैसेज भेजते हैं ना आपके अपनों तक, हम ज़रूर प्यास से पहुंचाते रहते हैं. तो आपके पास अभी तक टाइम है, 9 बजे तक हम हैं आपके साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज. सो कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: इट्स ऑलरेडी 8:53 एंड साधना सरगम कुमार सानू की आवाज़ों में खूबसूरत सा ये गाना, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। और अगर आपको भी हसरत है तो बिल्कुल आप रेडियो मस्ती के साथ दिल लगा सकते हैं और हमारे गीतों के साथ भी। ऑफ कोर्स हर गीत में एक खूबसूरत जज्बात छुपा हुआ होता है और इस जज्बात को उभर कर सामने लेकर आना आपकी जिम्मेदारी होती है। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि प्यार कितना आप दिल में लेकर घूमते हैं। Well, this beautiful one goes out to each and every one जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ। एंड जाते जाते as usual सुनील जी, आप हैथरगुले से आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपने अगला गाना डेडिकेट किया हुआ है अपनी पूरी फैमिली के लिए, एंड क्या बात है, आपके हर एक मैसेज में बस उसी शख्स के बारे में लिखा हुआ है जिनको आप हद से ज़्यादा याद करते हैं। लगता है कि उनकी याददाश्त आपके जहन में से कभी नहीं गया है। और हम बात कर रहे हैं नन अदर दान आपकी प्यारी बीवी के बारे में। यस यस, शायद आपकी पत्नी ये सुनकर ज़रूर खुश होगी कि हमेशा आप उनके बारे में बात करते रहते हैं।

It's so nice और it's very rare कि आप हमेशा अपनी wife के बारे में बात करते रहते हैं and चलिए यहाँ पर ये प्यार आपके बीच में बरकरार रहे एक दिन आपकी wife से मिलेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने wife के बारे में क्या खूबसूरत messages भेजते हैं चलिए फिलहाल के लिए thank you so much आप लोग इतने प्यार से साथ रहे हैं तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम टाइम कल एक अलग ही मूड के साथ क्योंकि कल फ्राइडे इवनिंग है सो ऑफ कोर्स विल बी वेटिंग टू मीट यू एज फ्रॉम 7 to 9 p.m. तब तक के लिए टेक केयर शुभ रात्रि शब्बा खैर

It's a lovely evening to you all, my dear listeners. नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? और सर्दी का असर ज्यादा पड़ तो नहीं रहा है, लेकिन क्या कहे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर मौसम अपनी खासियत लेकर आती है। सर्दी में बस कंबल ओढ़े हुए यू माइट बी एट होम दिस टाइम, या फिर आप नाइट ड्यूटी पर हैं। बों को आज टू यू बोल एंड व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल ट्यून, ऑफ कोर्स इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। 3 घंटों का सफर नीतू के साथ अप टिल मिडनाइट।

एकदम खूबसूरत और खूबसूरत मेलोडीज ओनली फॉर यू। कभी कभी रात सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आती बल्कि अपने साथ एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी भी लेकर आ जाती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आसमान सितारों से भर जाता है और हल्की सी ठंडी हवा चेहरे को छू कर गुजरती है, तब दिल खुद ब खुद किसी खूबसूरत मेलोडी की तलाश करने लगता है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। हर सुर की धड़कन के साथ जुड़कर एक नया एहसास पैदा करता है। That's why कहा जाता है कि खूबसूरत रात और मधुर संगीत का रिश्ता हमेशा से खास रहा है।

रात की खामोशी में जब एक प्यारी सी धुन हवाओं में घुल जाती है तब लगता है जैसे वक्त भी धीरे चलने लगा हो। हर मेलोडी अपनी एक कहानी कहती है, कहीं मोहब्बत की, कहीं इंतजार की, तो कहीं जिंदगी की मुस्कुराहट की। ऐसी रातों में बस आंखें बंद कीजिए, गीतों को महसूस कीजिए और अपनी रूह को उसकी लहरों पर बहने दीजिए।

खूबसूरत रात है, इसका असली जादू तो तब शुरू होता है जब दिल अपने पसंदीदा गीतों के साथ सफर पर निकल पड़ता है। चांद की रोशनी, सितारों की चमक और हल्की सी हवा जब किसी मेलोडी के साथ देती है तब हर याद और भी हसीन बन जाती है। संगीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता, बल्कि वो सीधा दिल में अपने घर भी बना लेता है।

रात की अपनी एक जुबां होती है और हर मेलोडी उस जुबां का सबसे खूबसूरत अल्फाज। कुछ गीत हमें बचपन की यादों में ले जाते हैं, कुछ पहली मोहब्बत की गलियों में और कुछ हमें जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखा देते हैं। इसीलिए रात और म्यूजिक एक दूसरे के सबसे अच्छे हम सफर कहलाते हैं।

थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए. अभी अभी चुन के ये हैं द नीटू ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्टी इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. वैसे जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में होती है तब कुछ लोग अपने हेडफोन्स लगाकर या फिर रेडियो चलाकर अपनी दुनिया बसा लेते हैं. आई मीन उनके लिए हर मेलोडी एक दोस्त होती है, हर सुर एक मुस्कान और हर गीत एक नई उम्मीद. खूबसूरत रात का असली एहसास वही समझ सकता है जो संगीत से मोहब्बत करता है, जैसे कि आप.

कभी-कभी हमें रात इतनी लंबी लगती है तो कभी-कभी इतनी छोटी। वैसे अभी सर्दी का मौसम है, रात जैसे भी हो हमें सिखाती है कि खामोशी भी कितनी खूबसूरत हो सकती है। और जब इसी खामोशी में कोई मधुर गीत गूंजता है तब लगता है जैसे हर सितारा उस सुर पर झूम रहा हो। ऐसी रातों में जिंदगी की हर परेशानी कुछ देर के लिए छोटी लगने लगती है।

beautiful melodies, evergreen songs only for you. Thank you so much. वैसे melodies वक्त की सीमाओं को पार कर जाती है, चाहे गीत 50 साल पुराना हो या नया, अगर उसमें दिल की सच्चाई है तो वो हर रात को हंसी बना देता है। कुछ सुर कभी पुराने नहीं होते क्योंकि उनमें जज्बात हमेशा नए रहते हैं।

लवली गाना व्हाट अ लवली इवनिंग ऊपर से लवली लवली मेलोडीज वैसे खूबसूरत रात और मधुर संगीत का संगम किसी इबादत से कम नहीं जब दिल शांत हो हवा ठंडी हो और गीत रूह को छू ले तब महसूस होता है कि खुशी किसी बड़ी चीज का नाम नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों को जीने का नाम होता है

रात के हमारे हम सफर इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ. थैंक यू बो कुहाश इफ यू आर एट वर्क एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग विद रेडियो मस्ती. वैसे रात के सफर में मेलोडीज हमारे हमराही बन जाती है. कभी वो हमें हंसाती है, कभी रुला देती है और कभी हमें अपनी ही जिंदगी की कहानी सुना जाती है, सुना देती है. शायद इसलिए हर दिल का एक फेवरेट नाइट सॉन्ग जरूर होता है.

एक अच्छा गीत और एक अच्छी सुहानी रात मिलकर वो जादू पैदा करते हैं जो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हर सुर दिल की दहलीज पर दस्तक देता है और हर अंतरा एक नई याद को जिंदा कर देता है। यही तो है मेलोडीज की असली

रात में जब पुराने बॉलीवुड गीत धीरे धीरे बजते हैं तब लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। हमारे जितने भी सिंगर्स हैं उनकी आवाज आज भी हर रात को नए रंगों से भर देती है। संगीत वाकई में कभी बूढ़ा नहीं होता। ओल्ड इज गोल्ड।

0: इन द थर्ड आवर ऑफ लेट नाइट ग्रूव्स और हर खूबसूरत रात एक नई कहानी लिखती है और हर मेलोडी उस कहानी का सबसे प्यारा अध्याय बन जाती है। अगर दिल उदास हो तो गीत उसका सहारा बन जाता है और अगर दिल खुश हो तो वही गीत उस खुशी को और भी खास बना देता है।
1: मधुबन

0: जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं दोस्त जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक सुकून भरी रात और एक दिल को छू लेने वाली मेलोडी काफी होती है। संगीत हमें खुद से मिलाता है और हमें बताता है कि दिल की आवाज सबसे खूबसूरत होती है।
1: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।

रात का अंधेरा कभी दड़ाता नहीं, जब साथ में उम्मीद की रोशनी और गीतों की मिठास हो। हर मेलोडी एक दिया बनकर दिल के कोने कोने को रोशन कर देती है। That's why रात को संगीत का सबसे खूबसूरत वक्त कहा जाता है। तो आइए इस हसीन रात को सिर्फ गुजरने ना दें, इसे महसूस करें। इसकी ठंडी हवा को अपनी सांसों में समाइए और एक प्यारी सी मेलोडी को अपने दिल की धड़कन बना लीजिए, क्योंकि खूबसूरत रातें बार बार नहीं आती, लेकिन उन रातों में सुने हुए गीत हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। तो मुस्कुराइए, सुनिए और हर सुर के साथ जिंदगी को और खूबसूरत बनाते चले। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती।